0: वंदे मातरम।
1: सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यशां

सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई 2026 सुबह के 5:58 और

बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही सेकंड्स में 6 बजेंगे और 6 बजते ही आप सभी सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिन कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत

0: भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं हिंदी में समाचार के बाद। अब आइए करते हैं आज का चिंतन, विषय श्रद्धा और विश्वास।

कभी किसी पत्रिका में उड़िया की एक कहानी का हिंदी अनुवाद पढ़ा था। गांव में अकेली रह रही वृद्धा माँ को बेटा शहर ले आता है। वृद्धा माँ नेम टेम वाली, नियमित भजन कीर्तन करने वाली, पूजा पाठ करने वाली, नियमित मंदिर जाने वाली। बेटा शाम को शहर पहुंचा है माँ के साथ। परेशान है, किसे अपना दुख कहे। जिस मोहल्ले में उसने किराए का घर ले रखा है उसमें करीब ठीक ही कहीं मस्जिद है। भोरे उसमें तार सप्तक में अजान दी जाती है, आवाज यहां तक आती है। मां जब सुनेगी तो कैसे चिढ़ जाएगी, कहां ले आया मुझे उठाकर। पति पत्नी चिंतित है, देर तक अपना दुख बतियाते हैं, चिंता में डूबे डूबे ही सोते हैं। भोर में किवाड़ पर दस्तक, मां है, अजान दी जा रही है, अब क्या होगा। पर दरवाजा खोलना ही है। डरते सहमते बेटा किवाड़ खोलता है। मां हर्षित है, आह्लादित है। अरे बेटा, कहीं पास ही मंदिर है क्या? कितने अच्छे मोहल्ले में तूने घर ले रखा है। कितना मधुर और सदा स्वर है गायक का, कितनी मीठी आवाज में भजन गा रहा है। जी जुड़ा गया। तन्मयता और श्रद्धा ऐसी कि औरों की दृष्टि में जो मस्जिद की अजान है, निश्चल मन में वह भजन है, अंतर तक भिगो देने वाला भजन है। क्या यही मधुमती भूमिका नहीं है? मेरे अग्रज एक भजन गाते थे, सिर धर मटुकिया डोले रे, ब्रज की ग्वालने दही बेचने अन्य गांव गई हैं। सिर पर दही की मटकी है, मन में हर घड़ी छाए रहने वाले श्याम। नतीजा, दधी का नाम भूल गई ग्वालिन, हरी ले बोले रे। लो सिर पर है दही और मन में है हरी, कहां दही याद रहा, हरी को बेचे जा रही है। यह नहीं कहती दही लोरे, कह रही है हरी लोरे, हरी लोरे। मुग्धावस्था का चरम, छाप तिलक धर दीनी, या उधो मन तो एके माही, सो तो ले घनश्याम सिधारे। जोग सिखावन का ही कि आत्मा अवस्था कहने का अब होश कहां रह गया है, कहां सुधी है अजान में और हरि भजन में भेद करने का। मेरा के विष पान में लोग ईश्वर कृपा चमत्कार पाते हैं। जो राणा ने भेजा था वह तो मीरा के लिए एक पेय पदार्थ था। विष कहां था कि प्राण लिया। हृदय राम जो हुई तो भेद करने पर रखने की दृष्टि कहां रह जाती है। स्वर्गीय भोलानाथ पिंड की एक कविता है, श्रद्धा जब दिया जलाती है, प्रतिमा की पूजा भी ले जाती है, मंदिर भी उजियारा हो जाता है। नहीं बंधु, श्रद्धा जब श्रद्धा से दिया जलाती है तो कहां प्रतिमा

कहां मंदिर, बाहर भीतर चारों ओर उजियारा ही उजियारा। सिर पर दही, मुंह में हरीले हरीले, हवा में अजान के स्वर, कानों में भजन के मीठे बोल।

श्रद्धा और विश्वास, आप सभी सुन रहे थे आज का चिंतन मन्मथनाथ मिश्र के स्वर में। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही हैं वंदना। तो लीजिए आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से प्रस्तुत है आपका अपना प्रातःकालीन कार्यक्रम भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज आपके साथ मैं हूं माणिक। श्रोताओं, सुबह की हर किरण में प्रभु का नाम हो, हर दिल में भक्ति और चेहरे पर मुस्कान हो। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संकट मोचन अंजनी पुत्र भक्तों के कष्ट हरने वाले पवन सुत हनुमान की आराधना से। प्रस्तुत है हरिओम शरण के स्वर में हनुमान चालीसा।

जिसके मन में राम बसे उसके दुख सब दूर, हनुमत कृपा जिस पर हो उसका जीवन नूर। अभी हम सभी हरिओम शरण के स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और अब सुनिए स्वर सम्राट मोहम्मद रफी की आवाज में जीवन के बदलते समय और सत्य को दर्शाता ये भजन।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अब बारी है संत कबीर की अमृत वाणी की, जो हमें बाहरी दिखावे नहीं बल्कि सच्ची भक्ति का संदेश दे रही है।

0: भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम चल रहा था वंदना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान की आज की श्रृंखला,
1: एपिसोड नंबर 386। 386।

नाग भुशुंडी को अखंड भक्ति का वरदान देकर भगवान राम उन्हें अपनी माया से उत्पन्न जगत का रहस्य बताते हुए निज सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं, एक ही पिता के अनेक पुत्र अलग अलग स्वभाव और चारित्रिक विशेषताएं लिए होते हैं। कोई ज्ञानी, कोई तपस्वी, कोई वीर योद्धा तो कोई दानी होता है। पिता का प्रेम उन सबको समान रूप में प्राप्त होता है। मेरा मूर्ख पुत्र भी पिता को अपने प्राणों के समान प्रिय होता है। उसी प्रकार मेरा सेवक मुझे प्रिय होता है। अतः सब कुछ त्याग कर हे काक भुशुंडी, तू मेरा भजन कर। इस भांति तुम्हारी गति कालातीत होगी। समय का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रभु से अखंड भक्ति का वरदान प्राप्त कर उनके श्रीमुख से निज सिद्धांत की व्याख्या सुनकर काक भुशुंडी का तन मन पुलकित हो गया।

श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी आप सभी सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले अपने श्रोताओं को अब समय हो गया कार्यक्रम विवरण देने का। आज आपके केंद्र से जो भी कार्यक्रम आज प्रसारित और रिले होने हैं, आइए उसकी संक्षिप्त जानकारी ले लें।

श्रोताओं, रोज की तरह ही आज सुबह 7 बजे सुनेंगे आप सभी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। भोजपुरी नागपुरी गीतों को लेकर हाजिर हो रहे हैं हम, तो सुनिएगा जरूर। 7:20 का समय है प्रसंग, ये सामाजिक वार्ता के कार्यक्रम का। आज की वार्ता का विषय होगा दहेज प्रथा। वार्ताकार होंगी सुष्मिता शर्मा। सुगम संगीत सुनेंगे 7:30 पर। रोज की तरह ही सुबह 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर होगा मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:30 का समय प्रादेशिक समाचार का है, जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा जरूर मॉर्निंग मेलोडी आज सुबह 8:45 पर। सुबह 9 बजे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 9:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आकाशवाणी पॉडकास्ट श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत पद्म विभूषण एन राजन से होगी बातचीत। 9:35 पर पुनः विविध भारती के कार्यक्रम। सुबह 10 बजे हेलो हजारीबाग। सुबह 11 बजे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, और संध्या 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम। उससे पहले प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

आकाशवाणी के हजारीबाग के केंद्र के श्रोता आज अपने केंद्र से प्रसारित और रिले हुए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी ले रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में प्रादेशिक मुख्य समाचार संध्या 5 बजे होगा। आज शाम 5:02 पर किसान वाणी, ये कार्यक्रम सुनिए। जल का संचयन और बचत कर कैसे कर सकते हैं आप पर्यावरण की सुरक्षा और अपनाए मिशन लाइफ को, और भी कई बातें आरंभिक चर्चा के साथ होंगी इसी कार्यक्रम में। 5:32 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी किसान भाइयों का यह कार्यक्रम होगा। और खेतीबाड़ी में आज चर्चा मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है और इसके फायदे क्या क्या हैं, और भी बहुत सारी बातें होगी इसमें। संध्या 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार, 6:02 पर मेहनतकश अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए क्या है प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम, ये चर्चा का विषय होगा आज। 6:30 पर लुत्फ उठाइएगा फिल्म संगीत का प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 7:07 पर जिले में आजकल झनकार, ये कार्यक्रम 7:15 पर फिल्म संगीत का दैनिक कार्यक्रम। ऑल टाइम हिट्स 7:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत रात्रि 8 बजे। और इसी तरह से समाचार संध्या 8:45 पर न्यूज एट 9 और स्पॉटलाइट, ये सब कार्यक्रम समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

9:15 तक 9:30 पर विविध भारती आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, रात्रि 10 बजे रजनीगंधा, 10:30 पर आज के फनकार, और 11:05 पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार के बाद कार्यक्रम का समापन 11:10 को। तो ये थे वो कार्यक्रम जिन्हें आज आप सबके लिए प्रसारित और रिले होने हैं। बोल रहे हैं हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुबह की 6:55 बस होने ही को है और संस्कृत में समाचार अब आप सभी सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनान्तर्गतं अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तमीकृत्य स्वीकर्तुम् आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानाम् आतंकवादिनाम् आतंकिसंघटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकिसंघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्याम् विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवः मार्को रुबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्रीरुबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरुबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरुबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्याम् आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्र प्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्य प्रदेश

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जो है आपका ही FM 102.1 मेगाहर्ट्ज। भारत के कोने कोने से आपने हमें स्ट्रीम कर रखा है अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से। तो लीजिए अब आगे बढ़ते हैं संस्कृत में समाचार के बाद, सुनते हैं लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। आज का लोक रंग कई लोक गीतों के साथ। सबसे पहले भोजपुरी लोकगीत शारदा सिन्हा के स्वर में।

ये थे आजाद अंसारी नागपुरी लोक गीत के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम लोक रंग में अब एक बार फिर से शारदा सिन्हा भोजपुरी लोक गीत के साथ।

0: ये था भोजपुरी निर्गुण, गा रहे थे मदन राय, लोक रंग अब यही तक। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। सुनिए सामाजिक वार्ता प्रसंग। आज की वार्ता का विषय दहेज प्रथा। वार्ताकार सुष्मिता शर्मा।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आज कलम चलने लगी है बेटी के अधिकार में, आज कलम चलने लगी है बेटी के अधिकार में, क्योंकि हार जमाने की भी है हर बेटी के हार में। मैं बताना चाह रही हूँ उस समाज के दलबल को, मैं बताना चाह रही हूँ उस समाज के दलबल को, घुट घुट कर जी रही उस बेटी के समर्पण को, घुट घुट कर जी रही उस बेटी के समर्पण को। सात फेरों का है बंधन जो वचनों के संग बनता है, और आत्मा के मिलन से जीवन में रंग भरता है। दोनों में झगड़ा तो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, दोनों में झगड़ा तो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस मौके पर लड़का लड़की को ताना कसे दहेज का, टीवी फ्रिज और कूलर मिक्सर और सेज का। अगर बेटी लाचार हुई तो कौन खामियाजा भुगतेगा, अगर बेटी लाचार हुई तो कौन खामियाजा भुगतेगा। बात पैसों की है नहीं, पर कैसे जीवन सुधरेगा। आज भारत विकासशील देशों में गिना जाता है, परंतु कुछ छोटी सोच और समाज के पुराने रिवाज, जैसे बाहर शौच करना, कूड़ा इधर उधर फेंकना, बेटी को शिक्षा ना दिलाना और दहेज प्रथा, हमारे देश भारत को विकसित होने से रोक रहे हैं। 21वीं सदी में विकासशील भारत के लिए दहेज प्रथा एक कोढ़ का काम कर रही है। दहेज प्रथा हमारे देश के लिए एक कलंक है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह प्रथा किसी आतंकवाद से कम नहीं है। दहेज प्रथा का चंगुल हर जगह व्याप्त है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि अमीर हो या गरीब, हर वर्ग के लोगों को जकड़ रखा है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में भी दहेज प्रथा देश में एक अभिशाप के रूप में फैल चुका है। आज भी इस 21वीं सदी में बेटी के जन्म लेते ही ज्यादातर माता पिता के सिर पर चिंता सवार हो जाता है। चिंता इस बात की नहीं होती है कि बेटी की पढ़ाई कैसे करवाएंगे, चिंता तो इस बात की होती है कि बेटी के विवाह कैसे करवाएंगे, विवाह के लिए दहेज कैसे इकट्ठा करेंगे। दहेज की ज्वाला से जलती है जिंदगियां, दहेज के सहारे कहां चलती है जिंदगियां। हालांकि आज कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है, परंतु आज भी ज्यादातर घरों में बेटी पैदा होती है तो उनके लिए वह दुख का दिन होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है दहेज प्रथा। आज भी हमारे हिंदू समाज के माथे पर यह एक कलंक जैसा चिपका हुआ है। दहेज प्रथा की शुरुआत कब हुई यह बता पाना

सटीक रूप से तो बहुत मुश्किल है, परंतु यह बता सकते हैं कि यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। रामायण काल से भी कन्या के विदाई के समय पर माता पिता के द्वारा दहेज के रूप में धन संपत्ति देने का उदाहरण मिलता है, परंतु उस समय दहेज को लोग स्वार्थ भावना के रूप में नहीं लिया करते थे और लड़के वालों की ओर से तो कोई दहेज की मांग नहीं हुआ करती थी। विवाह को एक पवित्र एवं धार्मिक बंधन माना जाता था जिसमें दो परिवारों का मिलन होता था। उस समय दहेज को लड़की के माता पिता लड़की के लिए सामान के रूप में दे दिया करते थे, जिसे बिना कोई लोभ लड़के के घर वाले रख लिया करते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया और हिंदू समाज में सती प्रथा, जाति पाति, छुआछूत जैसी समाज में बुराइयां बढ़ने लगी, वैसे ही दहेज ने भी एक व्यापार का रूप ले लिया। शुरुआती समय में तो जेवर, कपड़े, फर्नीचर, फ्रिज, गाड़ी और टेलीविजन तक ही बात थी, लेकिन बाद में लोग मोटी रकम भी लड़की वालों से लेने लगे। गलती से कहीं अगर लड़का यदि कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ी सरकारी नौकरी वाला हो तो फिर सौदे की बात जमीन जायदाद या मोटर कार तक भी पहुंच जाती है। आज 21वीं सदी में दहेज प्रथा एक बहुत ही क्रूर रूप ले चुका है। ऐसा भी होता है कि अगर विवाह के समय दहेज में कमी हुई तो कुछ लोग तो शादी किए बिना ही बारात वापस ले जाते हैं, और अगर गलती से शादी हो भी जाती है तो लड़की का जीवन नरक के समान बीतता है, या फिर लड़कियों को कुछ गलत बहानों से तलाक दे दिया जाता है। बात तो यहाँ तक भी बिगड़ चुकी है कि लड़कियों से तलाक न मिलने पर ससुराल वाले उन्हें जलाकर मार देते हैं। आज दहेज प्रथा कैंसर की तरह समाज को नष्ट करते जा रहे हैं। सरकार भी दहेज प्रथा को रोकने के लिए बहुत कड़े नियम बना रही है, परंतु दहेज प्रथा कुछ इस तरीके से पूरे देश में फैल चुका है कि अब इसे रोकना कोई आसान काम नहीं लग रहा है। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं। आज बेटी बेटों के साथ कंधा मिलाकर देश के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। पता नहीं फिर भी लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि बेटा बेटी एक समान। दहेज प्रथा के कारण ही नारी जाति को कई प्रकार के अत्याचार को सहना पड़ा है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि अमीर हो या गरीब, हर वर्ग के लोग को यह बुरी तरह से जकड़ कर रखा है। इसके खिलाफ सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों का हमारे रूढ़िवादी सोच वाले लोगों पर कोई असर नहीं होता है। वह दहेज लेना एक अभिमान का विषय मानते हैं। दहेज के खिलाफ ना तो कोई बोलना चाहता है और ना ही कोई सुनना चाहता है, क्योंकि इसमें सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। दहेज प्रथा ने लोगों की सोच को इतना खोखला कर दिया है कि अगर उनको दहेज नहीं मिलता है तो वो शादी से इनकार कर देते हैं। भ्रूण हत्या भी दहेज प्रथा की ही देन है, क्योंकि लोग मानते हैं कि बेटियां तो पराई होती है, वह हमारे किसी भी प्रकार से काम नहीं आएंगी और उनके शादी पर उनको दहेज भी देना पड़ेगा। इसलिए अब बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई है। वह लड़की होने को सिर्फ खर्चा ही मानती है, जिस कारण बेचारी लड़कियों को बिना कोई कसूर के कोख में ही मरवा दिया जाता है। भारत में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसी कारण महिलाएं अपने आप को कमजोर मानती हैं और दहेज रूपी महामारी का शिकार हो जाती हैं। शिक्षा की कमी के कारण भी दहेज को बढ़ावा मिलता है। लोगों की मानसिकता का इसी से पता लगाया जा सकता है कि अखबारों या इंटरनेट पर देखा होगा कि शादी के विज्ञापनों में लिखा होता है सुंदर लड़की चाहिए, तो बस जो सांवली लड़की है या जो सुंदर नहीं है उनके लिए बहुत सारा दहेज चाहिए। लेकिन जो भी हो, इसके दुष्परिणाम यह होता है कि इसके फलस्वरूप देश के विकास में बाधा

व्यवस्था होती है, महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचता है। इसके उपाय के फलस्वरूप हमें दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बनाना चाहिए, कड़ी कानून बनाना चाहिए। लड़कियों को शिक्षित बनाना होगा, महिला सशक्तिकरण पर जोर देना चाहिए। लड़का लड़की के भेदभाव को खत्म करना होगा, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना होगा तथा दहेज प्रथा पर सामाजिक जागरूकता फैलाना होगा।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप सभी सुन रहे थे सामाजिक वार्ता का कार्यक्रम प्रसंग। आज का विषय था दहेज प्रथा और वार्ताकार थी सुष्मिता शर्मा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत, सबसे पहले सोनू निगम और साथियों की आवाजें।

सुगम संगीत सुन रहे हैं आप सभी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। और अब ये अशोक खोसला की आवाज़।

के ज्योति के गाए इसी गीत के साथ सुगम संगीत अब यहीं तक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात का आज का अंक होगा। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज होगा। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार होंगे। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली और रांची केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। हमारे जांजीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे

0: से अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
3: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
4: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्य की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में देशभर के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री संजय सेठ होंगे शामिल। राज्यभर के सभी मतदान केंद्रों पर आज ऑन मैप्ड मतदाताओं की सूची की जाएगी प्रकाशित। ऑन मैप्ड मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में करा सकते हैं मैपिंग। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने अपराध और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दिए निर्देश। पुलिस गश्त बढ़ाने और आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर दिया जोर। राज्य भर में पड़ रही है भीषण गर्मी। 44.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा मेदिनी नगर का तापमान। कल तक हीट वेव चलने की चेतावनी। और रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू। पुरुष 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल मुकाबले में अनिमेश कुजूर ने 10.15 सेकंड के साथ बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यह रोजगार मेला झारखंड समेत देशभर के 47 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। रांची में कार्यक्रम का आयोजन सीसीएल ऑडिटोरियम में होगा। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे। राज्यभर के सभी मतदान केंद्रों पर आज ऑन मैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। यह सूची 2 सप्ताह तक प्रदर्शित की जाएगी। सभी ऑन मैप्ड मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में अपनी मैपिंग करा सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में यह निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए और पुनर्निरीक्षण का कार्य पूरी पारदर्शिता तथा गंभीरता के साथ संपन्न कराए जाए। राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने लातेहार दौरे के दौरान जिले की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उग्रवाद, संगठित अपराध, महिला सुरक्षा और नशाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की जानकारी ली। बैठक में डीजीपी ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश देते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने और आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जनजातीय सांस्कृतिक समागम में शामिल होने नई दिल्ली जा रहे लोगों से टाटानगर रेलवे स्टेशन पर मुलाकात की। इस मौके पर चंपाई सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज का प्रेरणा स्रोत बताते हुए कार्यक्रम की सफलता की कामना की।
2: रूढ़ी जन प्रथा को बचाना है जो वर्षों से हमारा पूर्वजों ने हजार हजार साल पहले से लड़ाई लड़ते लड़ते जल जंगल जमीन का बांध और अपना अस्तित्व को बचाने के लिए खून का नदी बहाया। इन भाषा सांस्कृतिक जीवित रहे और इसका उत्थान हो।
0: रांची के टाटी सिल्वे थाना क्षेत्र स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के दौरान कंप्यूटर सिस्टम हैक कर कदाचार कराने का प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन, बैंक चेक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश

0: @axhandle@theRateIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक 27 मई को शाम 4 बजे से आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। राजधानी रांची समेत कई जिला भीषण गर्मी की चपेट में है। 44.4 डिग्री सेल्सियस के साथ मेदिनीनगर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और कोडरमा में दिन में तेज धूप व तापमान में वृद्धि होगी। वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला में तापमान में वृद्धि के साथ लू चलने की संभावना है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली की प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में देश भर से 750 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन 7 स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले संपन्न हुए। पुरुष 100 मीटर के दौड़ के सेमीफाइनल में अनिमेश कुजूर ने 10.15 सेकेंड का समय निकालते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वहीं महिला लंबी कूद में एनसी सोजन ने 6.75 मीटर की छलांग लगाकर नया मीट रिकॉर्ड कायम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिला वर्ग में महाराष्ट्र की रवीना गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन को लेकर खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। 4 दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 62 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 27 ओलंपियन और कई एशियन एवं वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता हिस्सा ले रहे हैं, जिससे रांची में खेल प्रेमियों के बीच उत्साह का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान तारीख की घोषणा की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर और हिंदुस्तान ने लिखा है झारखंड की 2 समेत 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान। दैनिक भास्कर ने जेटेट भाषा विवाद पर सत्ता पक्ष में मतभेद की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर होगी अभेद सुरक्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में देशभर के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री संजय सेठ होंगे शामिल। राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर आज ऑन मैप्ड मतदाताओं की सूची की जाएगी प्रकाशित। ऑन मैप्ड मतदाता अपने BLO से संपर्क कर मतदाता सूची में करा सकते हैं मैपिंग। DGP तदाशा मिश्रा ने अपराध और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दिए निर्देश। पुलिस गश्त बढ़ाने और आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर दिया जोर। राज्य भर में पड़ रही है भीषण गर्मी। 44.5

0: 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा मेदिनीनगर का तापमान। कल तक हीट वेव चलने की चेतावनी। और रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू। पुरुष 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल मुकाबले में अनिमेश कुजूर ने 10.15 सेकंड के साथ बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।

आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का हमारा मेलोडियस कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आज आपके साथ माणिक, और ये पहला गीत मेलोडियस तो नहीं है, लेकिन अगर इसे मेलोडी मान लिया जाए तो ये मेलोडियस से कम भी नहीं।
1: जब से हुई है शादी, क्या बताएं, आंसू बहा रहा हूं। आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूं।

की फौज आके मेरी चाकरो रही।

मॉर्निंग मेलोडी का यह पहला गीत थानेदार फिल्म से हमने चुना था, अमित कुमार की आवाज थी। और अब एक बार फिर से अमित कुमार की आवाज है और इनके साथ अब गाएंगी अलका याग्निक। फिल्म है नरसिंह।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी का ये आखिरी नजराना गीत है। मोहरा फिल्म से इसे हमने चुना है। उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजी ही

मोहरा इस फिल्म के इसी गीत के साथ अब मॉर्निंग मेलोडी का यह सफर यहीं तक। अपने दोस्त माणिक को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजने को हैं। बस कुछ ही सेकंड्स में 9 बजेंगे और ये लीजिए 9 बज गया। और विविध भारती के कार्यक्रम अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे रंजना फिल्म का गाना है, आवाजें थी मधुश्री आंचल सेठी और सखियों की, रियाज कामिल ने लिखा था इसे और संगीत से संवारा था एआर रहमान ने। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं जॉनिटा गांधी की आवाज में दंगल फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

0: दोस्तों, आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन दिवस। इसका उद्देश्य महिलाओं में प्रसव के दौरान होने वाली गंभीर बीमारी प्रसूति फिस्टुला के प्रति जागरूकता फैलाना तथा इसके उन्मूलन के लिए प्रयास करना है। इस रोग के कारण महिलाओं को शारीरिक पीड़ा के साथ साथ सामाजिक उपेक्षा और मानसिक कष्ट भी सहना पड़ता है। ये समस्या विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है जहां उचित स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी होती है। समय पर चिकित्सा सुविधा, सुरक्षित प्रसव तथा महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता से इस रोग को रोका जा सकता है। इस वर्ष की थीम है हर हेल्थ इज अ राइट, इन्वेस्ट इन एंडिंग फिस्टुला एंड चाइल्ड बर्थ इंजरीज। तो दोस्तों, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपको पालोमे की आवाज में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं।
1: भूतलों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है, उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है और

0: पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा। अम्मा जी, आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
1: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
0: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
1: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की। उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है। तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं। तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
0: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
1: डर।
0: हाँ, मन में डर जो होता है,
1: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
0: क्या बात है।
1: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाती रही। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी,
0: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
1: बिल्कुल सहज रूप।
0: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
1: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था। 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई, रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
0: जी,
1: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वॉज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइव गर्ल ओ भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
0: अच्छा।
1: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
0: जी।
1: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई। और पंडित ओमकारनाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
0: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
0: अच्छा,
1: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
0: जी।
1: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी, तो मेरे मन में आया ये विचार। मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से, यानी जिस तरह कंठ से आवाज आती है, उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा, तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
0: और पंडित ओमकारनाथ जी के बारे में कुछ?
1: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
0: जी,
1: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
0: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
1: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है, कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया।
0: हाँ जी।
1: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
0: जी जी,
1: उसकी बू जो है, उसको कैसे ले आना है, तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया, और एक एक करके हो गई बात।
0: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
1: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
0: जी जी,
1: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
0: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये सवाल ऐसा
1: है, हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
0: अच्छा।
1: मेरे पेरेंट्स के तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
0: हाँ हाँ हाँ। जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे, या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
1: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रिस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं
0: जी, जी।
1: तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
0: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
1: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में,
0: इंस्ट्रूमेंट
1: में। जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
0: क्या बात। अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है। उसका आनंद ही कुछ और है। तो उसके बारे में हमें बताइए, जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वॉयलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
0: जी,
1: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
0: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
1: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
0: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं मजी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर हुई।
1: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
0: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
1: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: वो भी गायकी ही बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की। तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता।
0: बिल्कुल सही कहा
1: लोगों को
0: जी।
1: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
0: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके?
1: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
0: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो समप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
1: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है
0: जी, जी।
1: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बना।
0: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
1: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दिए इस संबंध में
0: जी। बिल्कुल,
1: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे, तो मेरा कार्यक्रम था, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को, तो वो पूछा इतने में कर लोगी तुम? मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस

0: है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा, तो उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा, आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में? नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो जो हलचल जो हो रहा था, तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे। और मैंने उनको कहा, अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम। तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाहर जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे। उसके जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराग देश बचाया। तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा, आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एकलव्य का? तो लोग कहा कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। एक लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में, और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया, जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी,
0: पर मैं यही सोचती हूँ, हमें ये इतना बड़ा समुद्र है, इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहां चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहां तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया, और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।

फिल्म सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक छोटी

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती हैं।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्यालय की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आई। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

करण मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घायवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

सैफ अली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, सैफ अली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में सैफ अली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत के रीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के ठीक 10 बजे और ये समय हुआ हेलो हजारीबाग कहने का आप सबसे और आपसे हेलो हजारीबाग लेने का। तो कहते हैं और कहते ही रहते हैं एक घंटे तक हेलो हजारीबाग।
1: It's 10 o'clock.
2: Ten, nine, eight, seven, six.

0: प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र के प्रिय कार्यक्रम, आप सबके अपने कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज हूं आज की सुबह आपका ही साथी माणिक चक्रवर्ती, कहता हूं सबको नमस्कार जोहार।

हेलो हजारीबाग के श्रोताओं, आज का ये विशेष दिन आज एक अंक पर समर्पित है और वो अंक है उस आवाज को जो पीढ़ियों से भारत की धड़कनों में बसती आई है। और सबसे पहली जो चर्चा हमारी है वो है कि जो खेतों की मेड़ से लेकर शहरों की गलियों तक गूंजती रही, जो कभी समाचार बनकर आई, कभी संगीत बनकर मुस्कुराई, तो कभी शिक्षा और जागरूकता की मशाल बनकर घर घर पहुंची। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं भारत की शान आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों की। आवाज में वो ताकत थी, दिलों को जोड़ जाती थी, रेडियो की हर धुन घर घर उम्मीद जगाती थी और आज भी जगा रही है। सिर्फ खबरें नहीं, संस्कार भी सुनाए हैं हमने। आकाशवाणी ने भारत को बहुत करीब तक ले आया है। श्रोताओं, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1936 में हुई, जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। बाद में महान साहित्यकार पंडित नरेंद्र शर्मा ने इसे आकाशवाणी नाम दिया, अर्थात आकाश से आने वाली वाणी। और सच में श्रोताओं, देखिए ना, यह केवल एक माध्यम तो नहीं रहा बल्कि भारत की आत्मा की आवाज बन गया है। 90 वर्षों के इस सफर में आकाशवाणी ने देश को हंसाया भी, रुलाया भी, जागृत भी किया और हर मुश्किल घड़ी में देश के साथ खड़ा भी रहा। इसके कई सशक्त माध्यम रहे जो आज भी चल रहे हैं निरंतर आप सबके लिए। साथियों, जब टीवी हर घर में मौजूद नहीं था, जब इंटरनेट का नाम भी लोगों ने नहीं सुना था, तब गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचाने का काम रेडियो ने किया। कृषि कार्यों के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों की जानकारी मिली, विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित हुए, स्वास्थ्य, विज्ञान, भाषा, साहित्य, पर्यावरण, हर विषय पर ज्ञान का खजाना लोगों तक पहुंचा रहा है आकाशवाणी। आज भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र रेडियो समाचार और चर्चाओं को सुनते हैं। आकाशवाणी ने यह साबित किया कि ज्ञान की रोशनी पहुंचानी हो अगर हर द्वार, तो सबसे सरल माध्यम बन जाता है रेडियो का संसार। साथियों, देश में चाहे चुनाव हो, आपदा हो, युद्ध का समय हो या फिर कोई राष्ट्रीय उपलब्धि का वक्त हो, समय हो, लोगों का भरोसा हमेशा आकाशवाणी पर रहा। आकाशवाणी की समाचार सेवा ने निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई। एक समय था जब सुबह की शुरुआत ही रेडियो समाचार से होती थी। लोग घड़ी नहीं देखते थे, लगभग समाचार सुनकर ही अंदाजा लगाते थे। और सच कहें तो जिस आवाज पर जनता को यकीन हो जाए वही असली माध्यम कहलाए। तो 90 वर्ष पूरे हुए हैं, सभी को शुभकामनाएं। हेलो हजारीबाग की ओर से, आपके दोस्त मैनिक चक्रवर्ती की ओर से भी, क्योंकि मनोरंजन का सुनहरा संसार है ये रेडियो जो अपने 90 वर्ष मना रहा है। हम सभी रेडियो और मनोरंजन से के रिश्ते से जुड़े हुए हैं, जैसे आत्मा और संगीत का रिश्ता होता है। पुराने गीत, नाटक, हास्य कार्यक्रम, लोक गीत, कविता पाठ और विविध भारती की मधुर प्रस्तुतियां, इन सब ने करोड़ों लोगों की जिंदगी में मुस्कान घोली है। कितने ही कलाकारों को पहचान मिली रेडियो से, कई गायकों, कवियों और उद्घोषकों ने यहीं से अपनी यात्रा शुरू की। आज भी जब कहीं पुराना रेडियो बजता है तो यादें अपने आप ताजा हो जाती हैं।

क्योंकि कुछ आवाजें कभी बूढ़ी नहीं होती, रेडियो की तरंगे हमेशा जवान रहती हैं। क्यों? क्योंकि गांव, किसान और आम जनता की आवाज है ये। आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत रही है उसका जमीन से जुड़ाव। गांव की संस्कृति, लोक भाषाएं, स्थानीय प्रतिभाएं, लोक संगीत, सबको मंच मिला। आकाशवाणी ने केवल बड़े शहरों की बातें नहीं की, बल्कि गांव की धड़कनों को भी पूरे देश तक पहुंचाया। हजारीबाग जैसे क्षेत्र में भी आकाशवाणी ने सामाजिक जागरूकता, खेल, शिक्षा और संस्कृति को नई पहचान दी है, और आपका साथ पाकर ये और भी आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी सुहाने सफर को वर्षों पहले मोहम्मद रफी ने गा दिया था। महसूस कीजिए आज 90 वर्ष पूरे होने पर इस गीत को, इस सुहाने सफर को।

बिल्कुल, ये रेडियो का सफर तो सुहाना सफर है ही, और खुशी की बात ये कि 90 वर्ष पूरा कर चुका है ये सफर। भाइयों, आज मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया का दौर पहुंच गया, लेकिन रेडियो की आत्मीयता आज भी बरकरार है। देखिए, मैं कहूंगा हेलो हजारीबाग, कहा ना आपके दिल ने हेलो हजारीबाग, तो ये है एफएम चैनल का कमाल। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और डिजिटल रेडियो, आकाशवाणी समय के साथ खुद को बदलते हुए भी अपनी विश्वसनीयता और संस्कृति को बचाए हुए है। ये युवाओं को प्रेरणा भी देता है। आज के युवाओं के लिए आकाशवाणी सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का मंच है। यहाँ भाषा सीखने का अवसर है, आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर है और समाज से जुड़ने का एक सुंदर जरिया भी। जो युवा पत्रकारिता, उद्घोषणा, संगीत या साहित्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो आकाशवाणी एक प्रेरणा ही है। तो श्रोताओं, 90 वर्षों का ये सफर केवल समय की कहानी नहीं, यह भारत की भावनाओं, संस्कृति और विश्वास की कहानी है। आकाशवाणी ने हमें जोड़ा है, सिखाया है, संभाला है और मुस्कुराना भी सिखाया है। अंत में ये कहना चाहूंगा कि तरंगों में बसती रही भारत की पहचान, हर दिल तक पहुंची इसकी मधुर जुबान, 90 सालों से जो रिश्ता निभा रही है आकाशवाणी, हर घर को अपना बना रही है। वक्त बदला, दौर बदले, बदले कई जहान, लेकिन दिलों में आज भी जिंदा है आकाशवाणी का सम्मान। इसी शुभकामना के साथ आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों को हम सबकी ओर से शत शत नमन और प्रणाम भी। मैं आपका दोस्त माणिक लगातार लगा हुआ हूं, फिलहाल इस चर्चा से अनुमति चाहूंगा, लगा हुआ हूं आपको कहने हेलो हजारीबाग।

मौसम ने चारों तरफ गर्मी ही गर्मी फैला रखी है और ऐसे में आज के दिन का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस अधिकतम जाने को है और रात्रि का न्यूनतम तापमान होगा 25 डिग्री सेल्सियस। आज भी उमस भरी गर्मी रहेगी श्रोताओं, धूप बहुत कड़ी रहेगी, तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला। और इधर हजारीबाग में भीषण गर्मी में बिजली का संकट गहरा गया, शहर से लेकर प्रखंडों तक जनजीवन बेहाल हो उठा है। परेशानी है लो वोल्टेज की और कहीं तो बिजली ही नहीं, अघोषित कटौती हो चुकी है और फॉल्ट से लोग बहुत परेशान हैं। आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है।

इधर झुलस रहा है पूरा झारखंड, तो पलामू, गढ़वा, चतरा में भी लू का अलर्ट है। उबल रहा है देश साथियों। सुबह 10:50 पर दुनिया के 50 सबसे गर्म शहर भारत के ही हैं। गर्मी उमस से लोग जहां बेहाल हैं, वहां दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो

गया है। रात में बिजली कटौती ने बढ़ाई है परेशानी। तो भाई ऐसे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ट्यून किया है अपना मनपसंद एफएम स्टेशन आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र, और ऐसे में हम आपको गर्मी से झुलसने तो नहीं देंगे, हाँ गर्मी के गीतों को सुनाकर उसके साथ शीतलता बहाने की कोशिश जरूर करेंगे। ये लीजिए पहली कोशिश हमारी। कह दीजिए ना इस गीत को सुनते सुनते, जी हाँ, हेलो हजारीबाग।

हमें ये है पूरा एहसास कि इस गीत को सुनने के बाद जिसे गाया पूर्णिमा और कुमार शानू ने, आपको ठंडक जरूर मिली होगी। लेकिन देश में गर्मी फैलाने के और भी तरीके चल रहे हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और सीएनजी के भी। हाँ श्रोताओं, पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी की कीमतें भी फिर से बढ़ा दी गई हैं। सीएनजी की कीमत में 1 रुपए का इजाफा कर दिया गया। अभी यह वृद्धि दिल्ली में बताई गई है, लेकिन सीएनजी के रेट इसी तरह बढ़ते रहे तो दिल्ली के बाद कुछ ही देर में बाकी शहरों में भी यह कीमत बढ़ा दी जा सकती है। पिछले 9 दिन में धीरे धीरे करके सीएनजी की कीमत में 4 रुपए का इजाफा हो गया। इसकी कीमत 15 मई को 2 रुपए, 17 मई को 1 रुपए और आज 23 मई को 1 रुपए बढ़ाई गई। और इधर अमेरिकी विदेश मंत्री का आज से भारत दौरा शुरू हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से 4 दिवसीय भारतीय दौरे पर हैं। इस दौरे में पहला चरण वो कोलकाता पहुंचे। इस दौरे पर का मकसद उन द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना है जिनमें पिछले साल के मध्य से ही तनाव बना हुआ है। अपने दौरे पर रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। रूबियो दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। खेल की तो बहुत सारे समाचार हैं, लेकिन मैदान में भिड़ गए कोहली और ट्रेविस, हाथ भी नहीं मिलाया। आईपीएल में एसआरएच वर्सेस आरसीबी मैच के दौरान कोहली और हेड के बीच खासी गर्मागर्मी देखने को मिली। देखिए, गर्मी हर जगह है तो हमें गुस्सा भी नहीं होना है, धैर्य रखना है और शांति से इस गर्मी का निपटारा करना है। पैट कमिंस की एक गेंद विराट के बल्ले का इनसाइड एज लेकर बाउंड्री पार चली गई। इस पर स्लीप में खड़े ट्रेविस हेड ने विराट पर टोंट मार दिया, जो विराट को पसंद नहीं आया। इसके बाद जब वेंकटेश अय्यर ने 1 ओवर में 23 रन मारे तो विराट हेड से बोले, तुम भी जाकर ऑफ स्पिन कर लो। मैच के बाद कोहली ने हेड के साथ हाथ भी नहीं मिलाया। इतनी गर्मी क्यों भाई विराट जी, खिलाड़ी हैं हम सभी तो गर्मी तो मैदान के बाहर ही रखनी होगी। और इधर एसआरएच ने आरसीबी को हरा दिया है। ईशान का चला है बल्ला। आईपीएल के 67वें मुकाबले में एसआरएच आरसीबी को 55 रनों से हरा चुका। और इधर कांस से जुड़ी एक खबर, इंडियंस के लिहाज से कांस तब तक अधूरा है जब तक ऐश्वर्या के कांस लुक का दीदार ना हो जाए। इंडियन ब्यूटी ऐश्वर्या राय कांस में पहुंचते ही छा गई। क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए पहुंची ऐश्वर्या का कांस से फर्स्ट लुक बेहद ही चार्मिंग नजर आया। और अब विशेष बात हमारी हो रही है तो आगे बढ़ाते हैं। गर्मियों में लू से बचाव के लिए क्या रखें सावधानी और क्या अपनाएं उपाय, ये जान लेते हैं। हेलो हजारीबाग के श्रोताओं, इस समय देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी है। बिहार, अपना झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। ऐसे में आज का हमारा विषय, गर्मियों में लू से बचाव के लिए क्या रखें सावधानी और क्या अपनाएं उपाय। एक शेर याद आ रहा है, धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, सावधानी की छांव इंसान को बचा ही लेती है। लू यानी हीट वेव केवल गर्मी या गर्म हवा नहीं होती, बल्कि ये शरीर को गंभीर रूप से बीमार भी कर सकती है। यदि समय पर ध्यान न दिया गया तो चक्कर आना, उल्टी, तेज बुखार, बेहोशी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं इस भीषण गर्मी में

हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले तो बनता है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। हेलो, जी हां, हजारीबाग। सबसे पहले और जरूरी ये बात कि भरपूर पानी पीजिए। इन दिनों प्यास लगे न लगे, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि गर्मी में शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही ORS, नींबू पानी, छाछ, सत्तू बेल का शरबत, नारियल पानी और आम पन्ना जैसे पेय पदार्थ बहुत लाभदायक होंगे। ये शरीर में पानी और ऊर्जा दोनों बचाए रखते हैं। दोस्तों, हमारे गांव में बुजुर्ग कहा करते थे, जेठ की धूप और खाली पेट दोनों शरीर के दुश्मन हैं। इसलिए खाली पेट घर से बाहर बिल्कुल न निकले। हल्का और पौष्टिक भोजन करें। तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज, अंगूर जैसे पानी से भरपूर फल खूब खाइए। अब बात करते हैं कपड़ों की। गर्मी में हमेशा हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहनिए। इससे शरीर को हवा मिलती है और गर्मी कम लगती है। बाहर निकलते समय सिर को गमछे, टोपी या छाते से ढकना बहुत जरूरी है इन दिनों। विशेषज्ञों का कहना है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बहुत जरूरी काम ना हो तो बाहर निकलने से बचिए, क्योंकि घड़ी यही है, यही समय है जब ये खतरनाक हो रहा है। और यदि बाहर निकलना जरूरी है तो पानी की बोतल साथ रखिए। साथियों, आजकल कई लोग ठंडक पाने के लिए बहुत ज्यादा चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह यह है कि इनका अत्यधिक सेवन शरीर को डिहाइड्रेशन कर सकता है, डिहाइड्रेट कर सकता है। इसलिए प्राकृतिक पेय पदार्थों को प्राथमिकता दीजिए। एक और महत्वपूर्ण बता दूं बात कि घर के छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि लू का असर इन पर सबसे जल्दी होता है। बच्चों को धूप में खेलने से बचाइए और बुजुर्गों को समय समय पर पानी पीना याद दिलाइए। और हाँ, अपने छत और मुंडेरों पर चिड़ियों के लिए कुछ दाना पानी और पानी जरूर रखिएगा। अब सवाल ये कि यदि किसी को लू लग जाए तो क्या करें? यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार, सिरदर्द, चक्कर, कमजोरी, उल्टी या बेहोशी जैसी समस्या हो तो तुरंत उसे छायादार या ठंडी जगह पर लिटाइए, शरीर पर ठंडे पानी की पट्टी रखिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। साथियों, गर्मी से बचना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और सावधानी जरूरी है। एक सुंदर पंक्ति बता रहा हूँ, सुनिए। जीवन अनमोल है, इसे संभाल कर रखिए। गर्मी के मौसम में खुद का ख्याल रखिए। और अंत में यही कहूंगा कि धूप से बचिए, पानी खूब पीजिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। और यही संदेश आज माणिक चक्रवर्ती आपको दे रहा है। और फिर हेलो हजारीबाग कहता हुआ गर्मी का एक गीत शीतलता प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है कि आप इसे गाएं, गुनगुनाएं।

और इधर टाटीझरिया से खबर, वैष्णो देवी मंदिर के रजत जयंती महोत्सव को लेकर बैठक हुई है। 26 मई से आरंभ हो जाएगी 2 दिवसीय अनुष्ठान। और इधर हजारीबाग से एक खबर, व्यवसायियों को दी गई जेपीटी और जीएसटी के बारे में जानकारी, जीएसटी में निबंधन जरूर कराएं, राजस्व संग्रहण पर भी जोर है।

और इधर देश विदेश से खबर, हुरमुज में आवाजाही होगी, प्रतिबंध हटाए जाएंगे। इस गर्मी वाले गीत को सुनने के बाद ये ठंडक वाला समाचार आपको निश्चित रूप से ठंडक देगा। अमेरिका ईरान डील का मसौदा तैयार है, बिना शर्त सीज फायर होगा। ईरानी विदेश मंत्री ने से 24 घंटे में दो बार मिले हैं पाक मंत्री। और इधर ये बुरी खबर आई है, काठमांडू से एवरेस्ट फतह करके उतरते वक्त दो भारतीयों की मौत हो गई है। गाइड भी नहीं बचा पाए और गाइड भी खुद भी नहीं बच पाए। एवरेस्ट की चोटी फतह करने के बाद नीचे उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों की मौत हो गई है। ये दोनों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे उतरते वक्त बेहद थक गए थे। गाइड ने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और इधर रामेश्वरम से ये खबर, 40 डिग्री की गर्मी पर भारी आस्था पड़ गई है। उमड़ रहे हैं श्रद्धालु रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में 40 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती गर्मी है। उमस के बावजूद पर्यटकों को की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है।

चलिए अब आपको गर्मी से और राहत देते हैं, अक्सा बीज घुमा देते हैं। उसी बीच एक खबर आ गई है बंगाल की खाड़ी से, 4 माह में 3 करार से अमेरिका की एंट्री हुई है, समंदर में तनाव बढ़ाएगा ये मामला। बांग्लादेश ने अमेरिकी युद्धपोतों को सौंपे 2 बंदरगाह, खुफिया सूचना भी साझा करेंगे।

साथियों, मौसम बदल रहा है और हमें भी अपनी आदतें बदलनी होंगी। पेड़ लगाइए, पानी बचाइए और अपने आसपास हरियाली बढ़ाइए। यही आने वाले समय में सबसे बड़ी सुरक्षा होगी हमारी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गर्मी में थोड़ा संभल कर चलिए। धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, सावधानी से हर मुश्किल टलती है। इसी संदेश के साथ आज की इस चर्चा से अब अनुमति।

और अब 25 से 2 जून तक नौतप्पा आ रहा है। क्या है नौतप्पा, विज्ञान क्या कहता है, आइए जानें। भाई सूरज की तपिश जब धरती को तपाती है तभी कहीं जाकर बारिश की राहत आती है। प्रकृति का हर मौसम देता है एक संदेश, धैर्य रखो, हर गर्मी के बाद बरसात भी मुस्कुराती है। नौतप्पा, इसका नाम सुनते ही लोगों के मन में गर्मी, तपिश और लू का एहसास होने लगता है ना। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष 25 मई से 2 जून तक नौतप्पा रहने वाला है। लेकिन आखिर ये नौतप्पा होता क्या है, क्या यह केवल धार्मिक मान्यता है, क्या इसके पीछे विज्ञान भी कोई कारण रखता है, और नौतप्पा का हमारे जीवन शैली में और खेती, मौसम और स्वास्थ्य में क्या संबंध बनता है, आज इन्हीं बातों पर छोटी सी चर्चा।

बिल्कुल कृपा होगी राघव की। नौतपा दो शब्दों से मिलकर बना है साथियों, नौ यानी नाइन और तपा यानी तपन या गर्मी। जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब से लगातार नौ दिनों तक धरती पर तेज गर्मी पड़ती है। इसी अवधि को पारंपरिक रूप से हम नौतपा कहते हैं। भारतीय पंचांग और ज्योतिषी के अनुसार यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता ये कि यदि नौतपा के दौरान अच्छी गर्मी पड़े तो आने वाले मानसून बेहतर होंगे और खेती भी अच्छी होगी।

दोस्तों मौसम क्या, विज्ञान क्या कहता है नवतपा के बारे में कि ये किसी चमत्कार की तरह वो इसे नहीं देखता बल्कि इसे पृथ्वी और सूर्य की स्थिति से जोड़कर समझता है और समझाता भी है। दरअसल मई के अंतिम सप्ताह और जून की शुरुआत में सूर्य की किरणें भारत के उत्तरी और मध्य भागों पर लगभग सीधी पड़ने लगती हैं। इस समय पृथ्वी का यह हिस्सा अत्यधिक गर्म हो जाता है। यही कारण है कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में तापमान 40 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। विज्ञान ये कहता है कि जब धरती बहुत ज्यादा गर्म होती है तब निम्न दबाव यानी लो प्रेशर एरिया बनता है और यही निम्न दबाव समुद्र से नमी भरी हवाओं को अपनी ओर खींचता है। आगे चलकर यही हवाएं मॉनसून बनकर बारिश लेकर आती हैं, अर्थात नौतपा की गर्मी कहीं ना कहीं मॉनसून की तैयारी भी मानी जाती है। दोस्तों नौतपा के समय जमीन तेजी से गर्म होती है, गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी वजह सूखी एवं गर्म हवाएं तेजी से बहने लगती हैं। इन्हीं गर्म हवाओं को हम लू कहते हैं। लू लगने पर शरीर का तापमान अचानक बढ़ जा सकता है, कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द, उल्टी और बेहोशी तक की स्थिति बन जाती है। इसलिए नौतपा के दौरान विशेष सावधानियां जरूरी। नौतपा में भी खूब पानी पीना है, प्यास लगे या न लगे शरीर को हाइड्रेट रखना है, खाली पेट बाहर नहीं निकलना है, हल्का भोजन करके ही और पानी पी के निकलना है। दोपहर 11 से 3 बजे तक धूप से बचना है, यही जरूरी काम है। बहुत जरूरी काम है तो सिर ढककर निकलना है। नींबू पानी, बेल शरबत, सत्तू और छाछ लेना है। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान देना है। सूती और हल्के कपड़े पहनने हैं और शरीर इससे काफी गर्म नहीं होता।

की किल्लत देखी जा रही है, इसे बचाना है और इन दिनों गर्मी और लू की संभावना भी बढ़ रही है। ऐसे में खेतों में काम करने वाले किसान भाई, मजदूर साथी और बाहर निकलने वाले लोग विशेष सावधानी रखिएगा। अपने घरों में पानी की व्यवस्था रखिएगा, पशु पक्षियों के लिए भी पानी जरूर रखिएगा। याद रखिए, इंसानियत सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं होती। धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, छांव की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। मुश्किलें मौसम हमें सिखाता है कि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। दोस्तों, साथियों, हेलो हजारीबाग के श्रोताओं, आज हमने जाना कि नौतपा केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रकृति और विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मौसमीय दौर है। जरूरत इस बात की जागरूक रहने की, सुरक्षित रहने की और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने की। तो यही संदेश अब आगे हेलो हजारीबाग कहते रहिए। कार्यक्रम हेलो हजारीबाग के अगले पायदान पर लता मंगेशकर की आवाज गूंजेगी।

हेलो, हजारीबाग सुन रहे हैं आप सभी। अगला पायदान आज के इतिहास की। आज 23 मई भारत और विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं बता रहा हूं। 1568 में नीदरलैंड ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ और ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1947 में ब्रिटिश कैबिनेट ने भारत के विभाजन को आज ही के दिन मंजूरी दी, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बनने थे। 1951 में आज ही के दिन चीन ने एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में तिब्बत पर औपचारिक कब्जा कर लिया था। और 2016 की बात करें तो भारत ने अपना पहला स्वदेशी पुनर्योजन अंतरिक्ष शटल लॉन्च कर दिया था। आज किन विभूतियों का जन्म हुआ? 1919 को भारत के प्रसिद्ध राजमाता और फैशन आइकन महारानी गायत्री देवी का जन्म हुआ। 1923 को आज ही के दिन राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अन्नाराम सुदामा का जन्म हुआ। 1931 को भारतीय शास्त्रीय संगीतकार वसुंधरा कोमवली का जन्म हुआ। किन विभूतियों ने आज के दिन हमें अलविदा कहा? 1930 को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता राखालदास बंदोपाध्याय, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, उनका निधन हुआ था। 1945 को हिटलर की खुफिया सेना के प्रमुख हिनरिक हिमलर ने अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की हिरासत में आत्महत्या कर ली थी। आज विशेष है विश्व कछुआ दिवस और कछुओं और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है।

समय अब बिल्कुल कम है और ऐसे में गर्मी का एक और गीत दस्तक दे चुका है जो आपको गीत सुनते सुनते शीतलता आ जाए तो यह कार्यक्रम सफल हो जाए। कहते रहिए हेलो हजारीबाग।

और इसी गर्मी के गीत के साथ एक और समाचार सामने आया, आज से प्रदर्शित हो जाएगी अनमैप्ड मतदाता सूची। जी हां, राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में 20 जून से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की जानी है। वर्तमान मतदाता सूची का पूर्व के मतदाता सूची के मैपिंग का कार्य चल रहा है। इसके तहत 23 मई से दो सप्ताह तक, यानी आज से दो सप्ताह तक, सभी अनमैप्ड मतदाताओं की सूची संबंधित मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी।

और इधर झारखंड से ये खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 से 11 जून तक विभाग वार समीक्षा बैठक करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली विभागवार समीक्षा बैठकों का कार्यक्रम जारी कर दिया।

और इधर श्रोताओं, रांची में एथलेटिक्स का महाकुंभ शुरू हो चुका है। खिलाड़ियों ने पहले ही दिन दिखा दिया है दम, 7 स्पर्धाओं में हुए हैं फाइनल। और इधर फुटबॉल की बात करें तो 3 साल का इंतजार खत्म हुआ। ट्रॉफी जीतते ही रोनाल्डो के छलक गए आंसू आंखों से। रोनाल्डो ने अल नस्र को दिलाया सऊदी प्रो लीग खिताब। देखिए साथियों, 1 घंटे पहले हमने आपसे हेलो हजारीबाग करके स्वागत किया था। देखिए समय धीरे धीरे अब 1 घंटा पूरे करने को है। अब बस कुछ ही सेकेंड्स बचे हैं जब हम आपसे अलविदा कहेंगे, लेकिन उससे पहले आज दिन की शुरुआत करने से पहले जान लीजिए सुविचार। और विचार ये कि पढ़ना केवल पाठ समझना नहीं है, उद्देश्य पाना और समाज में भागीदारी निभाना भी है। ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने कहा। तो चाहता है आपका दोस्त माणिक चक्रवर्ती आज हेलो हजारीबाग इस कार्यक्रम से अनुमति। फिर मिलेंगे हम नए अपडेट्स, नए गीत और नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

कार्यक्रम का आगाज हमने किया फिल्म गमन की इस गजल के साथ। गायिका थी छाया गांगुली, इसे लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने और धुन बनाई थी जयदेव ने। जगजीत कौर की आवाज में हम आपको फिल्म बाजार की ये रचना सुनवा रहे हैं। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

जगजीत कौर को अभी आपने सुना फिल्म बाजार में। और लीजिए अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, आवाज चित्रा सिंह की है और फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म गजल का ये गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार है साहिर लुधियानवी और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: खड़े हैं दुनिया में जहां तक पेटेंट्स का ताल्लुक है, और महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें से 55% से अधिक पेटेंट रिजाइडिंग इंडियंस के हैं। यहीं पले बले, यहीं उनका शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, यहीं शोध किया और यहीं से पेटेंट दर्ज करवाया। आज भी इस समय देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों पर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। पहले की तरह आज भी आपके द्वारा बटन दबाते ही 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र एक साथ जारी कर दिए जाएंगे, जिनमें से 50% से अधिक रेल विभाग से ताल्लुक रखते हैं, जो इस बात की भी निशानदेही करता है कि किस तेज रफ्तार से मुल्क में आज रेल का विस्तार हो रहा है, खासतौर उन इलाकों में जहां कभी किसी ने कल्पना ना की थी। अभी पिछले ही साल आपने दरियाए चन्हाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का लोकार्पण किया और कश्मीर घाटी को जाने वाली वंदे भारत की फ्लैगिंग ऑफ भी की। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हर एक योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को मद्देनजर रख करके की जाती है, तो ऐसे में ये युवा जब आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तो साथ ही साथ उन्हें सन 2047 के भारत के निर्माण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। परमात्मा उनको सामर्थ्य दे, उनको क्षमता दे, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व

तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के विशाल योगदान का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।

0: ऐसी बढ़ता विकास के नित नए कीर्तिमान बनाता आज का भारत एक नए दौर में कदम रख चुका है, जहां सपनों की उड़ान केवल मेहनत और हुनर से तय होती है। रोजगार हो या स्वरोजगार, बीते करीब 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सामर्थ्य को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सतत और सफल प्रयास हुए हैं। गांव, गरीब, किसान के बच्चे हो या मिडिल क्लास के, दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हो या शहरों में रहने वाले, आज हर किसी के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का रास्ता भी एक ही है। लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प, न सिफारिश, न जुगाड़ और न कॉन्टैक्ट। हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है UPSC, SSC, RRB और IBPS जैसी संस्थाएं, जहां हर योग्य युवा का सपना हो रहा है साकार। इन चयनित युवाओं को राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान।
1: रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
0: रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा RPF कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, CPSC, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति।
2: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

साथियों, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल इनोवेशन
उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा होगा ये सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स,
शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है, यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे
देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इस दिन मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ा रहे थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बना

पैकेट बना करके बेचते हैं, तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं, शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। IITs को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं।

0: साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्रशक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले से जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे तो यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव। नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखतुल, अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

0: आप सभी सुन रहे थे रोजगार मेला 2026 समारोह का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। थोड़ी ही देर में विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से होगा।
1: फिल्म दो राहा का गीत है ये, आशा भोसले की आवाज में, इंदिवर के बोल और सपन जगमोहन का संगीत।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4

0: सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार कैफी आजमी के कुछ गीत चुने हैं।

you.

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था हंसते जख्म। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे मदन मोहन।

ये स्वर लता मंगेशकर का फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सजाया है खयाम साहब ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नौनिहाल से लिया है। गीतकार कैफी आजमी के बोलों को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने।

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था नौनिहाल।
1: अरे सुनो।
2: हाँ?
1: सावधान रहना।
2: क्यों, क्या हुआ, कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
1: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
2: अच्छा।
1: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
2: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
1: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
2: तो
1: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
2: अच्छा,
1: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
2: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
1: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतकार कैफी आजमी की गीत रचनाएं। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म कोहरा का ये गीत।

हेमंत कुमार को अभी आपने सुना फिल्म कोहरा में। कार्यक्रम का अगला गीत कमल मित्रा के संगीत निर्देशन में आशा भोंसले और हेमंत कुमार का गाया हुआ है। फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्षमा से, आवाज सुमन कल्याणपुर की। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की। फिल्म का नाम है अर्थ।

फिल्म अर्थ की गजल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। हेमंत कुमार का संगीत, कैफी आजमी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम अनुपमा।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। ये फिल्म है शोला और शबनम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था शोला और शबनम। लीजिए अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है हकीकत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। जी हाँ, हम आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम लेकर सुरीला सफर। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सुरीला सफर में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जिंदगी का ये सफर उतार चढ़ाव भरे एक खूबसूरत सुरीले गीत जैसा ही तो है, जो अपने अनोखे तजुर्बों और अनुभवों से भरा हुआ है। यानी हर लम्हा एक नई धुन की तरह आता है, जिसमें सुख दुख के सुर मिलकर इस यात्रा को यादगार बना देते हैं, है ना? तो आज का ये सुरीला सफर कितना यादगार बन जाएगा, क्योंकि आज हमारे श्रोताओं ने उस सफर में घुसकर उन गीतों को ढूंढ लिया है जो गीत आज हमने आपके लिए चुने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमने आपको थोड़ा सा क्लू दे दिया था ताकि सरल हो जाए वो बात जो आप चाहते थे, और आपने वो कर भी दिखाया, क्योंकि

में हमारे साथ और ये सभी गीत, जैसा कि हमने आपको बताया, एक ही संगीतकार चित्रगुप्त साहब, यानी महान संगीतकार चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में गाए गए गीत हैं। तो हमने आपको थोड़ा सा जब ये बता दिया था तो आपने उन गीतों को ढूंढ भी लिया है। हाँ, कुछ श्रोताओं ने कहा है कि भाई अभी भी हम इन गीतों को नहीं ढूंढ पाएंगे, कोई बात नहीं, आज इस सुरीले सफर में आप शामिल हुई ना हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, चित्रगुप्त साहब का संगीत, प्रेम धवन के बोल, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम है तूफान में प्यार कहाँ।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था तूफान में प्यार कहां। हमारे श्रोता आज बहुत खुश हैं और लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आपने विविध भारती के सुरीले सफर में आज की इबारत को कुछ स्पष्ट करके आसान कर दिया है। जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और बजने वाले गानों का निर्णय हो ही गया समझो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने इबारत की जगह खुद गीतों के शब्द लिख दिए और उसमें यह भी लिख दिया कि सभी गीतों के संगीतकार एक ही हैं और ये सभी गीत दो महिला गायकों के स्वर में होंगे, तो वैसे बहुत मुश्किल तो हो गया है। इबारत में शब्दों को ढूंढकर हम कई गीत सही लिख देते थे, लेकिन आज की परीक्षा मुझे लग रहा है और कठिन है। मैं दावे के साथ लिख रहा हूं कि बहुत ही कम श्रोता ढूंढ पाएंगे। बस एक शब्द गोरी पे दो महिला गायक ही ढूंढ पाया हूं। बाकी गीतों पर नजर दौड़ाई तो संगीतकार भी अलग अलग दिमाग में आ रहे हैं। उफ कर दिया दिमाग का दही। अरे इतना दिमाग को खराब करने की जरूरत थोड़ी है। ये कार्यक्रम तो मनोरंजन का कार्यक्रम है, मनोरंजक कार्यक्रम है आपके लिए, है ना। इसमें हमें अपने दिल और दिमाग को बहुत ही शांत और सुकून से भरा

0: रखना है, तभी तो ये सफर सुरीला बन पाएगा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने इबारत पर से इबारत न लिखकर सभी श्रोताओं की इच्छाओं को साकार कर दिया है, खूब अच्छा लगा, जो बात हम चाहते थे वही हो गई। आज मैं गीत सूची तैयार न करते हुए सिर्फ जो गीत बजने वाले हैं उसे सुनने का लुत्फ उठाऊंगा, क्योंकि जो गीत सुनवाए जाने वाले हैं उसके संगीतकार चित्रगुप्त होंगे, जो मेरे पसंदीदा संगीतकारों में से एक है। बचपन से इनके रचे गीत सुनकर मेरे दिल की धड़कन रंग लाती है, आपके दिल की धड़कन भी रंग लाती होगी। ये विविध भारती के दायरे, ये दोपहर का समा, ऐसे में क्यों न जुड़ जाए हम वहां, मिलते हैं दोपहर एक बजे। क्या बात है, हमारे जो श्रोता हैं वो गीतकार भी बन गए हैं लगता है, और शायर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ श्रोताओं के और हम पढ़ेंगे विचार, जहां उन्होंने कुछ गानों को बिल्कुल सही रूप से समझा है। ये गाना है फिल्म परदेसी का, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की ही हैं, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार वही चित्रगुप्त साहब।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में झारखंड समेत देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा युवाओं के लिए बन रहे लाखों रोजगार के अवसर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजधानी रांची के आधा दर्जन से अधिक नए इलाकों में पाइपलाइन से पीएनजी आपूर्ति शुरू करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 मई से सभी विभागों की करेंगे समीक्षा, बजट की घोषणाओं पर भी होगी चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इबोला वायरस को लेकर झारखंड समेत सभी राज्यों को निगरानी का दिया निर्देश। भारत में अब तक नहीं मिला है इबोला का केस। और नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड के रुद्रांश शर्मा ने 500 प्लस डी इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड समेत देशभर के 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करना है। दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में रोजगार मेला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान 88 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कौशल विकास योजना के तहत 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
3: कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और इसके साथ ही पीएम इंटर्नशिप युवा को लगभग 1.25 लाख प्रतिभागी जो युवा है उनको देश की शीर्ष कंपनियों में अनुभव और आर्थिक सहायता प्राप्त करने का भी बेहतर अवसर भी मिल रहा है।
1: इधर रांची में कार्यक्रम आयोजन सीसीएल ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में बैठक कर मोरहाबादी, लालपुर, धुरवा, हिहेल, एचसी क्षेत्र और बीआईटी मेसरा समेत आधा दर्जन से अधिक नए इलाकों में जल्द पीएनजी आपूर्ति शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स गठित कर युद्ध स्तर पर कनेक्शन दिए जाएं, ताकि अधिक से अधिक घरों को पाइपलाइन से सस्ती और पर्यावरण अनुकूल गैस मिले। इस दौरान मंत्री ने तंग मोहल्लों में आग बुझाने के लिए 2 फायर बाइक का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 मई से 11 जून तक रांची में सभी विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इन मैराथन

0: इन बैठकों में सभी प्रमुख विभागों के कार्यों का मूल्यांकन और योजनाओं का क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने पर जोर रहेगा। साथ ही बजट घोषणाओं पर भी चर्चा होगी। 25 मई को जल संसाधन वित्त और वाणिज्य कर विभाग से शुरुआत होगी और 11 जून को परिवहन, राजस्व, निबंधन, भू सुधार और विधि विभाग की समीक्षा के साथ यह अभियान समाप्त होगा। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कल रांची के रातू में 2.25 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जर्जर सड़कों से बरसात में कीचड़ और गर्मी में धूल की समस्या थी। नई सड़कों से किसानों को मंडी, छात्रों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में आसानी होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। 15 मई को 3 रुपये प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में यह तीसरी बार संशोधन है। आज की वृद्धि के बाद रांची में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 63 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपये 66 पैसे हो गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही झारखंड की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया।
1: भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी भी थी और चुनाव जीतेगी भी। राज्य में करप्शन व्याप्त है, भ्रष्टाचार व्याप्त है सभी स्तरों पर। किस प्रकार से हेमंत सोरेन के राज्य में विकास का काम रुका पड़ा, इन सारे मुद्दों को लेकर हम स्थानीय स्तर पर भी कार्यक्रम करते हैं, प्रदेश स्तर पर भी कार्यक्रम करते हैं।
0: बता दें कि झारखंड की 2 सीटों पर 18 जून को मतदान होना है। रांची के खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा है कि गठबंधन सरकार में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और पार्टी को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
2: इंडिया एयरलाइंस भावनात्मक भी है, इंडिया एयरलाइन राजनीति भी है और इंडिया एयरलाइन देश का आने वाला जो डिमांड है उसका भी एक कड़ी है। इसीलिए निर्णय जो होंगे सारे पार्टियों का भावना को लेकर के सारे पार्टियां मिलकर के एक उम्मीदवार खड़ा करें ताकि जो है कि दोनों का दोनों सीट हम आसानी से जीत सके।
0: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने GST में राज्य का हिस्सा नहीं मिलने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
3: हमारे राज्य में GST का पैसा नहीं आ रहा। जो भी राज्य के कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार का सहायता होता है, सहायता और ये फेडरल सिस्टम का एक स्थापित मूल्य, किसी योजना में 1 रुपए नहीं आना, राज्य सरकार के कमर को तोड़ने का काम कर रही है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इबोला वायरस को लेकर झारखंड समेत सभी राज्यों को निगरानी और रोकथाम के सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि भारत में अब तक कोई मामला नहीं मिला है। झारखंड में केंद्र के निर्देश पर तैयारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही सभी सिविल सर्जन्स को अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाने व अन्य एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने समन्वित निगरानी, समय पर रिपोर्टिंग और चिन्हित स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों पर विशेष जोर दिया है। राजधानी रांची समेत राज्यभर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोलहान प्रमंडल में लू लगने से 1 महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक हीट वेव को लेकर लोगों से सतर्क रहने और धूप से बचाव की अपील की है। 11वीं नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड के रुद्रांश शर्मा ने 500 प्लस डी इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। रुद्रांश शर्मा की लगातार दूसरी स्वर्णिम सफलता पर रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड में खुशी की लहर है। राजधानी रांची

के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपये प्रति किलो है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले में झारखंड समेत देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं के लिए बन रहे लाखों रोजगार के अवसर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजधानी रांची के आधा दर्जन से अधिक नए इलाकों में पाइपलाइन से पीएनजी आपूर्ति शुरू करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 मई से सभी विभागों के करेंगी समीक्षा। बजट की घोषणाओं पर चर्चा भी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इबोला वायरस को लेकर झारखंड समेत सभी राज्यों को निगरानी का दिया निर्देश। भारत में अब तक नहीं मिला है इबोला का केस। और नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड के रुद्रांश शर्मा ने 500 प्लस डी इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

तो ये गीत आपको कैसा लगा? सुंदर गीत लगा ना, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और हमारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं, आप लिखते हैं कि संगीत का ये सफर वाकई बहुत सुरीला और दिलचस्प है। आपने जो सुराग दिए हैं, एक ही संगीतकार, दो महिला गायिकाएं और ये 12 विशिष्ट शब्द, ये सीधे तौर पर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम यानी गोल्डन एरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन शब्दों और शर्तों को जोड़ने पर जो नाम सबसे ऊपर उभरता है वो है संगीतकार ओपी नैयर साहब का या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी नहीं, आज हम आपको एक ही संगीतकार जो कि चित्रगुप्त साहब हैं, उन्हीं से जुड़े गीत सुनवा रहे हैं। यानी चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में आज जिन दो महिला गायिकाओं ने जुगलबंदी की वो गीत हमने आपके लिए चुने हैं। फिर भी आपने प्रयास किया, सबसे बड़ी बात यह है। आप लिखते हैं कि आशा भोंसले और गीता दत्त की जोड़ियां हैं, इस तरह के बहुत सारे सदाबहार गाने हैं जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है। और आपने कुछ गानों का जिक्र किया भी है। देखिए आपके गाने हमारे गानों से कितना मेल खा रहे हैं, गौर कीजिएगा और हमें लिखिएगा जरूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चित्रगुप्त सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे उस सुकून, ठहराव और मेलोडी का नाम है जो आज भी रेडियो पर बजने पर हमें एक खुशनुमा जमाने में वापस ले जाते हैं। महान संगीतकार चित्रगुप्त भारतीय सिनेमा के वे अमर गायक शिल्पी थे जिन्होंने बिना किसी भारी भरकम वाद्य यंत्रों के शोर के अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली धुनों से संगीत को नवाजा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार तो चित्रगुप्त हैं और प्रत्येक गाना दो फीमेल सिंगर्स का गाया हुआ है। आपने भी कुछ गाने लिखे हैं? बिल्कुल, आपके गाने हमारे कुछ गानों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। देखिए कौन कौन से गाने हैं, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में इबारत से कुछ चीजें स्पष्ट करके आसान किया है आपने, जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिका।

बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और गानों का निर्णय हो ही गया समझो। अरे वाह क्या बात है। वही एक श्रोता ने लिखा है, सरल नहीं कठिन है आज की गीतमाला, आपके दो प्रश्नों से ज्यादा भी कठिन है। अरे अभी तो दो सवाल हमारे आए ही नहीं है, कैसे कठिन हो सकती है। आज तो हमने आपको शब्द दे दिए थे और साथ ही बता दिया था कि एक ही संगीतकार पर केंद्रित है ये शब्द और दो गायिकाओं पर, मतलब दो जो जुगलबंदी है महिला गायिकाओं की जुगलबंदी होगी। कितना सारा तो बता दिया था आपको और हमारे कई श्रोताओं ने पकड़ भी लिया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज का सुरीला सफर ने दिमागी तापमात्रा बढ़ा दी है, संभावित गानों का शब्द अनुरूप कयास लगाना कष्टप्रद है, इन्हें ढूंढने में श्रोता बंधुओं के कमेंट्स कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं के लिस्ट के अनुसार ही हम भी चलने वाले हैं। चलिए तो आज के दो सवाल, वैसे दो सवाल नहीं है लेकिन इन्हीं सुरीले सफर से जुड़े ये सवाल हैं। चूंकि आज आप सुन रहे हैं कुछ गीत, तो इनसे इतर आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसे मुझे एक गीत बहुत पसंद है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम बहुत याद आए, है ना ये गीत, जहां आ रहा फिल्म का, लता मंगेशकर और आशा भोसले की जुगलबंदी है। तो इस तरह के और भी गीत जो हैं महिला जुगलबंदी वाले गीत, वो आपको कौन कौन से गीत पसंद हैं या याद हैं उसका जिक्र जरूर करें। और एक सवाल हमारा ये है कि संगीतकारों के बारे में बताइए, ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो गीत आपको पसंद हैं। जैसे कि आज हमने चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जुगलबंदी गीत लिए हैं। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत गवाए हैं। आप बताइए कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो आपको पसंद है या उनके गाने आपको याद हैं। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर के इस गीत की ओर। चित्रगुप्त साहब का संगीत, पंडित भरत व्यास के बोल हैं, सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाजें हैं इस बार। फिल्म का नाम है महाभारत।

आज की सवाल एक बार फिर से दोहराए देते हैं। पहला सवाल हम आपसे ये कर रहे थे कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने अपनी पसंद का गीत आपको बताया, फिल्म जहां आरा का लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाए वो गीत जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, है ना। ठीक उसी प्रकार और भी बहुत सारे गीत हैं, तो आपको कौन सा गीत पसंद है या बताइए कौन कौन से गाने पसंद है। और एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं इसका जवाब कि संगीतकारों में बताइए ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो आपको याद हैं वो गाने, या वो गाने आपको बहुत पसंद हैं। जैसे आज हम चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जो महिला जुगलबंदी वाले गीत लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार और भी संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गीतों की रचना की है। बताइए वो कौन कौन से गीत हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि 1 बजे जब सुरीला सफर शुरू होगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और श्रोता दिमाग पर कम जोर डाले, सुरीले गीतों का आनंद लें और गीत भी पहले से अधिक बजेंगे। धन्यवाद विविध भारती, धन्यवाद मुझे। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है कि हमें बुरा लगे या हमें गुस्सा आ जाए या हम तनावग्रस्त हो जाए। बिल्कुल मनोरंजक कार्यक्रम है ये, आपके मनोरंजन के लिए इसका आनंद उठाइए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये बहुत अच्छा नया प्रयास है, शब्द आपने दे दिया और हिंट भी दे दिया है, तो कोशिश भी हमारी बनी रहेगी। और वही आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि लगता है आज आपने यू टर्न मार दिया है, सुरीला सफर का ये पैटर्न भी अच्छा है, अब फिर परीक्षा होगी जानकारी बता पाएंगे, चलो चले सुरीले सफर पर मंदाकिनी जी के साथ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गेंद आपने डाली है वो गुगली जैसी लग रही है, लेकिन यॉर्कर भी हो सकती है या फिर वाइड हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, ज्यादातर बल्लेबाज असमंजस में है। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, आज तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आप लोग, देखिए ना फटाफट हमारे कुछ श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही गाने चुने हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं होता उन सभी गानों का जिक्र यहाँ करने का, वरना आपको बताते कि आज बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने सही चुने हैं। एक श्रोता ने लिखा है आज शायद यही गाने बज पाने वाले हैं, बेहद अच्छा, आज शायद यही गाने बजेंगे, आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, बेहद हिम्मत वाला काम है, अगर ऐसे गाने शामिल होंगे तो कार्यक्रम की रोचकता बनी रहेगी और कुछ हर रोज बजने वाले गानों से अलग सुन सकेंगे, बेहद नायाब चयन है, आपने हमें धन्यवाद दिया है और बिल्कुल आपके कुछ गीत तो हमारे प्लेलिस्ट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी श्रोताओं को जो आज की जो सुरीला सफर की ये प्लेलिस्ट है उसमें आप शामिल हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार चित्रगुप्त मखमली धुनों और सादगी के मसीहा थे, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जहां एक तरफ शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एसडी बर्मन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, वहीं एक ऐसा संगीतकार भी था जिसने बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी और गहराई से भरपूर संगीत दिया, उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनके गीतों की मिठास आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल सही कहा, और वही मिश्री घोलने वाले गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, इस बार आवाजें हैं गीता दत्त और उषा मंगेशकर की, और ये फिल्म है माँ बाप।

जी कितना खूबसूरत गीत था, है ना। अच्छा, इस गीत को आपने पहले कभी सुना था, बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वे आज तो भैया इस भरी गर्मी में थोड़ी सी भी यदि ठंडाई की बात करूं तो वो है विविध भारती, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में अच्छा मैं आई हूं तो गानों की बौछार होगी। गानों की बौछार तो हमेशा ही होती है और मन आनंदित होगा। सचमुच ही कल की गीतों भरी कहानी सुनी जिसमें एक ऐसा प्रसंग आया जहां मुझे रोना ही आ गया था। धन्य विविध भारती जो ऐसे प्रसंग लाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला गाना एकदम अनसुना सा था, यहां तक कि सिनेमा का भी नाम नहीं सुना था। तूफान में प्यार कहां, सिर्फ विविध भारती के पास ही ऐसा कलेक्शन हो सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सबसे अलग होता है, इस महारथी आपको ये महारत आपको हासिल है। अच्छा, मुझे बहुत शानदार सुंदर, क्योंकि सुने कौन सा संगीत, गीतों से हम भीषण गर्मी में ठंडक महसूस कर रहे हैं, मस्ती और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं आपको मुझे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज परीक्षा में पेपर अनुमान से ज्यादा आसान आ जाता है तो खुशी के मारे जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं। दूसरे आसान पेपर की मार्किंग भी हार्ड होती है। श्रोताओं में बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। अब नंबर देना आपके हाथ में है, देखें आप कितना लिबरल रहती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुरीला सफर की पोस्ट का इंतजार किया, फिर मैं अपनी नौकरी के लिए निकल गया। 10:30 बजे नौकरी पर पहुंचकर कुछ घंटे काम किया, उसके बाद 12 बजे मैंने सुरीला सफर की देखी, फिर श्रोता मित्रों की पोस्ट देखी, तब मालूम पड़ा आज सुरीला सफर महान और अमर संगीतकार चित्रगुप्त जी पर केंद्रित है, साथ में 2 गायिकाओं पर भी। दुकान पर पहुंचकर गीतों को शब्दों को पढ़ा, मेरे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने हमारे इस सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारे गीत लिखे हैं, गोरे गोरे और बांके छोरे, लता मंगेशकर और समाधि फिल्म का आपने ये गाना लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में प्रेमलता है इनके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। वहीं एक श्रोता ने दूसरे गाने लिखे हैं, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज में जो जुगलबंदी वाला गीत है, लिखते हैं ये गाना मेरा फेवरेट है फिल्म उत्सव का, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा और मेरे महबूब में क्या नहीं अपलम चपलम, ये सभी गीत मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत सही आपने गीतों का चयन किया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता बताएं कि कौन से ऐसे गीत हैं जुगलबंदी वाले, महिला जुगलबंदी वाले जो उनको पसंद हैं, उनका जिक्र वो करें, साथ ही उनसे

संगीतकारों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने संगीत निर्देशन में ये महिला जुगलबंदी वाले गीत लिए हैं और संगीतबद्ध किए हैं। जैसे आज हमने चित्रगुप्त साहब को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेम धवन का लिखा ये गीत सुनते हैं। चित्रगुप्त साहब की संगीत रचना है, सुमन कल्याणपुर और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। ये फिल्म है गेस्ट हाउस।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा लता जी और कमल बारोट की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है। वहीं मन क्यों बहका लता जी और आशा जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और काश किसी दीवाने से हमको भी मोहब्बत हो जाए। अच्छा, काश किसी दीवाने को है हमसे भी मोहब्बत हो जाए। आपने से और को का थोड़ा सा अंतर कर दिया है। और ये गीत भी आपको पसंद है, लता मंगेशकर और आशा भोंसले का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ है। वहीं आप लिखते हैं तुमको पिया दिल दिया और कजरा मोहब्बत वाला और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। ये सभी गीत आपको बेहद पसंद है, बहुत सुंदर गीतों का चयन आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन रात जले अखियां परदेसी, उषा मंगेशकर और आशा भोंसले, ये गीत हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत निराला है और बहुत बढ़िया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने कमाल की गुगली फेंकी है। अच्छा, आपने हम तो क्लीन बोल्ड हो गए, आज हमारी बत्ती

डब्बा गोल है, आप तो बस मधुर गीतों का रसा स्वादन कराइए और हम मधुर गीतों का आनंद लेने वाले हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें सफर में तो सफर सुरीला कैसे नहीं होगा अगर आप हैं हमारे साथ, तो आज आप आई प्रोग्राम में तो गीतों की बाहर आ गई है। आप लिखते हैं कि ओ गोरे बांके छोरे गीत पसंद है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद है जो दो गायिकाओं द्वारा गाए गए हैं। साथ ही आपने लिखा है एक श्रोता ने कि मनभावन के घर गाए जाए गोरी घूंघट में शर्माए गोरी, लता जी और आशा जी की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतों की चॉइस कितनी बड़ी है, मन बहुत खुश हुआ। अच्छा, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही बढ़िया है, दो फीमेल गायिकाओं के गीत कितने बढ़िया और कितने ताल सुर में, परदेसी का गाना सुन के बहुत ही बढ़िया लगा, चित्रगुप्त जी का संगीत बोले तो बहुत मधुर संगीत, क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी थीम कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी हो हम आपको विविध भारती जरूर सुनेंगे, इस तपतपाती गर्मी में गानों के जरिए ठंड का एहसास हमें थोड़ा तो होगा। आप इतनी शिद्दत और प्यार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। चलिए अगला गीत सुनते हैं, चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में, इसे आर कृष्णा ने लिखा है, इस बार स्वर है गीता दत्त और उषा मंगेशकर के, और ये फिल्म है कंगन। हमने शब्द दिया था लिख पढ़, वही है ये गीत।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गीत हम सुन रहे थे फिल्म गेस्ट हाउस का सबसे शानदार गाना शीला वाज और अन्य अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कितनी खूबसूरत और गहरी जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप चाहे मना करें, मैं आपकी तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आज यादों की महफिल में मेरे तीन पसंदीदा गाने एक साथ सुनवाए गए। कुछ दिल ने कहा जीत ही लेंगे बाजी हम तुम और मैं ये सोचकर जा रहा था। बिल्कुल, ये गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे और कैफी आजमी की रचनाएं थी, तो पसंद तो होंगी आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदगी के महिला युगल गीत में एक इन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया है, सखी रे सुन मोरी पपीहा उस पार। अच्छा, फिल्म मिस मैरी का ये गाना आपको बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात तू मुझे क्या बताइए गाना पसंद है। गर्जत बरसत सावन आयो रे और बरसात की रात फिल्म का जो एक जमाने में उसका अंश संगीत रचना के परिचय धुन में शामिल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश है और काफी हंसमुख लग रही है। अच्छा और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वहीं एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना काश किसी दीवाने को और आएगा हमारे गांव कोई आएगा, इन सभी गीतों को पसंद किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है मन क्यों बहका रे बहका और हुजूर आला जो इजाजत हो, ये युगल महिला गीत वाले जो स्वर गीत हैं ये हमें बेहद पसंद आते हैं। जी तो आज के सुरीला सफर में हमने आपके सफर को थोड़ा सा आसान कर दिया और आप लगभग हमारे साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत, ये है आशा भोंसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल हैं, चित्रगुप्त साहब का संगीत है और ये फिल्म है ज्वाला दहेज की।

जी तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मेरे पास करीब 20,000 गानों का संग्रह है और लगातार पुराने गीतों को ढूंढकर संग्रह को मैं और बढ़ा रहा हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ताथैया करके आना मेरे जादूगर, ओ सैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, इकबाल कुरैशी, फिल्म पंचायत का गीत और कौन रंग मुंगवा लता मंगेशकर और सुधा मल्होत्रा का, संगीतकार रोशन साहब और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो पहली बार सुना है, वैसे मुझे डोला रे डोला फिल्म देवदास का गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह, मेरा एक गीत मैच कर गया है, निकला है गोरा गोरा चांदरे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला शमशाद बेगम और आशा भोंसले की गायकी बहुत पसंद है। युगल गायिकाओं में कुछ लोगों ने अपलम चपलम, हंसतावा नूरानी चेहरा, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर, मन क्यों बहकाई सभी गीतों को पसंद है किया है। और वहीं एक श्रोता ने कहा है, आपने पूछा कि कौन से युगल गीत पसंद है, फिल्म शिकारी का युगल गीत तुमको पिया दिल दिया, फिल्म पारसमणि का गीत हंसतावा नूरानी चेहरा, उत्सव का गीत मन क्यों बहकारी का हमें बेहद पसंद आता है। चलिए तो आपकी पसंद को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब है। और अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं, जहां सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को फिल्म हम मतवाले नौजवान में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, चित्रगुप्त का संगीत।

तो दोस्तों आज का सुरीला सफर यहीं तक, और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज लाखों करोड़ों की भीड़ में भी कई बार इंसान अपने को अकेला पाता है। आधुनिकता के इस दौर में छोटे होते जा रहे परिवार के कारण अकेलेपन की समस्या आम बात हो गई है। ऐसे में अगर हम अपने लक्ष्य पर, अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे तो हमारा अकेलापन हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति बन जाएगा। देखिए ना, चांद रोज रात को आकाश में अकेला ही अपने सफर पर निकल पड़ता है, बिना थके, बिना हारे।

अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के अलावा अकेलापन दूर करने का एक सरल उपाय है, अपने जीवन में किसी को अपना हम ख्याल बना लें, हम सफर बना लें। ऐसा प्रयास करके तो देखें, जिंदगी एक नए रूप में, नए रंग में मुस्कुराती नजर आएगी।

लेकिन आज के जीवन की आपाधापी में कोई आपका साथ न दे, कोई आपकी पीठ न थपथपाए, आपकी सफलता पर तालियां न बजाए, तो फिक्र की क्या बात है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका सच्चा हितैषी तो ऊपर वाला होता है। ऐसे में अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए। आप अकेले ही पूरी दृढ़ता के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, ज्योति तोर डाक्षुने के उनाशे तबे एकला चलो रे।

दोस्तों, जब हम सकारात्मक सोच के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अकेलापन हमारी शक्ति बन जाता है। आज त्रिवेणी का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन

0: राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
1: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी SN त्रिपाठी ने।

0: साहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें थी। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म का नाम था साधना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
3: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथी। फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। गीतकार हैं पी एल संतोषी और संगीतकार एन दत्ता।

0: कर जाऊं।
1: धन्य है मौसी, धन्य है मौसी,
0: धन्य है मौसी। देखो भाई जाती तो हूँ जाने को, लेकिन राजा कहीं जो झपटा मुझको ही खा जाने को।
2: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
3: हम आएंगे,
1: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
4: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटका।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमति। शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में सुना। आइए आप सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। देश भर में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: इस कड़ी में रांची के सीसीएल सभागार में भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। रांची के इस मेले में रेलवे, सेना और डाक विभाग सहित 6 अलग अलग विभागों के 132 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खुद 25 युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से किया हर वादा पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को लाखों नौकरियां देने का संकल्प क्रमबद्ध तरीके से पूरा हो रहा है।
2: हमारा स्टार्टअप अच्छा काम कर रहा है, हमारा एमएसएमई अच्छा काम कर रहा है। देश के युवा दुनिया के किसी भी युवा से कम नहीं। और इसी तरह रोजगार, सरकारी नौकरी और अब तक लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है। यह है प्रधानमंत्री का मंत्र, सबका साथ सबका विकास। देश विकसित भारत 2047 की ओर, उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
0: रामगढ़ के पतरातू में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन 2026 की शुरुआत की गई है। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड PVUNL ने 22 मई को इस विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत आसपास के स्कूलों की 50 छात्राओं को चुना गया है। उद्घाटन समारोह में PVUNL के CEO AK सहगल और स्वर्णरेखा महिला समिति की अध्यक्षा रेणु सहगल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में शामिल सभी 50 छात्राओं को पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए बैग, यूनिफॉर्म, जूते और जरूरी किट भी बांटे गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: कोडरमा के एनसीसी कैडेट आकाश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश की 17,500 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने देश के 20 लाख कैडेट्स में से चुने गए केवल 8 कैडेटों में शामिल होकर झारखंड का मान बढ़ाया है। आकाश ने दिरांग के राष्ट्रीय संस्थान से अपना उन्नत पर्वतारोहण प्रशिक्षण पूरा किया है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर एनसीसी कैडेट्स और परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। आकाश ने कहा कि माता पिता के आशीर्वाद और गुरुओं की प्रेरणा से उन्होंने इस कठिन मुकाम को हासिल किया है।
1: उन लोगों ने 4 दिन आर्टिफिशियल मैट्रिक लाइन किया, वहां से फिर अपना रक्षक वगैरह जितना था पैक करने के बाद फिर हम लोग वहां से ऊपर और गए थे। फिर वहां भी एक हथियार है, फिर वहां से क्लाइंबिंग करने के बाद फिर वहां पर हम लोग 14,650 फीट ऊपर गए। फिर वहां भी कुछ दिन रहा, उसके बाद फिर वहां से फिर हम लोग सीधा गए थे 16,460 फीट ऊपर। फिर वहां पे टेंट लगाते रहते थे। फिर हम लोग लास्ट दिन हाइट जब गेन किए थे 17,500।

0: 17,000 फीट
1: ऊपर। बोकारो के बालीडीह पुलिस ने एल्यूमिनियम तार चुराने और बेचने वाले एक छात्र गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने एक कार का पीछा कर चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार की तलाशी लेने पर उसके अंदर से करीब 70 किलो कटा हुआ एल्यूमिनियम तार बरामद हुआ। मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि यह गिरोह बोकारो स्टील प्लांट के आसपास से चार तार चोरी करता था। उधर हजारीबाग पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए राहुल दुबे गैंग के शातिर अपराधी जियाउल रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लोडेड पिस्टल, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया है। बड़कागांव एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह बानादाग रेलवे साइडिंग में लेवी वसूलने और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करने जा रहा था। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये। कहां से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक बिमला देवी शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर रेणु जीनगर अजय प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद पक्षी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा, और ये खत आया है हैदराबाद से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रावलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान के बोल, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनुजा तांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडूसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजयमाल।
1: सब यथास्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
3: महाराणा की जय।
4: राणा हाड़ा जी ने ये पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी,
2: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
2: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
1: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
2: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
1: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
2: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
1: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
2: महाराज,
1: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
2: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सूखते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु। यूं ही नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
1: चूड़ावत जी।
5: महाराणा,
1: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
5: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया। पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
1: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
6: जी। महाराज,
1: राणा हाड़ा को यह शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
2: जी महाराणा।
1: सामंत चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखलानी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल, कहाँ है तेरी भाभी?
2: अरे तारा, कहाँ चली गई?
0: सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा, तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे
3: यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरो, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठाकर ले जाएंगे। हाँ,
3: अरे अरे,
0: बुलाओ भैया।
3: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन जी, भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
3: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
3: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है। और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है। आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई। मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। कौन?
1: स्वागत है।
3: ओह, आप यहाँ?
1: हाँ जी, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा, तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
3: ना,
1: हाँ, अब ठीक है। देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
3: स्वामी, मेरे देवता।
1: सच?
3: मैं तुम्हारी पुजारी।
4: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
1: तुम सचमुच कितनी सुंदर हो।
4: नगर की राजकुमारी
1: चंद्रमुखी।

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ही यौवन रूप, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओ, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृकुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रही है? इस हाड़ जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी। ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
3: आई। आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
2: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार मैं तेरी सहायता चाहती हूँ।
3: ये क्या कह रही है?
2: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर तारा।
3: रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ।
2: पगली रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शीघ्र ताकत, रणसिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे इधर पड़ना, इधर पर इधर ना। अरे अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे रोती है ला ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस अब बहुत विलंब हो रहा है, ये रानी जी मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है, मेरा भग्न शीश रण सिंह को दे देना।

0: तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामन के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामन तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा आ रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
3: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
3: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
3: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
3: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
3: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
3: रण सिंह जी, क्या लाए हो? हाड़ी रानी का भग्न शीश, ये क्या किया तुमने रण सिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे।
3: रण सिंह, मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
2: हाड़ी रानी, तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण सिंह। मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो। मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है। भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों, आगे बढ़ो,
4: विजय हमारी है।
0: मुगल बादशाह की सेना उल्टे पैर भाग रही।
3: सच रण सिंह, तुम विजयी हुए?
0: हाँ सामंत, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामंत,
3: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी। मैं चाहता हूँ।
5: दामन ठहरिए ठहरिए दामन।
3: रानी सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए, आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो, रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा
1: जी। सामंत,
3: रानी जी कहां है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
1: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
2: हाँ, रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय माल

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची में आज सुबह से मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जिन मतदाताओं का नाम इस सूची में मिल रहा

0: कहा है वे तुरंत बीएलओ से मिलकर अपनी मैपिंग पूरी करवा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार यह सूची अगले दो हफ्तों तक सभी केंद्रों पर लगी रहेगी। राज्य सरकार ने राज्य में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के अधिकारियों और थानों को अपने दफ्तरों के बाहर और सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने को कहा गया है। पलामू के चैनपुर में आज जमीन विवाद में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जामताड़ा में आज विभिन्न पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने सुपाईडी, बिंदापाथर, देवालबाड़ी, बंदरडीहा पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सरायकेला के गम्हरिया में टाटा कंपनी फाटक के पास से पुलिस ने 10 टन चोरी के स्क्रैप मेटल के साथ एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में एक गाड़ी भी जब्त की गई है और पुलिस फरार तीन अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। राज्य के 8 जिलों में कल गर्जन के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जिसका नाम था बैंगन, तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती, तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताएं।
1: जी जी, सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
1: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। हाँ। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे
1: और मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे एक दो घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठे थे और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
2: अच्छा अच्छा।
1: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हजार रुपए उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
2: अरे वाह वाह।
1: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। हाँ। तो फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम दो दो तीन तीन घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे पिताजी
2: चबूतरे में हुआ,
1: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूंगा कि मेरे पिताजी भी किसान है, मेरी माँ भी किसान है और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोले तो हम, बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि

0: खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
1: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
0: उसपे ऐसे कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी।
1: हाँ,
0: तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे कहाँ ले आए।
1: उपटा लगत उंगरिया, क्या बात है,
0: कहाँ ले आए राजा पहाड़िया में,
1: मतलब बुंदेलखंड,
0: लाइक कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए। ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है, ये पहाड़िया को बड़ा

0: कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बम्बई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
1: हाँ
0: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो
0: तो
1: मजा आ गया मुझे सुन
0: बहुत ही
1: के
0: मजा आया,
1: तो।
0: मतलब बहुत मजा। तो
1: हाँ
0: यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे MP के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद,
1: अरे
0: और
1: बाप
0: मैं नाइन्थ
1: मारे,
0: क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक है।
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हमारे छोटे छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे, हमारे
1: हाँ
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
1: तो
0: लाइक
1: बुंदेली में था ये।
0: हाँ बुंदेली में नाटक था। अब
1: हाँ
0: मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा, तो
1: हाँ
0: उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया इस तरह का, जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ।
1: वाह।
0: तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ, फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई। खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफ़ी
1: ओ
0: बड़े
1: वो तो
0: एक्टर हैं,
1: पन्ना के ही
0: जो
1: है।
0: पन्ना के ही हैं। तो
1: हाँ
0: वो NSD से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे। हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5 स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहां पर 1 महीने रहना है।
1: हाँ
0: तो शिल्प ग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें कहीं
1: वाह,
0: देखा है। तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया, और इतना अच्छा काम निकल के
1: और
0: आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूं, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुंचना है।
1: डायरी में लिख गया,
0: हाँ, तो मैं लिख
1: अरे
0: लिया कि
1: क्या
0: अभी
1: बात
0: है मुझे
1: है।
0: पहुंचना है NSD। तो फिर वहां
1: अभी
0: से
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी
1: यहां एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी,
1: जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहां बजाया जाए।
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम,
1: गोविंदा
0: गाना
1: की
0: गाना
1: फिल्म।
0: सुनता, तू पागल प्रेमी आवारा, दिल
1: हाँ
0: तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
1: क्या बात
0: ओए।
1: है,
0: तो ये कुछ गाने हैं जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल वो एक जहन में बसे
0: बहुत
1: होते
0: ही।
1: हैं और ये उस दौर की याद लेके
0: जी
1: आते
0: जी
1: हैं।
0: जी हमने
1: बातचीत
0: बहुत देखा
1: करें,
0: है फिल्म को,
1: वाह
0: बहुत देखा है फिल्म को हम, मैं तो करण अर्जुन बहुत देखा।

0: ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: हाँ,
0: गंगा,
1: क्या
0: जो
1: बात
0: भी
1: है,
0: सीडी पे जो भी मिलता था देखते, सर जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह, ये
0: हाँ
1: गाना सुनते
0: जी
1: हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है जो तब तक एनएसडी में हैं और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है। एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है, उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहां मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं एनएसडी की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उसमें मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था। मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं एनएसजी के गेट पे पहुंचा और मैं एनएसजी मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैंने देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कि मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते। तो मैंने कहा अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कह रहे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10th क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊंगा। मैंने बोला कि मैं आऊंगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
0: वो छोटा वाला
1: फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
0: बस
1: रिकॉर्ड कर दो, एक मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो, एक्सेस किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
0: अरे गजब।
1: और तुम अनुशासित हो।
0: एक मिनट में
1: सब बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो कॉलेज में इस शहर में था,
1: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर सत्यनाथ का नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा। अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो? आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हेमंत भाई,
0: बिल्कुल
1: आप जानते होंगे, बहुत बड़े कवि हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, विहान ग्रुप,
1: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं, कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलख नंदन सिन्हा जी, मैं अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोच रहा हूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूँ। अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
0: बिल्कुल।
1: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा
0: रोशनपुरा चौराहे,
1: हाँ, एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, और मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने उनके पैर छूए, उन्होंने बोले कि पैर वैर नहीं छूते। मैंने बोले हमारे यहाँ तो बड़े बड़ों के पैर छूते हैं। उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते, क्योंकि लोग अजीब के होते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया, और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं, और 1 घंटा हो गया।
0: पहले हेमंत आया,
1: हेमंत दादा आए पहले, और अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले, और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने गाना गाते हो तो हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहनी हुई है, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर ही रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बैठे बैठे पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरे को ये ताकत लगा रहा था, क्योंकि मैं डरा हुआ भी था तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उनने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं आना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल स्पेस साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना, और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
0: जरूर।
1: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, वो पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कैया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
0: क्या बात है।
1: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं।
0: बिल्कुल।
1: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
0: वाह वाह,
1: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
0: वाह वाह।
1: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई। कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने, दद्दा मुखा मेला जाने।
0: कहते हैं देवेंद्र
1: उस समय ये बुंदेलखंड की कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी, और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
0: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
1: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
0: बस वहां खाना हो गया,
1: खाना हो गया, और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल फिर साफ करना है, चटाइयां बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना, और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े और दादा मुझे, और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, क्योंकि यार मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे को भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा।

सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता और ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्ज़ाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में चल का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, SNA अवार्डी हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहां पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे। तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया सर, देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात
0: किए,
1: है।
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना
0: और
1: शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना लिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, एक 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान सुनेंगे। तो बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का
1: ओमकारा का गाना है।
0: बहुत
1: बहुत
0: ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत
0: सुंदर
1: शानदार
0: गाना
1: गाना
0: है।
1: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: तो
0: इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेलवी गाने थे, कुछ ऐसा कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भूला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चल
1: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना मेरे ग्रुप में काम करना।
0: अच्छा,
1: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है डेस्टिनेशन।
0: वो बोर्ड
1: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटी नहीं है।
0: हाँ।
1: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
0: अरे
1: मैंने कहा यार, तो फिर मुझे पढ़ने का वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
0: ओके।
1: और तो उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया।
0: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
1: हो गया
0: और वहीं वो
1: धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
0: मिले धुरंधर
1: जी? उस समय तक थे धुरंधर जी, पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
0: हाँ हाँ।
1: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, ऐसे मनगढ़ंत कहानी सुना रहे वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
0: जी।
1: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब प्यार मिलता, परिवार के सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी हूँ, बहुत ही अच्छे थे वो।
0: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
1: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मेरा डायलॉग खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
0: अच्छा,
1: क्योंकि
0: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये
1: हाँ,
0: बहुत
1: मैं बता रहा हूँ कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था। शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था।
0: हाँ।
1: तो लोग हंसते थे।
0: हाँ।
1: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
0: हाँ हाँ।
1: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की। हाँ। मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था।
0: शक को साफ बोल रहे हो,
1: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया।
0: हाँ।
1: जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना।
0: हाँ।
1: जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे।
0: हाँ।
1: तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था।
0: हाँ।
1: शामिल बोला था, मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोल रहा था इतने दिन से तुमसे, यही तो बोलवाना चाह रहे थे हम।
0: ओके ओके।
1: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया और डायरेक्ट कर रहे थे अनिरुद्ध खुटवर सर, और मैंने मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे है और लगातार बोलना है और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनरिज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया और उस समय मुझे सामने आया कि यार मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियां कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया, सेकेंड ईयर से आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया। और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ। लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
0: बिल्कुल
1: तुम्हारी एफर्टलेस दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
0: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है?
1: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
0: बंसी कॉल
1: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया,
0: मुखौटा।
1: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लाजन लाइव थिएटर करते थे और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
0: बिल्कुल
1: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज्यादा हम बैच

0: अजमेर से सीखते हैं।
1: तो वहां से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया और वो थिएटर ओलंपिक हुआ, उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक, कि वहां से एक रेल की पटरी निकलती है और वहां पे एक गार्ड रहता है और वहां पे फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए और मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे, वो बहुत बड़ा नाम था उस डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास एनएसडी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंचे, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे, पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया
1: और यहाँ से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता है कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बताता कि वहां हर हाल में पहुंचना है जहां जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरह बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
1: अच्छा
0: हाँ, वो क्योंकि रेडियो का बंदा था तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
1: और उसका एक गाना सुनाओ यार,
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको,
1: बिल्कुल
0: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है। मैं एक इसकी छोटी सी गंभीर बात आ देता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस, जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है, और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये, एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के रख दी, बदल दी, उस पर एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद है, तो वो क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है, क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होकर ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहां कहां पहुंचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है,
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
1: वाह।
0: सुबह उठा तो कान के नीचे गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, क्या बढ़िया गाना। जी जी जी। कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडिया हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कोम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी,
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज,
0: जी जी, स्वानंद दादा है, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी। जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा,
1: बेचारा
0: अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है, बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरुजी रोविंद सर काम, आशीष विद्यार्थी जी भी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था, गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था। अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कहीं तो भूख में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या सुन,
0: उसके लिरिक्स ऐसे हैं मतलब,
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए,
0: जी जी जी,
1: तो फिर कभी मिलेंगे और आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार,
1: बिल्कुल,
0: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत, इतना नहीं एक रेडियो में,
1: बिल्कुल,
0: और मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको, और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहां से कहूं, जैसे गाने मैंने सुन के बड़ा हुआ हूं मैं, सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूँ तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके साथ बैठा हुआ था।
1: सफर है।
0: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके। और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंदादन दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज धनबाद में कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य देश के लोगों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना और उन पर बोझ कम करना है। संक्षिप्त दौरे पर धनबाद पहुंची केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया 5 यूरोपीय देशों की यात्रा पर भी बात की। राज्य में आज से सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रदर्शित कर दी गई है, जिसे देखने के लिए बूथों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि यह सूची

0: पर्ची आज से अगले दो सप्ताह तक सभी केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। राज्य सरकार ने राज्य में भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के अधिकारियों और थानों को अपने दफ्तरों के बाहर और सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने को कहा गया है। रामगढ़ के पतरातू से असम के लिए 4000 टन फ्लाई ऐश की पहली रेलगाड़ी रवाना की गई। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने पर्यावरण को बचाने के लिए यह बड़ी पहल की है। पीवीयूएनएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके सहगल ने इस मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। गिरिडीह साइबर पुलिस ने गांडई थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दो शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बड़ी सफलता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और 3 चेकबुक बरामद किए गए हैं। खूंटी पुलिस ने कर्रा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी को महज 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तस्करी कठरटोली गांव से 19 वर्षीय आरोपी संतोष महली को दबोचा। आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:02 और 22 सेकेंड्स हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: पहले हम किसान वाणी सुने सभी किसान भाई बहन के जोहार प्रणाम और राम राम। और आज हमारे संगे देखिए आल हथिन उमेश भाई। तो उमेश भाई तुरा कार्यक्रम किसान वाणी में स्वागत है, साथ ही जोहार प्रणाम।
1: जोहार प्रणाम श्याम भाई, और आज के कार्यक्रम सुने सब किसान भाई बहन के एक बार फिर से उमेश के दने से भी जोहार प्रणाम करो। और देखो श्याम भाई, आज हम इन कार्यक्रम में बड़ी दिन बाद भेटे ले ही भाई, तोर से हालचाल भी जानल चाहबो कि कैसन गर्मी के दिन में चल रहा लो भाई, काम धाम का कर ले है अभी, चंगा छुटिया तो और कैसा ना तू।
0: देखा सवाल तो बढ़िया है उमेश भाई, कहे कि अभी के गर्मी देखा कि उमस वाला गर्मी है।
1: हाँ हाँ।
0: और अंदर मतलब कि घर के अंदर रहवा तो देखा कि मने कि उमस टाइप से लगतो साइंस के बेरा में, और बाहर निकल पाता तो नहीं सुन देखा कि हवा तो लगतो का बाद भी पसीना चलते रहतो।
1: बिल्कुल।
0: तो अभी हम इनके जो है ना उमेश भाई, अगर हाँ कहीं भी अगर हम निकलो ये काम धंधा के लिए, अगर ज्यादा जरूरी तबे निकले चाहिए दोपहर में, और अगर निकलो भी है तो हम इनके एकदम पूरा फुल कपड़ा पहन के निकले चाहिए, और अपन साथ जो है ठंडा पानी हमेशा लेके चले चाहिए। और देखा कि अगर मान के चल अभी देखा कि अंधर तूफान के भी समय जैसे ज्यादा अभी चल रहा तो शाम के समय अगर देखा मौसम अगर कहीं खराब है तो पेड़ उड़ के नीचे जैसे नहीं इनके बैठे के चाहिए, कहीं पक्का घर है तो वहीं पर जाकर के हम इनके रुक जाए के चाहिए।
1: एकदम सही बात का लाभ है। देखा कि एक चीज और है कि अगर टोपी है टोपी पहनना चाहे, गमछा ले ला अपन साथ में, ताकि देखवा कि अभी जो है हम इनके मौसम विभाग के तरफ से भी जो है गर्मी के जो है अलर्ट जारी करल गेल है कि हम इनके बच के चाहिए रह के चाहिए। और अपन देखा चंगा छुटिया के भी बेस्ट तरीके से रखना होगा अपन गर्मी, देखा कि अब गर्मी छुट्टी भी हो गलो है तो गर्मी छुट्टी में का है कि भाई देखवा कि चंगा छुटिया जो से भाई आम खाए ले भाग जीत हूं, चाहे फिर जो है नदी पोखरा में नहाए के बहाने भाग जीत हो, तो इस सब के भी हम इनके ध्यान रखना है ताकि जो है कोई भारी नुकसान न हो जाए
0: न हो जाए।
1: दूसरी बात हो कि देखा जो किसान भाई बहन खेती बाड़ी कर ले थे, जो साग सब्जी लगो ले थी भाई, तो उनका भी जो है से ध्यान देना है कि भाई हम इनके समय समय पर पानी पटवन करना हो, कौन साग सब्जी में जो है से हम इनके घास फूस हो गए है ओकरा भी सही टाइम पर निकौनी करिए, तो इस सब बात के हम इनके ध्यान रखना है,
0: ध्यान रखे चाहिए। और देखा कि एक हम बढ़िया आज एगो चर्चा करवे उमेश भाई की, जैसे देखा कि अब तो बरसात आवे वाला है और ज्यादा समय भी नहीं बचला है, तो हम इनके देखा कि अभी जैसे जल के देखा समस्या बहुत जगह हो जाए गर्मी के दिन में देखे था
1: बिल्कुल
0: कि

0: ध्यान रखना ही है। देखा कि गर्मी के मौसम में कावे के बाद देखा जैसे कि तू कहला चापाकल जो है पानी का स्तर नीचे चल जाए, जब बोरिंग करे ले तू भाई देखवा कि 200-250 फीट तक नीचे बोरिंग करा दो थी ओकरो से जो है पानी के हमिन के समस्या हो जाओ। और दूसरी बात है ना जैसे कि तू कहला कि जल संचय यानी कि हमिन के पानी के बचावे के उपाय करना हो और बचाना भी है ताकि जैसे हम इनका है कि भाई अपन पर्यावरण के भी बचा सको ही है। देखवा के अब एकर में जैसे हम इनके पानी बचा के और अपन बचत करके और पर्यावरण के भी बचाना हो कहे के मतलब है ना श्याम भाई कि देखा कहीं तू नहा रहला तो वहां पानी जो है से ज्यादा बर्बाद ना करा, नल जो है अपन पानी भर लेला चाहे नहा लेला चाहे पैर हाथ धो लेला ओकर बाद बंद कर दा। दूसरा बात देखवा नहीं कहूं कहूं देखवा कि चापा नल जो चला रहा तू सिर्फ नहा रहा तू 2 घंटा तक जगह चुटिया देखवा चाहे और तो इस सब छोट छोट बात के अगर हम ध्यान रखिये तो पानी के बचावल
1: बचाव मैंने कहा कि जहां हम इनके पानी कम जरूरत है वहां हमें ज्यादा कर दे मैंने मिस यूज कर दी है तो हम के ऊपर ओकरा पर ध्यान देवे के चाहिए। और देखा कि जल संचय की अगर बात है जैसे बरसात आर लूम बिस भाई तो सबसे पहले हम इनके कोशिश करे के चाहिए कि छत के पानी जो हम इनके गिर के जो बह के नदी नाला में चल जाए ओकरा हम कैसे अपन घर के अंदर ही रखिये। सबसे बढ़िया बात है एकरा में कि घर के अंदर अगर रखो ये देखा वो पानी हमारा आज नहीं तक कल फिर काम देते
0: सही बात।
1: तो उकरा ले देखा कि हमें कि एगो पनसोखा घर में रखे के बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: सही बात।
1: अगर पनसोखा रखो ये तो घर के छत के पानी के अगर हम पाइप के द्वारा अगर कनेक्शन करके अगर वो पनसोखा में रखो ये तो पानी देखा कि कहीं नहीं जीते वो पानी हम इनके जमीन के नीचे रह जीते ताकि हमारे कुआ में चापाकल में लेया भी जैसे बराबर बनल रहते। और फिर देखे थे ना उमेश भाई की जैसे कि बरसात के पानी बह के जो है से इधर उधर भी चल जाए तो ओकर लिए देखा कि हम के भारत सरकार के द्वारा जो है से बहुत तरह के मनरेगा द्वारा जो है से काम भी मिलो है जल के बचाव खातिर जैसे डोभा है तो फिर खेत के पानी खेत में है फिर मेड़बंदी हो वो है
0: देखा ये नल जल सिंचाई योजना भी हो देखा सूक्ष्म सिंचाई योजना भी है ड्रिप इरीगेशन हो तो इस सब विधि जो है ना श्याम भाई कहीं ना कहीं देखा कि हम इनके पर्यावरण से जुड़ल है और देखा हम इनके पर्यावरण के भी सुरक्षा करना हो तो देखा कि एकरा का है ना हम इन मिशन जो है मिशन लाइफ हम इनके अपनावे की जरूरत है। देखवा कि जो है अपन जीवन में जो है हम इन अगर छोट छोट बात के अगर सुधार करिए तो कहीं ना कहीं हम इन पर्यावरण के बचा सको ही और जल के भी संचय कर सको ही और ये जो मिशन लाइफ है एकरा भी हम इन जो है से अपनावे के बाद बेस्ट तरीके से हम इन कर सको ही।
1: और पर्यावरण देखा कि जब हम जल संचय करो तो पर्यावरण के बहुत हद तक मैंने कहा कि सुरक्षा भी हो जाए कहा कि अगर हम इनके पास अगर पानी की व्यवस्था है तो कहा कि सब कुछ की व्यवस्था है सबसे कहा कि मूल्य चीज हो जाए पानी तो पर्यावरण के सुरक्षा भी इनके बहुत जरूरी है करे के देखा कि जैसे कि जहां पेड़ पौधा के कमी है वहां 2-4 पेड़ हर साल कम से कम लगावल करा चाहे जे खेत में कुछ हमें अगर फसल नहीं लगा लिया टाइम टुकुर है तो वहां इनके जैसे वृक्षारोपण लेकर के वहां भी जैसे भी पेड़ लगा सको ये।
0: बिल्कुल एक बात और तो बेस बात कहला श्याम भाई देखा जे तू कहला ना कि हम इन आयर क्यारी में जो है से गाछ लगवे के चाहिए तो देखा कि जे गाछ लगवे को ना हम इनके जो है से कहवा के ऐसा ऐसा गाछ लगावे के चाहिए जेकर से हम इनके जो माटी भी है वो भी जो है से सुरक्षित रह सको। देखवा के दिनों दिन जो किसान भाई बहन जो है से रासायनिक खाद रासायनिक दवाई प्रयोग कर लेते भाई तो एकर से कहे कि हम इनका माटी भी बीमार हो रहा तो ओकर से बचावे खातिर देखा हम इन पर्यावरण के सुरक्षा करे पर तो और जब हम पर्यावरण के बात करो तो भाई देखा अपन जो क्यारी क्यारी होकर में तू नीम के गाछ लगा दा ओकर बाद हो कि करौंज के गाछ लगा दा ओकर में देखवा कि सिंदवार के गाछ लगा दा तो एकर से का होता ना श्याम भाई कि देखा नीम के पत्ते गिर लो चाहे ओकर फल गिर लो चाहे करौंज के पत्ते गिर लो तो का है कि वहां के जो माटी है वो जो है से तोहर उपजाऊ होते
1: उपजाऊ जो
0: है देखवा कि दिया लगल हो चाहे फिर जो है जब हम इनके रासायनिक खाद के चलते माटी बीमार हो जाए तो ओकरो से बचावल जा सके तो कहीं ना कहीं देखवा कि ये सब गाछ के लगवे के चाहे फिर फलदार पौधा लगा दा अमरूद लगा दा कटहल लगा दा कटहल के जड़ तरी देखवा कि तोरा माटी भी नहीं बहतो बरसात के मौसम में अमरूद देखा कि तू बिक्री भी कर सको है तो कहीं ना कहीं देखा कि हम इनके जो है अपन जो मिशन कहा कि एक तरह से जो है उद्देश्य जो हम इनके है अपन जीवन में ओकरा हम इन सुधार के और पर्यावरण के भी बचाव के उपाय कर सको ही
1: कर सको ही। तो देखा उमेश भाई हम इन आगे और बातचीत करवा भी हम इन कार्यक्रम किसान वाणी में बनल रहे तो सुनो ये कुछ जरूरी संदेश।
0: बिल्कुल
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी हर दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक

क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: हाँ तो देखा हूँ इस बार हमें जरूरी संदेश भी सुना लिया हमें अपन कार्यक्रम के दिन बुढ़ हुई है। तो देखा हमें बात करे थलिए कि हम इनके जो अभी कहा कि पर्यावरण के सुरक्षा करे के बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या देखा कि ये पर्यावरण जैसे बहुत दूषित भी हो रहा है। हाँ, तो ओकरा एक उपाय है कि हम इन हर साल कम से कम 10 से 12 पेड़ लगाइए।
6: बिल्कुल,
5: तो पेड़ अगर रहते तो कहा कि पर्यावरण भी हम इनके सुरक्षित रहते, और ओकरा लेल करके हम इनके जगह पेड़ लगावो तो अगर हम तो सिंचाई की जरूरत पड़ो है। हाँ, तो ओकरा लेल हम इनके जल के संचय भी करे के बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस एकरा पर हम इनके हमेशा जो है से ध्यान देवे के चाहिए। और फिर देखा कि आगे हम इन बात करो ये उमेश भाई कि गर्मी में जो है से पशु सबके हम इन कैसे बचाइए।
6: हाँ हाँ,
5: और देखा कि अभी जितना गर्मी है अगर हम इन पशु पर हल्का फुल्का अगर ध्यान देवे में कमी करो ये तो देखा थोड़ा भारी भरकम नुकसान होवे के कहा कि डर हो। कहा कि अभी के समय में देखे तो हुआ कि इतना महंगा महंगा हम इनके पशु हो गया है कि कोई भी पशु अगर बढ़िया नस्ल के लेवल जा तो कहा कि 90-95-1 लाख-1.5 लाख इस तरह करके अभी दाम है। और जब हम इन अपन व्यवसाय खातिर लगो ही है तो ओकरा देख रेख अगर बढ़िया से नहीं करबे तो इनके व्यवसाय भी बढ़िया से नहीं चलते और डूब जेते।
6: बिल्कुल,
5: तो ओकरा लेल देखा कि सबसे पहले हम इनके जो है से चारा पर ध्यान देवे के चाहिए, और फिर ओकर देखा कि समय से नहावे के चाहिए या समय से ओकरा गुहाल के अंदर करे के चाहिए।
6: हाँ बिल्कुल सही बात कहला श्याम भाई। देखा हम इनके जो पशुपालक भाई बहन हती तो अपन जो गर्मी के मौसम में जो है अपन गाय के अपन भैंस के चाहे फिर जो है ओकरा कैसे रखे के चाहिए ये सब जो है देखभाल करो थे। तो एक पर आज एगो किसान आये लतीन भाई पशुपालक भाई हती और वो जो है अपन जो गौशाला है उनका वो पशुपालन करो थे तो कैसे देखभाल करो थी कौन कौन बात के ध्यान रखो थे एक पर वो आज हम इनके बतेथिन तो सुना जाए उनकर बातचीत। और ये हथिन भाई कृष्णा महतो और इनकर से बातचीत कर लेती श्याम सुंदर रचक।
5: तब चला सुना जाए।
6: बिल्कुल
7: श्रोताओं, आज हम आए हुए हैं चतरा जिला के परसोनी गांव और यहां पे आज हम बातें करेंगे एक बुजुर्ग सफल पशुपालक से जो अभी के समय में देख रहे हैं कि 28 ठो गाय रखे हुए हैं और इनका देखभाल कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि ये 28 गाय को कैसे देखरेख करते हैं और अभी जो गर्मी पड़ रहा है इस गर्मी में कैसे हम लोग को देखरेख करना चाहिए और खान पान पे क्या ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं हम लोग को दूध में कमी आ जाता है। तो इसी पर हम लोग आज विशेष चर्चा लेंगे और इनके पास काफी जानकारी है, एक बुजुर्ग हैं और शुरू से ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम और पता बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं और अपना नाम बताएं।
8: घर मेरा हुआ ककड़िया डाम, पोस्ट हुआ बंदे, थाना हुआ मखदुमपुर, जिला जहानाबाद, किरण वाला हूँ
7: जी। तो आप यहाँ पे जो आए हैं तो आप मैंने कि किसी के घर में कहिए तो गाय को देख रेख करने के लिए आए हैं।
8: हाँ,
7: और हाँ और इनको हम जानते भी हैं, ये सुधीर जी हैं जिनके घर आप आए हैं। सुधीर जी जो है बहुत ही पहले से मैंने कि इच्छा जाहिर कर रहे थे कि हम गाय रखेंगे और अपना इलाका में जो है दूध की कमी

0: भी नहीं होने देंगे। तो देखिए सुधीर जी गाय भी ले आए हैं और काफी रकम लगा करके गाय लाए हैं, तो आपको जो उसे देख रेख के लिए रखे हैं। तो आपके पास जो जानकारी है, इस जानकारी से आप जो उसे सुधीर जी को कहिए तो आप उनका गाय का जो है सो देख रेख कर रहे हैं और उनको जो है आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि अभी देख रहे हैं कि गर्मी के दिन है, तो गर्मी के दिन में जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गाय को क्या देख रेख करते हैं?
1: पहले उठते हैं तो खाना लगाते हैं।
0: जी हाँ, तो खाना आप जैसे कि गोबर रात भर जो गोबर की है
1: दूसरा जगह व्यवस्था रहता है, उतार के बांध देते और बाद साफ होता है।
0: जी मैंने वहाँ से चेंज कर देते हैं जहाँ खाना लगाते हैं वहाँ।
1: हाँ, चेंज
0: करने के बाद खाना लगाते हैं
1: दूसरा जगह, साफ जगह पर खाना लगाया।
0: साफ जगह पे खाना लगाते हैं।
1: साफ जगह पर खाना लगाया।
0: जी हाँ,
1: उसमें दाना लगाया सुधा।
0: दाना में क्या क्या दें थोड़ा बताइए पूरा।
1: सुधा।
0: जी हाँ।
1: चोकर।
0: जी हाँ।
1: तीसी खली।
0: जी हाँ।
1: चना का भूसी।
0: जी जी।
1: एक तो पाउडर देते हैं, उसको नाम बुला रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: पाउडर देते हैं ठंडा के लिए।
0: ठंडा के लिए, मैंने पेट ठंडा रखने के लिए पाउडर देते हैं। मैंने इतना सारा मिक्स करके जो है सो गाय को देते हैं। अच्छा, अनाज अगर हमको देना है तो एक गाय पर कितना होना चाहिए अनाज?
1: कम से कम 3 किलो।
0: 3 केजी एक टाइम में?
1: एक टाइम में
0: जैसे 3 केजी आप दाना दीजिएगा तो आपकी गाय जो है मैंने कही है तो इस गर्मी को सहन भी कर सकेगी और दूध भी अच्छा देगी।
1: दो टाइम देना है 3-3 किलो, एक टाइम देना है 1 किलो।
0: जी हाँ,
1: दुहला के बाद 9 बजे रात में देते हैं 1 किलो 1.5 किलो चोकर खाली।
0: दुहला के बाद भी देते हैं खाना?
1: 9 बजे रात में।
0: 9 बजे रात में
1: 3 टाइम देते हैं खाना।
0: 3 टाइम देते, तभी तो देख रहे हैं कि आपकी गाय जो है सभी एकदम कई तंदुरुस्त है और पूरा साफ सुथरा भी है। चलिए सुबह में जैसे कि आप खाना दे दिए, खाना देने के बाद आगे का जो आपका काम रहता है
1: तो 1 बजे दिन में ग्लूकोज पियाते हैं।
0: 1 बजे दिन में?
1: पानी दिन भर में 2 बार।
0: पानी दिन में 2 बार देते हैं?
1: देते हैं, और रात में देते हैं 1 बार, 3 बार पानी
0: रात में
1: ग्लूकोज वाला पानी।
0: हाँ, मैंने कही तो आपका एक काम है कि गाय को एकदम बढ़िया से तंदुरुस्त रखना है। अच्छा आपकी गाय को देख रहे हैं कि पूरा फ्रेश दिख रही है, तो कितना बजे डेली नहला देते हैं?
1: डेली 8:30 में धुलाई पर चल जाता है बांध के नेट पर।
0: 8:30 बजे मैंने इसको धो के कंप्लीट कर देते हैं?
1: हाँ, नेट पर बांध के दुहाई के बाद।
0: जी हाँ,
1: चल जाता है नेट पर सर।
0: सब मैंने जो रबड़ देख रहे हैं उसी को नेट बता रहा है, मैंने रबड़ पर रहती है, नेट पर रहती है, ताकि जो है खुर नहीं घिसे या तो बैठने में दिक्कत ना हो,
1: मुलायम रहे।
0: इसके लिए जो है नेट का भी सारी गाय के पास देख रहे हैं सुविधा दिया हुआ है, और फिर पंखा भी देख रहे हैं कि सब गाय के पास जो एक एक पंखा,
1: गाय को एक पंखा
0: मैंने कि देना है, ताकि जैसे हम रहते हैं उस जैसे गाय भी रहे, बढ़िया तरह हवा मिलते रहे, और गाय का टेम्परेचर भी देख रहे हैं कि काफी टेम्परेचर बहुत हाई है, बढ़ जा रहा है, तो इसमें जो
1: बाहर का लुक न चाहिए,
0: बाहर का लुक नहीं आना चाहिए।
1: नहीं।
0: अच्छा, और जैसे कि शाम का समय जब होता है तो कितना बजे से आप इसमें लग जाते हैं काम करने के लिए, ताकि दूध जो है कितना बजे निकाल लेते हैं?
1: दूध 7:30 बजे सबको क्लियर निकाल लेते हैं।
0: 7:30 बजे तक एकदम क्लियर कर देते हैं। इसके लिए कितना बजे से आप शुरुआत कर देते हैं?
1: 5 बजे से।
0: 5 बजे से आप लग जाते हैं खाना दाना पानी देने के लिए लग जाते हैं?
1: 5 बजे खाकर फिर उतार जाता है सर।
0: 5 बजे मैंने आप खाना दे दिए और 1 घंटा में खाना खा ले, उसके बाद आप साफ सफाई करके दूध दुहने के लिए लग जाते हैं। अच्छा, दूध कितना हो जाता है यहाँ पे?
1: दूध हो जाता है 300 लीटर से होगा, 3.5 मान के चलिए
0: 350 लीटर जो दूध हो जाता है। तो दूध ये जो बिक्री करने का जो काम हो रहा है तो आप गांव में भी देते हैं कि सारा सेंटर में जाता है?
1: गांव में जाता भी है 50 लीटर भर, और बाद सेंटर में जाता है।
0: मैंने गांव में 50 लीटर जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि अभी सुधीर जी जो है सो काम शुरू किए हैं और गांव का भी जो दूध का कमी है उसका भी पूरा कर रहे हैं, और बाकी बस सेंटर में दूध जो है जा रहा है। अच्छा, गर्मी के दिन में अगर खास ध्यान देने की अगर बात करें गाय को, जैसे कि हम लोग अपने शरीर को कैसे ध्यान देते हैं कि समय पर नहाना है, बढ़िया खाना खाना है, तो खास ध्यान क्या देना चाहिए गाय पर गर्मी के दिन में?
1: रौद नहीं चाहिए,
0: धूप नहीं चाहिए,
1: नहीं धूप बचाना है,
0: धूप से एकदम बचाना है,
1: ठंडी में धूप में रहेगा दिन भर कोई दिक्कत नहीं है।
0: अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि जैसे धूप कड़ा हुआ वैसे आप प्लास्टिक बांध दिए किनारे किनारे,
1: जिधर लुक न मारे,
0: लुक मारने के डर से जैसे प्लास्टिक जो है वहाँ लगा दें ताकि उधर से गर्म हवा नहीं आवे, लुक नहीं मारे। तो चलिए बहुत ही अच्छे मैंने कि आप ध्यान देते हैं कि हमारी गाय जो है सुरक्षित रहे, और अपना मालिक के प्रति भी जो है खरा उतरे हुए हैं और सही ढंग से काम भी कर रहे हैं। और खाना में जैसे आप बताएं कि दिन में तीसी का खली हल्का देना चाहिए, फिर चना का भूसी देना चाहिए, फिर चोकर, मैंने सब दाना मिला करके एक टाइम में कम से कम 3 केजी होना चाहिए। और अगर उसका बच्चा का देख रेख की बात करें, जैसे गाय के जो बच्चा जो है उसका देख रेख कैसे कैसे करते हैं?
1: बच्चा का भी ग्लूकोज का पानी दो बार पियाते हैं, दूसरा ग्लूकोज आता है लाल वाला पैकेट छोटा में,
0: उसका दूसरा आता है बच्चा के लिए। और उसका धूप वगैरह से बचाने के लिए
1: सब गाड़ी वो पंखे तक रहता है, रौद में न रहता है बच्चा।
0: अच्छा, उसको देखेंगे साइड में रखे हैं मतलब कि अंदर में करके रखे ताकि वो गर्म हवा से भी बचे ना।
1: हाँ,
0: और उसके लिए रूम जो है बढ़िया ठंडा भी रहता है।
1: हाँ।
0: माने कि जितना गाय का देख रेख करते उससे कहीं ज्यादा बछड़ा को
1: करना, बच्चा और लुकायल रहता है,
0: बच्चा एकदम बढ़िया तरह से एकदम। और आपका देख रहे हैं कि जितना भी गाय सबका बच्चा भी एकदम तंदुरुस्त है, एकदम अच्छा खासा एकदम है, मोटा ताजा है। तो आप देखिए इतना बढ़िया जानकारी दिए कि हमारी गाय जो है सो कैसे बढ़िया गर्मी के दिन में रहे और कैसे उससे ज़्यादा हम दूध लें और दूध का इन्वेस्ट हम कैसे करें, इसके बारे में आप जानकारी दिए। और हमारे सुधीर जी देख रहे हैं कि अच्छा खासा लागत लगा करके जो है सो यहाँ पे परसौनी चौक के पास जो है सो अपना गौशाला खोले हैं। और गाय का अगर दाम हम आपसे जानना चाहे हैं कि एक गाय जैसे कि 23 को गाय है, 23-24 को जितना भी है, तो अगर आपसे दाम जानना चाहें तो क्या आपको मालूम है कि एक गाय का दाम कितना होना चाहिए?
1: पूरा टोटल
0: मैंने 1,00,000
1: 1,90,000, 92,000, 95,000 90 से नीचे कोई गाय नहीं है,
0: 90 से नीचे कोई गाय नहीं है। अच्छा, गाय आई कहाँ से है ये वाला गाय?
1: गाय आया है जहानाबाद से, आधा गाय आधा बात है सीवान।
0: मैंने
1: यहाँ मेरा घर है
0: सीवान। आपका
1: से गया है? नहीं, जहानाबाद में घर है।
0: जहानाबाद में आपका घर है? और कुछ जहानाबाद से भी गया आई है?
1: जहानाबाद का गाय टिकाऊ है।
0: टिकाऊ है ना, मैंने कही तो उसको थोड़ा सा मौसम
1: आती है।
0: हाँ, मैंने मौसम को इस इन्वायरमेंट को थोड़ा सा सहने की शक्ति इसमें है। तो चलिए, आप बहुत ही अच्छी जानकारी दिए और आप अपना बहुत मूल्य समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: तो श्याम भाई देखा, अभी हम इनके अपन अनुभव के साझा करे थलथिन। अरे ये कैसे गाय पालन में जो है का गर्मी के मौसम में जे अपन देखभाल करो थी भाई, और एकरा जो है से कैसे वो जो है खान पान करो थी। ये हलथिन कृष्णा माथो और इनकर से बातचीत कर लेथिन श्याम सुंदर रजक।
4: हाँ, तो देखा उमेश भाई, अगर हमीन जैसन बतेलथिन, अगर हमीन ओकरा पर अमल करो ही है, और अभी के समय देखा कि सबसे पहले बतेलथिन कि खान पान जैसे बढ़िया होवे के चाही।
3: हाँ, हाँ।
4: खान पान अगर बढ़िया रहते तो लू लगे के जे संभावना है जे है से वो कम हो जाते। और का बतेलथिन कि अगर गाय जैसे कि देखा कि नॉर्मल गाय है, फ्रिज यानी सब है, तो ओकरा में धूप नहीं लगे चाहिए गर्मी के दिन में।
3: हाँ, हाँ।
4: और बाहर से गर्म हवा जो है वो भी शरीर पर नहीं पड़े के चाहिए।
3: मैंने
4: कि ध्यान जो है से पूरा एकदम बढ़िया तरीके से ओकरा पर रखे के है।
3: हाँ, हाँ।
4: और फिर देखा कि आगे हल्का सा चर्चा करो ये उमेश भाई, क्या कि देखा कि अब जो है से बरसात के समय आ रहा है, धान लगे के समय आ रहा है, तो हमें किसान भाई बहन सब जो है से हर साल जो है से थोड़ा सा दिमाग में लेके चलो थे कि अबरी हम का करिए ये बरसात में।
3: हाँ, हाँ।
4: कौन धान लगे, फिर कौन खेत में लगे, मैंने बहुत तरह से सोचो थे। और बहुत किसान भाई बहन के अभी का देख रही है कि जो पानी पड़ल है अभी, ओकरा बढ़िया खेत के एकदम बढ़िया तरीके से जोता कोड़ा के एकदम बढ़िया तरीके से रख दल थी ना। काम तो बहुत बढ़िया खेल थी उमेश भाई की, अभी के जो जोत कोड़ रोए ना वो धान खेत के लिए बहुत ही बढ़िया रोए है। कहा कि जमीन के नीचे जो भी कहा कि कीटनाशक कीड़ा वगैरह सब जो नुकसान वाला वो जो है से खत्म हो जाए, मर जाए, और खेत भी हम इनके जैसे बढ़िया तरीके से हल्का हो जाए।
3: बिल्कुल सही बात कहला भाई। देखा कि हम इनके किसान भाई बहन के अब जो है अभी जो गर्मी का मौसम चले थो, अब एकर बाद जो है से अपन खेत क्यारी की जो है से अब बरसात के वाला जो है तैयारी करथिन। लेकिन का है कि भाई देखा किसान भाई बहन के एकर साथ साथ जो है कई तरह के सरकार के तरफ से जो है से योजना भी चलावल जा रही है, ओकर जो है हम इनके किसान भाई बहन के लाभ लेवे के चाहिए। अब देखा ओकर में का है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन हो, शहद जो है मिशन योजना हो, बिरसा कृषि जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन हो, तो देखवा कि बहुत तरह से उनके किसान भाई बहन के जो है योजना चलावल गेल है। एकरे पर जो है हम इनके किसान भाई बहन मधुमक्खी पालन करके जो है और शहद के जो है से मधु के बेच सको थे
4: हाँ।
3: है ना, तो ये भी देखो कि एगो स्वरोजगार के बहुत बड़का जो है से साधन है। और हम इनके कहे कि भाई देखो कि कृषि विज्ञान केंद्र के तरफ से कई तरह से जो है

0: किसान भी देवल जा है। हम इनके किसान भाई बहन के जो है ऐसा गैर सरकारी संस्था भी थी, जैसे आत्मा हो गलो, तब बहुत ऐसा है इनकी भाई गांव गांव में जाके हुनर के हिसाब से उनका ऋण भी दो थी, मुहैया कराओ थी, और प्रशिक्षण भी समय समय पर दो थी, ताकि जो है से तू रोजगार कर सका।
1: देखा कि बहुत बढ़िया बात बताया उमेश भाई कि देखा गया अगर कोई भी काम अगर हमें कर चाहो तो प्रति सबसे पहले हमारा खुद अपने आप खड़ा रहे पड़तो।
0: बिल्कुल।
1: और पूरा और खड़ा ऐसे नहीं रह के पूरा ओकरा पर तात्पर्य एकदम पर लगल पड़तो।
0: हाँ,
1: तब जाकर के तू कोई भी जी है उसे व्यवसाय में तू सफल होगा। जैसे कि व्यवसाय तो बहुत तरह से सरकार के तरफ से चलावल जा रही योजना, तो वो योजना के लाभ लेवे खातिर थोड़ा देखा कि अपने आप से एकदम तैयारी में रहो पड़तो। और तो जैसे मधुमक्खी पालन बतेला उमेश भाई, तो बहुत जगह जो है से मधुमक्खी पालन करके जो है से किसान भाई बहन सब जो है से अपन रोजगार के जो है से आगे बढ़ा रहा थे।
0: हाँ हाँ।
1: और देखा एकरा में जैसे कि बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है, लेकिन एक समय जो हुए उस समय का देखते हुए हम इनके जो है से काम करे के चाहिए। जैसे बतेला कि अगर हम इनके जानकारी नहीं है तो कहीं भी कभी के में जा करके जैसे में प्रशिक्षण लेकर के जैसे काम शुरू कर सको ही है।
0: हाँ हाँ।
1: और एकर में जो है से अनुदान हम इनके सरकार के तरफ से भी मिलो है, तो कोई ज्यादा खर्च भी एकरा।
0: बिल्कुल। और देखा कि जे राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन जे हो भाई, तो एकर में क्या है ना कि भाई तू शहद के अगर तू उत्पादन करे था तो तोहरा जे है से बाजार के व्यवस्था भी चाहिए। तो क्या है कि भाई देखा बहुत ऐसा हम इनके जो है ऐसा किसान समूह हथिन कि भाई एकर में जो है एक किसान के जे बाजार हुआ है भाई, किसान भाई इनके बिक्री खातिर ले ओकरो में तू जो है से बढ़िया भाव में जो है बेच
1: सको।
0: दूसरा बात है कि देखा कि किसान पोर्टल पर भी जो हम जो है अपन जो भी खेती बाड़ी करा चाहे जो स्वरोजगार करा चाहे फिर अभी जो हम मधुमक्खी पालन के बात करे थे, तो एकरो जो है से हम इन अपन योजना के रख सको ही और शहद के बिक्री के लिए बढ़िया मुनाफा कमा सको, बढ़िया बाजार भाव भी मिल जाए।
1: और देखा कि एकर बाद अगर हम जैसे कि बात करें जैसे बतेला कि और कोई भी व्यवसाय हम साथ में कर सको है, तो हम इनके किसान भाई बहन सबके चाहे युवा किसान जी अभी हथिन वो सब थोड़ा सा ज्यादा इच्छुक हो थे कि हम काची फसल लगे ये कि ज्यादा से ज्यादा हमारा फायदा हो।
0: हाँ।
1: तो हमेशा वो सब सोचते रहते हैं। और अभी के जो युवा भाई सब हथिन जो किसानी कर लेते हैं उस समय देखा कि एकदम कहा कि रासायनिक तौर तरीका से खेती करो थे, एकदम आधुनिक तौर तरीका से खेती कर शुरू कर थे। तो वो सब चाहो थे कि खेती से जितना भी रिलेटिव व्यवसाय है ओकरा भी साथ में कर लिया ताकि आमदनी हमारे जो है से बढ़िया हो और दोनों एक साथ चले। जैसे कि मान के चला खेती बाड़ी अगर हम कर लग ले तो साथ ही अगर हम गाय पालन भी कर ले रही है।
0: हाँ।
1: तो देखा कि गाय के जितना भी कहा कि छुटल बढ़ल जितना भी है वो तू अपन खेत में यूज कर सको, जैसे कि गोबर से तू खाद बना करके अपन खेत के बढ़िया से तंदुरुस्त बना सको, मिट्टी बढ़िया उपजाऊ बना सको। और फिर मान के चला कि बछड़ा है तो ओकरा से हम अपन हल बैल के भी जोताई कर सको।
0: एक बात और देखवा ना भाई श्याम भाई की, देखा जैसे तू मधुमक्खी पालन कर लिया तो किसान भाई बहन का करो थी कि भाई टाट टिकुल में देखवा के सुरगुजा लगा दो,
1: सुरगुजा
0: तो सुरगुजा के फूल में देखवा के जो है मधुमक्खी पालन बढ़िया तरीके से कर सको है। ओकर बाद देखवा की कई तरह के जो है देखवा फूल के किस्म हो, गेंदा फूल हो गलो, चमेली हो गलो, गुड़हल हो गलो, बहुत तरह से है। तो कहीं ना कहीं देखा की हम इनके जो है से खेती बाड़ी के साथ साथ जैसे तू सुरगुजा लगा दिला तो जो है और भी लगा दिला जेकर से हम इन मधुमक्खी पालन बेहतर से कर सको ही। तो एकर में का है कि भाई देखा खेती बाड़ी तो और भी हो गलो, तुहरा सुरगुजा के उत्पादन भी हो गलो, और तू मधुमक्खी पालन से अपन आय भी दोगुना कर
1: सको।
0: तो कहीं ना कहीं देखा किसान भाई बहन के इस बात के ध्यान रखे के चाहिए ताकि जो है हमारे खेती बाड़ी के साथ साथ और भी स्वरोजगार कर सके अपन हुनर के अनुसार। एकर में देखा कि तुहरा प्रशिक्षण भी मिल जितो, पूंजी भी मिल जितो, तुहरा जो है जगह भी मिल जितो, ओकर बाद बिक्री कर खातिर तुहरा बाजार भी मिल जितो। तो कहीं ना कहीं देखा हम इनके किसान भाई बहन के ऐसे रोजगार के करे के चाहिए, स्वरोजगार अपनावे के चाहिए ताकि हम इनके बाजार के भी व्यवस्था बेहतर से मिल जा सको,
1: मिल जा सको है। और फिर देखा कि बाजार में एकर मांग के भी तो कमी ना है उमेश भाई। अभी देखा कि जे मधु जे है ओकर मांग अभी जो है से बाजार में बहुत बढ़िया है,
0: बढ़िया
1: और हमेशा एकर मांग रो है। जैसे कि आदमी बहुत अपन शरीर के लिए भी खाते हैं और कहा कि बहुत कोई के जो है से चिकित्सक के द्वारा भी बतावल जा है कि है जो मधु जो है से खाए है और फिर देखा कि पूजा पोस्टा में भी एक बढ़िया उपाय हुआ थी
0: बिल्कुल
1: काम लगु है।
0: तो देखा कहीं ना कहीं देखा कि मधु पालन करे से जो है इनके किसान भाई बहन के मुनाफा है और एकर जो है से बिक्री भी बेस्ट तरीके से हुआ है और एकर में देखवा ना कि जो है हम इनके

0: अगर मधुमक्खी पालन के साथ साथ खेती बाड़ी, यानी खेती बाड़ी और मधुमक्खी पालन एक दूसरे के जो है पूरक हो, और एकरा हम इनके करे के चाहिए और अधिक से अधिक मुनाफा भी हम इनके जो है कमाए के चाहिए, ताकि जो है से हम यही जो तुहर पूंजी बन गेलो और एकरा फिर से तू खेती बाड़ी में लगा दा, तो कहीं न कहीं देखा हम इनके एक साथ साथ जो है से दो गो काम करे के चाहिए, जेकर से जो है खेती बाड़ी में भी आमदनी हो जाए और अपन रोजगार जो तू कर ले है ओकरो से आमदनी
1: हो जाए। तो देखा उमेश भाई, यह जानकारी के साथ अब हम ये कार्यक्रम किसान वाणी से भी जाए के समय हो गया है।
0: हाँ।
1: तो कार्यक्रम किसान वाणी से हमारा श्याम के
0: और उमेश के दानुमति जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं कल्याण विभाग। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित हमारा अगला कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेतीबारी सुन रहे आप तमाम ग्रामीण भाइयों बहनों को उमेश का प्यार भरा नमस्कार, साथ ही जोहार। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ फिर से बने हैं एक बार श्याम जी। तो श्याम जी आपको भी नमस्कार जोहार।
1: जोहार जोहार उमेश जी, और कार्यक्रम सुन रहे तमाम श्रोताओं को जोहार, प्रणाम और नमस्कार।
0: और आज कार्यक्रम में बने हैं फिर से और बात करेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है एवं इसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो हमारे ग्रामीण भाई जो हैं कई तरह की ऐसी योजनाओं का लाभ लेते हैं और उनके लिए बहुत ऐसी योजनाएं हैं, फसल बीमा योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो है योजना, जो उसके बाद है ये लघु सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई योजना, बागवानी मिशन योजना, कई तरह की ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे किसानों को उनकी जानकारी रखनी चाहिए और इसका लाभ समय समय पर उठाना चाहिए। इसी बीच में मृदा स्वास्थ्य कार्ड है जो हमारे किसान खेती बाड़ी करते हैं तो उनकी जो मिट्टी धीरे धीरे जो है दिनों दिन बंजर होती जाती है या फिर उपजाऊ कम हो जाती है, या फिर एक ही फसल को बार बार लगाने से जो है इसका भी पैदावार जो है फसल का कम होता जाता है। तो इससे बचाने के लिए जो है हम मिट्टी जांच कराते हैं।
1: जी जी।
0: और अपना जो मिट्टी जांच कराने के लिए जो है हमारे किसान भाइयों को साल में दो बार मिट्टी जांच कराना ही चाहिए और इसके लिए जो है हमारे किसान भाइयों को कई ऐसे जो है जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में भी जांच होती है, समय पर आप करा सकते हैं, संपर्क करें। अपने आत्मा के तहत तरफ से भी जो है मिट्टी जांच कराई जाती है। कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण भाइयों को संपर्क करके आप जो है अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं और मिट्टी जांच कराने के बाद आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।
1: जी। और याद रहे उमेश जी कि मिट्टी जांच जो है सो हर 3 साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए। और हम लोग तो जैसे बहुत किसान भाई बहन सब कम जानते हैं कि मिट्टी में जो है सो 12 महत्वपूर्ण उसमें मानक होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद फास्फोरस है, पोटेशियम है, कार्बनिक है, कार्बन है, तो इस तरह से बहुत पौष्टिक ओकरा में पोषक तत्व
0: पाए जाते हैं। पोषक तत्व जो है जिस तरह से हम अपने शरीर के लिए जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट, तो प्रोटीन आदि खाते हैं, उसी तरह से हमारे मिट्टी को भी जो है इन पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और जब हम मिट्टी जांच कराते हैं तो ये पता चलता है कि इस मिट्टी में क्या चीज का कमी है या क्या जो है हमको मिट्टी में डालने की जरूरत है ताकि हमारा मिट्टी का जो पोषक तत्व है वो बरकरार रहे।
1: और देखिए मिट्टी की जांच कराने से फायदा क्या होता है उमेश जी, की मिट्टी के उर्वरता और संरक्षा में जो है हमेशा के लिए सुधार हो जाता है उसमें, और फसल के पैदावार में भी जो है सो वृद्धि हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और पोषक तत्वों की मात्रा जो है सो हमको पता चल जाता है कि कौन सी पोषक तत्व हमारी मिट्टी में अधिक है या तो फिर कम है।
0: बिल्कुल।
1: और फिर जल अवशोषण का जो धारण है उसका क्षमता में जो है वो भी वृद्धि हो जाता है। और खेती के लागत, जैसे कि हम लोग जिस समय खेती करते हैं तो उसमें जो लागत हम लोग लगता है वो लागत में भी जो समय को कम हो जाता है। काहे कि कम लागत में पैदा ज्यादा हो जाता है अगर मिट्टी हमारी स्वस्थ रहती है तो।
0: बिल्कुल।
1: तो हम लोग को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि 3 साल में एक बार जरूर हम लोग जो है मिट्टी की जांच कराएं। कहे कि देखिए कि हम लोग जब भी खेती करना शुरू करते हैं उमेश जी तो उसमें लागत जो है काफी हम लोग लगा देते हैं, मगर जब अगर हम लोग जुड़ने लगते हैं कि हमको जल लागत कितना लगा और उसमें मुनाफा कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे बहुत किसान भाई बंधु सब जो है माइनस में चले जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो देखिए बोला तो गया है कि खेती एक जुआ है, मगर आप अगर मन से कीजिएगा, उसमें अगर सारा सिस्टम से अगर कीजिएगा तो देखिए खेती में आपका कहीं भी लॉस नहीं, उसमें आपको
0: फायदे अनेक हैं।
1: देखिए जैसे कि आप कोशिश करें कि फसल चक्र सबसे पहले अपनाएं, आप हर मौसम का जो है सो खेती का मजा लें, ना कि आप खाली बरसाती की खेती कर रहे हैं या तो फिर खाली जो है सो रबी का फसल कर रहे हैं या तो फिर खाली जायद का फसल कर रहे हैं।
0: आपका कहने का मतलब है कि हमारे ग्रामीण भाई बहन जो है फसल चक्र को अपनाए और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है इसका लाभ लें और इसका फायदा जो है सो कैसे उठाएंगे। तो इस तरह से जो है कई ऐसी जो है उनके लिए किसान भाइयों के लिए कि कि हम माटी जांच कराने से मृदा स्वास्थ्य कार्ड को प्राप्त कर लेने के बाद जो है हमारा ये समझ में आएगा कि हमारे मिट्टी में जो है किस तरह का पोषक तत्व है, क्या कमी है, क्या नहीं है।
1: जी जी।
0: दूसरी बात है कि आपने कहा कि फसल चक्र, एक ही फसल को लगा लगा के जो है हम पैदावार को कम कर लेते हैं।
1: जी जी।
0: तो ये जो भी समझ में आ जाएगा कि हम जो है कौन सा फसल को लगाएं ताकि हमारा मिट्टी का पोषक तत्व बना रहे, जैसे चना लगाते हैं, मटर लगाते हैं, या फिर जो है सरसों लगाते हैं, राय लगाते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी।
0: जैसे फसल चक्र का, जैसे हम कह सकते हैं कि एक फसल के बाद दूसरा फसल, दूसरा फसल के बाद तीसरा फसल।
1: जी जी जी। अब देखिए जैसे कि वो लगाने से, जैसे आप बताएं कि चना, जैसे दलहनी कोई भी फसल होता है उमेश जी, तो वो जमीन में नाइट्रोजन छोड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: ये और नाइट्रोजन से क्या होता है ना कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो से बढ़ती है। तो फसल चक्र लगाने से यही फायदा है कि जैसे कि अभी गर्मी के दिन में है, तो गर्मी के दिन में हम जितना भी गर्मा फसल है, या भिंडी हो, या करेला हो, या नेनुआ हो, या फिर बूंदी हो, मैं जितना भी फसल है हल्का हल्का, वो फसल का भी हम लोग को जो है मजा लेना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो श्याम जी और भी बात करेंगे, कार्यक्रम में बने हैं, तो आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: जी हाँ।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन

0: योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ तो उमेश जी देखिए हम लोग अभी जरूरी संदेश भी सुने, अब आगे हम लोग बातें करते हैं। उमेश जी देखिए कोई भी अगर हम लोग घर में अगर हैं तो कोई भी काम करना हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है ताकि हम लोग बैठ के बिना मतलब का समय नहीं काटे। और घर में देखिए आजकल क्या है कि महिलाएं भी बहुत ही आगे बढ़ रही है, उन लोग भी चाहती है कि कुछ न कुछ हमेशा हम लोग का काम मिलता रहे ताकि हम लोग कभी जो अपना खर्च जो है सो निकलते रहे।
4: बिल्कुल सही कहा आपने श्याम जी, और हमारे जो है हमारे किसान भाइयों के साथ साथ जो है महिला बहनें भी जो है साथ में खेती बाड़ी करते हैं, साथ साथ जो है स्वरोजगार करके अपना जो है अलग से आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं अपना जो है। दूसरी बात है कि स्वरोजगार के कई ऐसे जो है साधन भी है उनके साथ, जैसे महिला समूह की बात करें, महिला समूह के माध्यम से उनको अगरबत्ती मिक्सर बनाने का या चूड़ी बनाने का या फिर साबुन सर्फ बनाने का कई तरह के ऐसे रोजगार भी जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है स्वरोजगार करने के लिए।
3: जी हाँ, तो देखिए इसी पे हम लोग जानकारी भी लेकर आए हैं उमेश जी की हम लोग कैसे स्वरोजगार करें महिला समूह के द्वारा। और तो इसका जो भेंटवार्ताकार जो है वो है चंचला देवी और हम लोग तरफ से जो बातचीत करें वो है उमेश रजक।
4: तो आइए सुनते हैं भेंटवार्ता।
3: जी हाँ
4: श्रोताओं, आज हम आए हुए हैं बलियंद गांव जो कटकम सांडी हजारीबाग जिला के अंतर्गत आता है और यहाँ एक महिला समूह चलाती हैं, महिला स्वयं सहायता समूह। तो हम इन्हीं से जानते हैं, ये महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा हैं और हम इन्हीं से जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह आज महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कितना मददगार साबित हो रही है और इन्हीं से जानते हैं इनके अनुभव और कैसे ये संचालन करती हैं, अध्यक्षा हैं और सारे कार्यभार इन्हीं के अंतर्गत में है। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम?
5: चंचला कुमारी नाम।
4: अच्छा आप चंचला कुमारी जी, आप का पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ?
5: इंटर तक हुआ।
4: अच्छा इंटर करने के बाद आप आगे क्यों नहीं पढ़ पाए?
5: नहीं मम्मी पापा नहीं पढ़ाना चाहे, बड़ा हो गया शादी हो गया।
4: अच्छा और उसके बाद शादी हो जाने के बाद आप अपने ससुराल आ गए और यहाँ फिर जो है आप अपना जो स्वरोजगार का कार्य है वो करना शुरू किए। तो आप बता रहे थे कि महिला समूह के बारे में, तो इसके बारे में शुरुआत में आपको क्या क्या परेशानी आता है बताएंगे?
5: शुरुआत में तो सदस्य लोग जुड़ना नहीं चाहती है, उसके बाद धीरे धीरे करके जुड़ती है। हम लोग 12 सदस्य है, 12 सदस्य में हम लोग सप्ताह में 20 रूपए जमा करते हैं, उसमें हम अध्यक्ष है बुक कीपर भी है। 20 रूपए करते करते थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहे, उसमें अच्छा। बैंक से लोन लिए, 1.5 लाख रूपया मिला।
4: अच्छा तो हम एक चीज जानना चाहेंगे कि जो आप बता रहे हैं कि बुक कीपर है, तो क्या काम होता है बुक कीपर का?
5: रजिस्टर मेंटेनेंस करना।
4: अच्छा तो कितना रजिस्टर होता है?
5: 7 रजिस्टर होते हैं।
4: अच्छा 7 रजिस्टर को आप जो है सो मेंटेन करते हैं।
5: हाँ।
4: और ये जो 20 रूपया साप्ताहिक जमा करते हैं या मासिक?
5: साप्ताहिक जमा करते हैं।
4: अच्छा साप्ताहिक जमा करते हैं। उसके बाद जो है जो कुछ महिला है जो जमा नहीं कर पाती हैं, उनके लिए क्या नियम बनाए?
5: उसके लिए फाइन लगाते हैं 10 रूपए, जो नहीं देगी उसको फाइन 20 के जगह फिर 10 रूपए और देना पड़ेगा।
4: तो क्या नाम है आपका महिला स्वयं सहायता समूह का?
5: ज्योति आजीविका सखी मंडल।
4: अच्छा तो ये जो ज्योति आजीविका सखी मंडल जो आपका जो समूह चल रही है, तो क्या ये किसी संस्था से जुड़ा हुआ है?
5: JSLPS।
4: अच्छा JSLPS से आपका जुड़ा हुआ है, तो समय समय पर आप लोगों को और भी जो है सो JSLPS के तहत से कुछ सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं, लाभ दिया जाता है, क्या क्या लाभ मिलता है?
5: हम लोग तो ग्रुप से भी ग्राम संगठन जुड़ा है, 600 ऊपर सदस्य समूह रहेगा।
4: अच्छा।
5: तो एक ग्राम संगठन बनता है, उसमें हम लोग बचत करते 50 रूपए ग्रुप से।
4: अच्छा।
5: उसमें से ऋण भी लेते हैं हम लोग।
4: तो ये ऋण कहाँ से मिलता है?
5: ये ब्लॉक से मिलता है।
4: अच्छा ब्लॉक से आपको मिलता है। तो जैसे स्वरोजगार करने के लिए भी जो आप लोगों को ऋण दिया जाता है, तो क्या आपका जो है अभी तक ऋण मिला है?
5: हाँ मिला है।

0: अच्छा, कितना मिला था?
1: हम लोग जब जरूरत पड़ता है कोई चीज के, मतलब गाय खेती बाड़ी के लिए ले सकते हैं।
0: तो ये आपका समूह कितने साल से चल रहा है?
1: हो गया 7-8 साल।
0: अच्छा, 7-8 साल से आपका समूह चल रहा है और नियमित रूप से जो है बढ़िया से संचालन कर पा
1: हाँ,
0: रही हैं आप लोग।
1: चल
0: तो
1: रहा
0: अभी आप बता रहे थे कि 1.5 लाख रुपए ऋण लिए हैं, तो उस,
1: बैंक
0: अच्छा,
1: से लिए हैं।
0: बैंक से लिए थे,
1: हाँ,
0: तो उस राशि का क्या किया आप लोग, किस तरह से जो है रोजगार में लगाए?
1: सब अपने मतलब 2-4 सदस्य मिल करके लिए हैं, तो लोग अपना अपना किए हैं। कोई खेती किए, कोई बकरी पालन किए, कोई गाय पालन किए,
0: अच्छा,
1: इस तरह से हुआ है।
0: हाँ,
1: तो
0: यानी कि जो है आपका वहां से ऋण लेने के बाद आप गाय पालन भी कर सकते हैं, बकरी पालन भी कर सकते हैं और जो है खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, उसके लिए जो है मिलता है। तो समय समय पर जो है आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और कैसे विकास करें, अपना घर परिवार को सही तरह से जो है आगे बढ़ाएं, उसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है आप लोगों को।
1: हाँ, दिया जाता है ग्राम संगठन में। हम लोग को महीना में 2 बार बैठक होता है, तो एक बार जो बचत होता है, एक EC1 बैठक है, EC2 बैठक होता है। तो EC1 में चर्चा होता है,
0: हाँ।
1: EC2 में बैठक होता है, मतलब बचत जमा होता है, कोई ऋण लेती है तो ऋण जमा होता है।
0: अच्छा, ये जो चर्चा होता है जो बता रहे हैं आप पहले बैठक में, तो किस विषय पर चर्चा करते हैं आप लोग, कौन कौन सा मुद्दा को आप लोग लेते हैं?
1: किसी को ऋण लेना रहता है तो उस दिन बैठक में बोल सकती है कि हमको ऋण चाहिए। और किसी किसी की समस्या, किसी घर का लड़ाई झगड़ा से कुछ भी समस्या वहाँ बता सकती है, उसके
0: अच्छा।
1: लिए भी आगे होता है कार्यवाही।
0: यानी कि जो है ग्रामीण समूह में किसी भी समस्या को समाधान के लिए जो है आप लोगों का बैठक होता है, और कोई समस्या आ जाए, किसी तरह का ऋण लेना हो, तो किन्हीं की बेटी की शादी है या कोई बीमार है, उसके लिए भी ऋण आप लोग देते हैं,
1: का बढ़ाने के लिए देते
0: मतलब रोजगार करने के लिए आप लोग देते
1: हैं।
0: हैं। एक बात और हम जानना चाहेंगे कि JSLPS के तहत जो है अगरबत्ती, मिक्सचर वगैरह बनाने के लिए, साबुन बनाने के
1: उसके
0: लिए
1: लिए
0: कई तरह का ट्रेनिंग भी दिया जाता है, क्या आप लोगों को दिया
1: ट्रेनिंग,
0: जाता है?
1: हाँ, हम लोग भी ट्रेनिंग लिए हैं उसमें, सर्फ साबुन के लिए।
0: अच्छा।
1: हाँ, उसमें 10 दिन का प्रशिक्षण हुआ था सर्फ साबुन बनाने के, तो हम लोग लिए थे 10 दिन।
0: अच्छा, तो उसमें जो है प्रशिक्षण में आपको सारा चीज बताया जाता है।
1: हाँ, सारा चीज बताया जाता है उसमें।
0: अच्छा, तो आप जब ट्रेनिंग लिए उसके बाद जो है क्या आप आगे अपना फिर जो है घर में बनाने के लिए शुरुआत की है?
1: हाँ, घर में बनाए अपना यूज के लिए।
0: अच्छा, यानी कि अपना जो घर में उपयोग के लिए बनाए, उसको बिक्री के लिए नहीं बनाए।
1: नहीं, नहीं बनाए।
0: अच्छा, क्या आप विचार कर रहे हैं आप लोग कि आप अपने महिला समूह में मिलजुल करके बना के और आगे बिक्री करेंगे? अच्छा।
1: और सदस्य है, और ग्रुप है, उसमें भी चूड़ी उड़ी बनाई है, वो लोग भी बेच रही है।
0: यानी कि जो है चूड़ी वगैरह भी बना के जो है आप बिक्री कर सकते हैं।
1: हाँ,
0: तो जो महिलाएं आपकी बात को सुन रही हैं, जो आपके समूह से जुड़ना चाहेंगे, वो भी जो है काफी कुछ महिलाएं हैं जो पीछे रह जाती हैं, उनको जानकारी का अभाव होता है, उनको आप कैसे जानकारी देंगे किस तरह की महिला समूह में जुड़े काफी फायदेमंद है?
1: उसके लिए हम लोग बैठक करेंगे। बैठक करके दीदी लोग को बताएंगे कि हाँ, ऐसे बैठक कीजिए,
0: अच्छा।
1: आगे बढ़ने के लिए बचत करना चाहिए, बचत
0: अच्छा,
1: करके ही तो कुछ होगा।
0: जैसे आप इस महिला समूह में आप अध्यक्षा हैं, और जो है कितने लोग होते हैं पदाधिकारी? जैसे 12 सदस्य का आपका एक समूह होता है, उसमें आप अध्यक्ष भी हैं, सचिव भी होते हैं।
1: अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और एक बुक कीपर।
0: अच्छा, बुक कीपर, यानी 4 पदाधिकारी होते
1: हाँ,
0: हैं। तो कैसे चुनाव करते हैं आप लोग महिला समूह में?
1: चुनाव करते हैं, जो जिसको इच्छा होता है वो बनती
0: अच्छा, तो आपस में चुनाव करने के बाद आप लोग जो है उसका ये करते हैं, बनाते हैं।
1: हाँ,
0: तो जैसे अभी आप बता रहे हैं कि
1: पढ़ी लिखी जो रहती है उसी को चुनते हैं, जिसको जानकारी होता है।
0: अच्छा, जो हिसाब किताब बढ़िया से रख
1: हाँ,
0: सके। कोषाध्यक्ष का क्या कार्य होता है?
1: उसको सिर्फ पैसा वैसा का हिसाब रखना है,
0: अच्छा, और सचिव का?
1: सचिव का देखभाल करना है।
0: अच्छा, देखभाल करना है। और
1: हाँ,
0: आप लोग जैसे साप्ताहिक बैठक रखते हैं बता रहे हैं, तो उनका संचालन कौन करते हैं?
1: बुक कीपर करती है,
0: अच्छा, बुक कीपर करते हैं।
1: कोषाध्यक्ष रखेगी
0: अच्छा।
1: जो पैसा वगैरह बक्सा उक्सा जो होता है, वो कोषाध्यक्ष रखती है।
0: अच्छा, एक बात और सुनने को मिलता है कि जैसे चाबी, बक्सा या जो भी हिसाब किताब होता है एक के पास रहता है, तो हेर फेर भी करते हैं,
1: हाँ, फिर भी
0: इसीलिए
1: अलग
0: क्या वो
1: अलग,
0: अदला बदली भी करते हैं आप?
1: हाँ, सप्ताह सप्ताह में किसी को अगला सप्ताह दूसरा को दे देंगे।

0: फिर बैठक होगा तो दूसरा को देंगे, इस तरह करके रखते हैं, हर सदस्य को मिलना चाहिए।
1: अच्छा, एक बात और होता है कि जैसे गांव का विकास करने के लिए सभी महिलाएं मिल के जो है गांव का विकास कैसे करें, इन बातों का भी आप लोग जो है सो चर्चा करती हैं
0: हाँ
1: बैठक में,
0: करते हैं,
1: है इन
0: सब चीज
1: बातों
0: का
1: का?
0: बात होता है और सब लिखाता भी है रजिस्टर में,
1: अच्छा
0: किसी कह रहे पानी का कमी है या ये रोड उड का थी दिक्कत है, ये सब भी बात होता है।
1: यानी कि जो है महिला समूह के माध्यम से आप ग्राम विकास की बातें कर सकती हैं, और आगे कैसे बढ़ें, कैसे रोजगार करें, कैसे जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, इन बातों पर आप लोग जो है चर्चा करते हैं। तो जैसे आप प्रशिक्षण किए 10 दिन का, आपने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त किए, साबुन वगैरह बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किए, तो आप और महिलाओं को भी जो है भेजते हैं प्रशिक्षण में, उनको कैसे,
0: हाँ
1: क्या खर्च वगैरह आता है?
0: कुछ नहीं, बस वहाँ रहना खाना फ्री है,
1: अच्छा
0: आना जाना का भाड़ा मिलता है।
1: यानी कि जो है प्रशिक्षण का सारा खर्च निशुल्क होता है, आने जाने का भी भाड़ा दिया जाता है। तो अधिक से अधिक महिलाएं आपकी बात को सुनकर जुड़ेंगी और जो है अपना स्वरोजगार शुरू करेंगे, और महिला समूह से काफी फायदा है।
0: सब चीज का ट्रेनिंग होता है, अभी भी ट्रेनिंग चल रहा है खेती बारी का, कैसे वहाँ पे बताता है।
1: अच्छा, तो अभी जैसे अब खेती बाड़ी का समय आ रहा है तो खेती बाड़ी के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण दिया जाता है?
0: हाँ अभी अभी चालू है वहाँ ट्रेनिंग,
1: अच्छा, कहाँ पे ट्रेनिंग होता है?
0: आर सिटी में होता है, हजारीबाग।
1: अच्छा, हजारीबाग RCT में, जैसे JLPS का ऑफिस है वहाँ पे
0: हाँ
1: प्रशिक्षण होता है।
0: हाँ
1: अच्छा, तो जैसे कुछ महिलाएं जाना चाहती हैं, आपके समूह में नहीं जुड़ी हुई है
0: बिना
1: कुछ,
0: समूह को नहीं जा सकते
1: अच्छा बिना समूह में जुड़े नहीं जा सकते हैं,
0: नहीं।
1: तो फिर और जैसे नया महिला आपके समूह में जुड़ना चाहे तो उनको कैसे जोड़ेंगे?
0: तो उसको फिर ग्रुप बनाना पड़ेगा,
1: अच्छा
0: 12 सदस्य, फिर उसको एकजुट करके बनना बनेगा।
1: अच्छा, यानी कि 12 महिलाओं को जोड़ करके एक और समूह बनाया जाएगा नया, उसके बाद आप प्रशिक्षण में भेजेंगे। तो जैसे जो महिलाएं सुन रही हैं आपकी बात को कि हम जो है महिला समूह में नहीं जुड़े हैं या उनका जानकारी का अभाव है, तो उनको आप कैसे प्रेरित करेंगे, कैसे समझाएंगे कि महिला समूह के माध्यम से सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है?
0: उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, वो लोग को बैठा करके बताएंगे,
1: अच्छा
0: वो लोग को जानकारी देंगे तो खुद ही वो लोग बोलेंगे कि हाँ जाएंगे, हमको भी ट्रेनिंग लेना है।
1: अच्छा, तो आप एक महिला हैं और आप जो समूह की जो है अध्यक्षा हैं, और आपकी बात को सुन रहे हैं महिलाएं, और जैसे महिलाओं को और आगे बढ़ाया जाए, कैसे वो जो है अपने घर परिवार को रखें, कैसे साफ सफाई पे ध्यान दें, कैसे अपने बच्चों को समय पर स्कूल भेजें, ताकि बीमारी से भी अपने बच्चों को दूर रखें, अपने परिवार को दूर रखें, आर्थिक स्थिति को तो मजबूत करना ही है, इन बातों को कैसे महिलाएं जो है ध्यान रखें?
0: ध्यान देगी, मतलब बच्चा लोग को नहाना धोवाना, ये हर रोज का वो लोग साफ सफाई देखभाल करेगी, स्कूल भेजेगी।
1: हम आशा करेंगे कि आपकी बात को सुनकर ग्रामीण महिलाएं लाभ उठाएंगे, और आज महिला स्वयं सहायता समूह का क्या जरूरत है इस पर जो है वो अमल करेंगे, और महिला समूह से जुड़कर अधिक से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे, रोजगार शुरू करेंगे। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतना बढ़िया जानकारी दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: हाँ, तो देखिए उमेश जी, अभी हम लोग सुन रहे थे कि महिला समूह से कैसे करेंगे हम लोग स्वरोजगार,
3: बिल्कुल,
2: और हम लोग से जो बातचीत कर रहे थे वो थे उमेश रजक, और जो इनके बारे में जानकारी दे रहे थे वो थे चंचला देवी।
1: तो कितना बढ़िया बात बताए कि जो है अपने हुनर के हिसाब से अगर आप जो है स्वरोजगार करते हैं।
2: जी
1: इन्होंने कहा कि चूड़ी भी बनाकर आप बिक्री कर सकते हैं, साबुन सरफ, मतलब कहिए तो ये जो है एक गांव से निकल के जो है आप अपना बेहतर ढंग से जो है और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं।
2: जी हाँ, देखिए जैसे कि कहने का मतलब है उमेश जी कि मन में अगर लगन हो,
1: बिल्कुल,
2: आपके करने का कुछ क्षमता हो,
1: हाँ
2: कुछ करने का अगर मैंने आपके कोशिश में है तो
1: बिल्कुल
2: आप कर बैठिएगा। तो चलिए आज चलते चलते हम लोग एक और चर्चा करते हैं उमेश जी
1: हाँ।
2: की, समसामयिक चर्चा।
1: बिल्कुल,
2: तो समसामयिक देखिए, अगर कोई भी काम हम लोग अगर समय से करते हैं
1: समय से करते
2: तो
1: हैं,
2: वो काम जो है हमेशा सफल होता है।
1: बिल्कुल। आप देखिए ना, अभी जो है गर्मी का मौसम चल रहा है,
2: जी
1: हमारे बहुत किसान भाई बहन हैं जो अब जो है धान का बिचड़ा लगाएंगे,
2: जी
1: तो
2: जी
1: बहुत किसान भाई बहन क्या है कि अपने अपने खेत में गोबर फेंक रहे हैं।
2: जी जी
1: बहुत किसान भाई बहन क्या है कि अभी जो गर्मी में जो फसल फसल लगाए, साग सब्जी लगाए हैं,
2: जी, जी।
1: बहुत गर्मा मकई लगाए हुए हैं, बहुत है कि भिंडी कद्दू कोहड़ा लगाए हैं, तो उसका भी जो है देखिएगा कि आप पानी पटा रहे हैं ना दो दिन तीन दिन पर, तो देखिएगा घास का बढ़वार
2: बहुत हो जाता है जी।
1: तो कहीं ना कहीं जो है हम खरपतवार को निकाले, घास को निकाले, अब जो है बरसात का मौसम आने वाला है तो उसका भी जो है खेत क्यारी देखिएगा, किसान भाई बहन कहीं कहीं जोताई भी कर रहे हैं
2: जी। देखिए उमेश जी, जैसे कि आप खेत को जितना भी जोतिएगा ना, तो देखिएगा कि बरसात का जब पानी ऊपर से गिरता है तो उसमें घास निकलता ही है, मगर हाँ। वो घास से देखिए किसान भाई बहनों को धान खेत के लिए बता रहे हैं, वो घास से फायदा है
1: हाँ।
2: तो फायदा क्या है ना, वो घास एक हरित खाद के रूप में तैयार हो जाता है, बशर्ते हमको करना क्या है कि धान रोपाई से 10 दिन पहले उस खेत को बढ़िया तरह से जोता करके उसमें पानी बांध करके और रख देना है।
1: बिल्कुल, तो श्याम जी कार्यक्रम में तो हम लोग और भी चर्चा करते, समय का अभाव है, तो आज का कार्यक्रम खेती बाड़ी से अब जाने का भी समय हो चुका है
2: जी जी।
1: तो इसी कार्यक्रम के साथ मुझे उमेश को
2: और मुझे श्याम को
1: अनुमति दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बारी। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से, तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जामताड़ा के उपायुक्त आलोक कुमार ने आज नारायणपुर प्रखंड अंचल कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने विकास और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी विभिन्न पंजीयों की बारीकी से जांच की। इसके बाद उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। लोहरदगा में सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची जारी कर दी गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत इन मतदाताओं के लिए मैपिंग का विशेष शिविर लगाया गया है। उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद दास और अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार सहित कई अधिकारियों ने विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। हजारीबाग के समाहरणालय परिसर में आज जिला प्रशासन द्वारा कुल 24 दिव्यांगजनों के बीच बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। उपायुक्त हेमंत सत्ती के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त रिया सिंह ने लाभुकों को गाड़ियां सौंपी। कोडरमा के एनसीसी कैडेट्स में से आकाश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश की 17,500 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने देश के 20 लाख कैडेट में से चुने गए केवल 8 कैडेटों में शामिल होकर

0: झारखंड का मान बढ़ाया। धनबाद में आगामी 5 से 7 जून तक 13वीं झारखंड राज्य सीनियर महिला एवं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड राज्य कबड्डी संघ के महासचिव संजय कुमार झा ने बताया कि इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य भर से करीब 40 से 45 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें से अब तक 19 टीमों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। राज्य के 8 जिलों में कल गर्जन के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है श्रमिक भाई बहनों को संबोधित हमारा अगला कार्यक्रम मेहनतकश।

कार्यक्रम मेहनतकश सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार करें श्वेता का सप्रेम नमस्कार जोहार। श्रोताओं, इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है, सभी जीव जंतु और इंसान त्रस्त हैं। गर्मी आने वाले कुछ दिनों में और अधिक बढ़ने वाली है। श्रोताओं, यूं तो सभी मौसम में हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना जरूरी होता है, पर बात अभी गर्मियों के मौसम की करें तो गर्मियों में लू लगना एक आम समस्या होती है। लू न सिर्फ घर से बाहर तेज धूप में निकलने से लगती है, बल्कि घर के अंदर भी कई बार लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए भरपूर पानी पिएं, मौसमी फल सब्जी जरूर खाएं, आम पन्ना बेल के शरबत, दही खीरा ककड़ी प्याज सफेद वाले प्याज, और जो अपना देशी खान पान है हमारे झारखंड का, ओडिशा का, बिहार का, बासी भात, तो बासी भात में जो फर्मेंटेड फर्मेंट हो जाता है बासी भात, तो उससे भी जो है हमारे शरीर को ठंडक मिलती है और जिससे जो शरीर का तापमान है हमारा वो सामान्य बना रहता है और हमें लू लगने की संभावना कम हो जाती है। तो बासी भात में आप अलसी के बीजों का पाउडर बना करके उसके साथ खा सकते हैं या फिर दही डाल करके खा सकते हैं, तो इससे और भी ज्यादा शरीर कि तापमान जो है वो संतुलित रहती है। साथ ही गुड़ का शरबत आप जरूर पिएं। तो ये जो हमारे देसी जुगाड़ है ये भी बहुत ज्यादा काम करते हैं गर्मियों के मौसम में, तो इन सब से आप जरूर अपने इन सबको अपने खान पान में शामिल करें। लू लगने पर घर पर प्राथमिक उपचार के साथ ही डॉक्टर के पास समय रहते जरूर जाएं। सही समय पर इलाज बहुत जरूरी है, वरना लू भी कभी कभी जानलेवा होती है। इसके साथ ही घर से बाहर कामकाज करने वाले लोगों को कुछ और सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, जैसे कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो भरपेट भोजन करके ही निकलें। साथ में पानी का बोतल आप जरूर रखें, छतरी मोटा तौलिया गीला करके सिर को जरूर ढक लें, और इसके साथ ही फुल स्लीव के जो कपड़े होते हैं, मतलब फुल बाजू के कपड़े

0: चल रहा है तो सिर्फ खुद का ही ध्यान नहीं रखना है श्रोताओं, साथ ही हम अपने अपने साथ साथ अन्य जीव जंतुओं का भी ध्यान जरूर रखें। जैसे सड़कों पर जो जानवर टहल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उन्हें ऐसे तो घर से बाहर जिनके भी पशु हैं, जो पशुपालक होते हैं, उन्हें अपने घरों से बहुत ज्यादा तेज धूप में जानवरों को नहीं निकाल देना चाहिए। आप घर पे ही उन्हें रखें और जब धूप कम हो जाए तो उन्हें घर से बाहर निकालें या फिर सुबह के समय निकालें तो फिर दोपहर के टाइम उन्हें वापस घर भी ले आएं। साथ ही जो जानवर घूम रहे होते हैं सड़कों पर, उनके लिए आप घर के बाहर हरे चारे रख सकते हैं और पानी भरपूर मात्रा में रख दें ताकि जब भी जानवरों को प्यास लगे तो वो अपनी प्यास बुझा सकें। इसके साथ ही जो पशु पक्षी होते हैं, पक्षी होते हैं, पक्षियों के लिए भी कुछ तो देख रहे हैं कि कुछ स्वयंसेवी संस्था वाले हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे अच्छे इंसान हैं जो उनका भी ख्याल रखते हैं, तो उनके लिए भी आप जरूर खाना रखें अपने छतों पर और पेड़ पौधों पर भी आप मटकी टांग दें, पानी से भरा हुआ मटकी, तो उससे भी वो प्यास बुझा सकते हैं अपने और वो भी जीवित रह सकते हैं। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि प्यास की वजह से तड़प तड़प करके पक्षियों की मौत हो जाती है, जंगली पशुओं की मौत हो जाती है, तो इससे क्या है कि पर्यावरण बहुत ज्यादा हमारा असंतुलित भी हो जाता है। तो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए हमें पेड़ पौधे तो लगाने ही चाहिए, साथ ही पशु पक्षियों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने से हम याद आया आपको ये भी बताते चले श्रोताओं कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो गर्मियों के मौसम में जो मौसमी फल होते हैं जैसे लीची है, आम है, इस तरह के जो फल हैं उन्हें आप खाएं जरूर भरपूर मात्रा में, साथ ही उनके बीजों को आप जरूर संजो करके रखें, धूप में अच्छी तरह से सुखा करके साफ करके रखें, और जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है आप उन बीजों को जंगली एरिया में जाकर के या फिर कुछ ऐसे जगहों में, ऐसी जमीनों पर जाकर के लगाएं जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, बंजर जमीन है, वहां पे आप उन बीजों को जाकर के लगा दें तो वे बीज भी उगेंगे और पेड़ बनेंगे, जिससे पर्यावरण की आप सेवा कर सकते हैं और सेवा ही तो हमारा मानव धर्म कहलाता है। तो ये इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें श्रोताओं और कोशिश करें कि पर्यावरण के संतुलन में अपना योगदान दें। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो ऐसे में पानी के महत्व को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो बेवजह के पानी को बर्बाद ना करें, जितनी जरूरत है उतना ही पानी आप उपयोग में लाएं और कोशिश करें कि कुछ कुछ जो पानी होते हैं जैसे कि सब्जी धोने का, सब्जी या चावल दाल हम जो धोते हैं उसके जो वेस्ट पानी निकलते हैं उस पानी का भी रीयूज किया जा सकता है। जैसे कि आप घर के बाहर गमलों में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं तो उन पेड़ पौधों में वो पानी डाल दें तो उसका रीयूज हो जाता है, साथ ही पेड़ पौधों को भी पोषण अच्छी तरह से मिल पाता है, क्योंकि सब्जियों को धोने के बाद जो उसमें आवश्यक मिनरल्स निकल जाते हैं या दालों को धोने के बाद जो प्रोटीन्स निकल जाते हैं पानी में, वो पेड़ पौधों के काम आ सकते हैं। तो इस तरह से इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखें, छोटी छोटी बातें ही बहुत कारगर होती हैं और इस तरह की जो बातें हैं उसे ध्यान में रख करके हम एक अच्छे इंसान का फर्ज जो है वो निभा सकते हैं और पर्यावरण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो बातें ये और भी करेंगे, कुछ जरूरी बातें ये तो हो गई गर्मियों के मौसम में, कुछ आवश्यक सावधानियां और जरूरी बातों की बारे में बातें, और अब आपको इंतजार होगा एक गीत का भी, तो हम बिना देर किए आपके इंतजार को करते हैं खत्म, कुछ जरूरी संदेशों के साथ आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: इन जरूरी संदेशों के बाद आइए सुनते हैं ये गीत।

गीत के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम मेहनत कश में स्वागत है। श्रमिक भाई बहनों, कार्यक्रम में आगे आइए, जानते हैं कुछ जानकारियों की बातें। सरकार समय समय पर समाज में रह रहे कुछ पिछड़े लोगों या समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती हैं, ताकि लोग उन योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठा सकें, अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें और एक सरल समृद्ध जीवन अपना सकें। श्रमिक भाई बहनों, सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं में से एक आज योजना के बारे में हम बातें करेंगे, और वो योजना है अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजना सरकार की कल्याणकारी योजना। प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक 15 सूत्री कार्यक्रम जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे बौद्ध, सिख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई और जैनों के लिए शैक्षिक अवसर को बढ़ाना, आर्थिक गतिविधियों, रोजगार में समान भागीदारी सुनिश्चित करना और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस 15 सूत्री कार्यक्रम में शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और माताओं को पूरक पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं समान रूप से उपलब्ध कराना है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे नए स्कूल खोलना, स्कूली शिक्षा की पहुंच में सुधार लाना है, स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के लिए योग्य संसाधनों और शिक्षकों की व्यवस्था करना, आधुनिक विषयों जैसे विज्ञान, गणित, कंप्यूटर आदि जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और योग्यता सह साधन आधारित छात्रवृत्तियों के माध्यम से मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ये उद्देश्य है। शैक्षिक उद्देश्य, वहीं आर्थिक और रोजगार के अवसरों की बातें करें, इसके उद्देश्य की बात करें तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, ताकि उनकी रोजगार क्षमता में सुधार लाया जा सके और उसके लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वहीं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के जरिए स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना, जैसे कि मुद्रा लोन योजना, और केंद्र और राज्य की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करना है, और जीवन स्तर को सुधार में लाने के लिए ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र गरीबों को आवासों का आवंटन

करना है और जीवन स्तर को सुधार में लाने के लिए ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र गरीबों को आवासों का आवंटन करना, प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल

0: जो पांच सूत्री कार्यक्रम है जिनका लाभ उठाकर जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। और अब इन तमाम जानकारियों के बाद लीजिए सुने ये भेंटवार्ता जो मदद करेगा आपके स्वरोजगार को बढ़ावा देने में। भेंटवार्ता का विषय है अचार पापड़ बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार अपनाती ग्रामीण महिलाएं। भेंटवार्ताकार हैं गीतांजलि देवी और इनसे हमारी ओर से बातें कर रहे हैं अली शब्बीर। तो आइए बिना देर किए हम आपको सुनवाते हैं ये भेंटवार्ता।
1: श्रोताओ, चलने वाले निकल गए हैं, जरा जो ठहरे कुचल गए हैं। हरकत से है जिंदगी जहां की, ये रस्में कदीम है यहां की। हरकत कहें या मेहनत, इसका कोई बदल नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। और यही वो चीजें हैं जिसकी बदौलत लोगों ने आसमान में कमंदे डाली हैं और अंतरिक्ष पर भी काबिज हुए हैं। साथ ही अपनी अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं, सफलता के झंडे गाड़े हैं। और हाँ, इस मैदान में युवा हों या युवतियां, पुरुष हों या महिला, हर एक ने अपनी अपनी पहचान बनाई है, अपनी अपनी शान बढ़ाए हैं। और सच तो ये है कि औरों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं, आजीविका के बेहतर साधन जुटाए हैं और स्वरोजगार की राहें हमवार की हैं, इसके मार्ग प्रशस्त किए हैं। इस दिशा में हमारी सरकारें भी कई तरह की योजनाएं चलाती रही हैं जिससे स्वरोजगार उत्पन्न हो, लोग आत्मनिर्भर हो सकें। यहां तक कि निजी संस्थाएं और संगठन सब ने अपने अपने तौर पर युवाओं को, युवतियों को, पुरुषों एवं महिलाओं को इस ओर अग्रसर करने में कोशा है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉय हो सकें, स्वरोजगार से जुड़ सकें। और ऐसा करने में ग्रामीण महिलाएं भी स्वयं को सशक्त करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अग्रसर हैं। इसी संबंध में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ग्राम जरवा की एक महिला जो JSLPS के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित की है और अपनी आर्थिक स्थिति की समृद्धि के लिए अपने उज्जवल भविष्य की ओर, अपने रोशन मुस्तकबिल की ओर अग्रसर हैं। जानते हैं उनके अनुभवों को उन्हीं की जुबानी। तो पहले जानते हैं उनका नाम, क्या नाम है आपका?
2: जोहार, मेरा नाम है गीतांजलि देवी और मेरा समूह का नाम है गौरी महिला समूह, उसमें मैं पुस्तक संचालक हूँ और हमारे गाँव का नाम है जरबा।
1: तो हम जानना चाहेंगे कि JSLPS से जो आप जुड़ी हैं या इसमें जो प्रशिक्षण लेने की जो बात आपके मन में आई, वो किस तरह से आप इसमें जुड़ी, इससे जुड़ी इस?
2: जी सर, जरबा पंचायत यानी कि जरबा में जो सांसद महोदय के द्वारा गोद लिया गया था, तो उसमें 2015 में पहले वहाँ SHG बना, JSLPS के माध्यम से 8 समूह बना था
1: जी।
2: उस समूह में हम लोग को पुस्तक संचालक के रूप में हमको चुना गया था
1: जी।
2: जिसमें 7 रजिस्टर होता है, 7 मेंटेन के लिए, उसमें हम समूह को लेन देन के लिए बताएं, 10 रुपये से हम लोग बचत चालू करना चाहें। उसके बाद 3 महीने के बाद हम लोग को 15,000 रुपया मिला, जिसको रिवॉल्विंग फंड कहते हैं, चेक
1: जी।
2: वो हम लोग को समूह की आय को मजबूत करने के लिए मिला।
1: अच्छा।
2: उसके बाद 6 महीने के बाद हम लोग को CIF राशि मिला 50,000, जबकि दीदी लोग को 15,000 से कुछ ब्याज आने लगा, तो 50,000 उनको दिया गया ताकि अपनी आमदनी कुछ और बढ़ा सके। उसके बाद हम लोग को बैंक लीकेज किया गया, जिसमें हम लोग को 1,00,000 रुपया बैंक लोन मिला। बैंक लोन से भी दीदी लोग को इस तरह 1,75,000 रुपया मिला, जिससे दीदी लोग को बहुत राशि हुआ।
1: तो ये जो राशियाँ आपको मिलती रही हैं, राशियों का जो सहयोग मिलता रहा है, ये मेनली किस कार्य के लिए मिल रहा है?
2: समूह को मजबूत करने के लिए।
1: किस तरह की मजबूत?
2: जैसे कि समूह की दीदी लोग पहले घर से नहीं निकलती थी, एक दूसरे से बात नहीं करती थी, साथ में बैठ के एक दूसरे की स्थिति को देखते हुए उस स्थिति को सुधार करने के लिए और अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए वो राशि दिया गया।
1: तो आजीविका जो बढ़ाना है उसमें क्या करना है?
2: आजीविका बढ़ाना सर, जैसे कि मान लीजिए कोई दीदी का छोटा मोटा गुंटी है, उसमें पूंजी नहीं होने के कारण वो अपना सामान उसमें नहीं भर सकती थी और बेच भी नहीं सकती थी, तो वो राशि लेके दुकान में लगाती थी, फिर दुकान में वापस आता था, तो फिर वो किस्त सही समय में समूह में वापस।
1: छोटे मोटे दुकान या छोटी मोटी गुंटी करके जो लोग व्यापार कर रहे थे, उसमें राशि कम की वजह से, पूंजी कमी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था,
2: जो
1: राशियों का सहयोग मिला आपको, आप लोगों ने उसमें लगाना शुरू किया
2: जी सर। उसके बाद 2017 में हम लोगों को अचार पापड़ का प्रशिक्षण मिला।
1: ये कहाँ से मिला?
2: JSLPS के माध्यम से और वर्ल्ड बैंक के द्वारा।
1: तो प्रशिक्षण जो आप लोग ले रहे थे, उसमें कितने समूह के सारी महिलाएं थी?
2: वो जैसे प्रोड्यूसर ग्रुप वो भी था PG, उसमें हर समूह की दीदी को लिया जा रहा था
1: जी।
2: जिसमें हमको शुरू से नहीं पता था कि ये है क्या, लेकिन उसमें ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग को जो रासायनिक खाद नहीं मिलाना, एकदम समझिए ऑर्गेनिक यानी कि ओरिजिनल बनाना है। जी जी।

0: किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं। बाजार में अभी जैसे हम लोग 150 में 5 केजी अचार लेते हैं, उसमें बहुत तरह का मिलावट रहता है, लेकिन हम लोग का अचार जैसे महुआ का अचार हो गया, बस्करील का अचार हो गया, ओल का अचार हो गया, जो हम लोग के यहाँ उत्पादन होता है उसी से हम लोग का अचार।
1: अचार बनाने का जो ट्रेनिंग था, प्रशिक्षण जो था, वो कितने दिनों का था ये?
0: सर ये प्रशिक्षण 1 साल चला।
1: 1 साल तो ये बिल्कुल फ्री था या इसमें कुछ आप लोगों?
0: नहीं, फ्री था।
1: फ्री था। और उसके बाद जो पापड़ का भी उसमें आपने था, वो कितने दिनों के लिए था ये?
0: पापड़ के लिए ज्यादा नहीं था सर, 1 महीना का था। तो उसके बाद फिर इसको हम लोग अचार बना के, अचार के माध्यम से हम लोग जगह जगह छोटा मोटा स्टॉल भी लगाते थे। इसके माध्यम से हम लोग मुंबई, दिल्ली, पटना सब जगह छोटा मोटा स्टॉल भी लगाए, और जो हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि हम लोग कभी अपना भविष्य में मुंबई दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन गए, वो भी फ्लाइट से गए। हाँ, और वहाँ अभिनेत्री जी से लोग से भी मिलने को मिला
1: जी। तो बहुत अच्छी बात है। जो आप लोगों ने जो सामान बनाना शुरू किया, अचार या पापड़ वगैरह का, उसका क्या बाजार में किस तरह का उसका मांग रहा?
0: सर बाजार में तो उसका रेट था, क्योंकि कच्चा माल है वो, और महुआ तो यहाँ ज्यादातर फेमस है शराब के लिए
1: जी।
0: लेकिन इसका अचार नया कोई भी सुन के बोलता है कि इसका अचार कभी बनता है, खाने से बेहोश तो नहीं ना हो जाएंगे?
1: जी, जी,
0: हम बोले नहीं सर, नहीं होते हैं, पहले हम ही लोग खा के बताते हैं।
1: तो उसमें जो विधि बताई गई थी आप लोगों को, जितना भी समय लगा, तो अभी इसको प्रयोग में आप लोग ला रहे हैं, तो कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? ये
0: हम लोग 25 है।
1: 25 है और कार्य कर रही है?
0: हाँ।
1: तो जरबा ही पंचायत में कर रहे हैं या फिर अलग अलग?
0: नहीं, जरबा पंचायत से हम लोग लिए हुए हैं प्रशिक्षण। जरबा पंचायत से हम लोग हजारीबाग में, हम लोग को सदर ब्लॉक के पास डीसी सर के द्वारा सेंटर मिला हुआ है।
1: सेंटर मिला
0: हुआ? हाँ, और वहाँ सारा सामान भी मिला हुआ है वर्ल्ड बैंक के द्वारा।
1: तो किस तरह का सामान?
0: जैसे अचार बनाने के लिए मिक्स का सामान, फिर ग्राइंडेड, उसके बाद सुखाने के लिए
1: जी।
0: ये सब सारा सामान मिला हुआ है,
1: सारी चीजें
0: जी।
1: तो अपने से भी कुछ इसमें लगाना पड़ता है?
0: नहीं सर, अपने से हम लोग कुछ भी नहीं लगाए, सिर्फ मेंबरशिप 200।
1: ये तो अचार पापड़ की बात होगी, और इसके साथ साथ और कुछ?
0: हाँ सर, इसके बाद हम लोग का पीजी ग्रुप बना 2018 में, जिसमें से दीदी लोग को खेती बाड़ी करने के लिए बताया गया, और खेती बाड़ी करके ही अपना सब्जी जो हम लोग बाजार से खरीदते हैं उसको हम लोग को दुगुना करके बेचने के लिए भी बताया गया। मान लीजिए अभी हम 30 डिसमिल जमीन में
1: जी
0: अपना डेमो लगाते हैं, उसके लिए जोहार परियोजना 12,500 रुपया अनुदान राशि देता है कि इससे आप अभी बीजा खाद लगा लीजिए, उसके बाद 3 महीना के बाद जब आपका उपज होता है तो वो पैसा हमको पीजी में वापस करना।
1: अच्छा, की जानना चाहेंगे, जैसे 30 डिसमिल आपने जमीन जो कही, तो एक साथ वो जमीन होता है या फिर अलग अलग?
0: एक ही जगह
1: जब जमीन होती है तो जाहिर बात है कि 30 डिसमिल किसी एक आदमी का तो अकेले होगा नहीं, किस उसमें लोगों में तो कैसे जोड़ते हैं?
0: पीजी में जो दीदी है उन्हीं का जमीन करना,
1: उसी के आसपास
0: सामूहिक रूप से
1: कवर करते हैं
0: जी, सामूहिक रूप से,
1: और वो जितने लोग हैं सब उसमें शामिल होते हैं। तो जो पैसा आपको मिलता है उसमें लगाने के लिए, पहले प्रयोग के लिए जो होता है, फिर आपका जो आमदनी होने लगती है तो फिर वो पैसा आप वापस करते हैं?
0: हाँ, पीजी में वापस करते
1: हैं। तो ये कितने दिनों में ये सफलता आप उसमें देखते
0: हैं? 3 महीना के अंदर तो फसल हो ही जाता है।
1: फसल हो जाता है?
0: हाँ।
1: किस तरह का फसल लगाती है?
0: जैसे की जो उन्नत हो सके, यानी की जिसका ज्यादा वृद्धि हो
1: जी, जैसे
0: टमाटर हो गया, करेला हो गया, गर्मा फसल में तरबूजा हो गया, लौकी हो गया।
1: तो ये जैसे गर्मा की आपने बात कर रखी है, तो उसमें जो पटवन की बात आती है, सिंचाई की बात है, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं?
0: सिंचाई के लिए हम लोग को जोहार परियोजना के द्वारा कुआं, पंप हाउस और ट्रेंच कोड़ा के, मतलब वहाँ जो सोलर प्लेट लगता है 5 HP का
1: जी,
0: उसका साधन दिया गया है, और एक सोलर साइकिल मिला हुआ है 1 HP का, उसके द्वारा हम लोग जहाँ पानी का साधन है वहाँ ले जाके।
1: तो सारा कुछ ये जोहार परियोजना ही के द्वारा सब आपको लोग व्यवस्था किया गया है?
0: हाँ, खेती बाड़ी के लिए जोहार परियोजना के द्वारा किया गया
1: है। जो लोग इससे जुड़े हैं अपना उसमें कुछ पूंजी नहीं लगा?
0: हाँ सर, हम लोग शुरू में 1100 रूपए लगाया है सदस्यता शुल्क, अंश पूंजी यानी मेंबरशिप।
1: तो वो शुल्क जो आप लगाए हैं वो फिर उसमें वो क्या होता है उसकी वापस?
0: वो पैसा हम लोग का 100 रूपया तो वही रहेगा सदस्यता शुल्क, और जो अंश पूंजी है वो कंपनी में FPC में ट्रांसफर होता है।
1: अच्छा, तो ये सारी महिलाएं इसे, गांव की महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं, ये जो समूह
0: सारी नहीं जुड़ी हुई सर, जिसका खेती बाड़ी है
1: जी,
0: जो खेती करना चाहती है
1: जी,
0: उनका जुड़ा हुआ।
1: अच्छा, जो खेती नहीं करना चाहती है और अगर उसको रोजगार से जुड़ना है तो उसके लिए कुछ क्या व्यवस्था है?
0: जो खेती नहीं करना चाहती है वो रोजगार से जुड़ना चाहती है, तो हम लोग जैसे एक GPDP के तहत योजना बनाते हैं कि बहुत दीदी लोग का लघु योजना या कुटीर उद्योग का योजना आता है कि हमको घर बैठे ये मोमबत्ती बनाना है या अगरबत्ती बनाना है, हम बनाएंगे और ले जाए, तो उसका भी हम लोग योजना बनाते हैं। अगर वैसा सामूहिक आता है डिमांड तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
1: तो ये अगरबत्ती की बात कही आपने या मोमबत्ती की बात कही, ऐसा ये कार्य चल रहा है?
0: नहीं सर, अभी यहाँ नहीं चल रहा, लेकिन

0: बात रखा जा रहा है कि हम लोग को ये करना है,
1: ये इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ये किसके तहत आपको करेंगे आप लोग?
0: जैसलपीएस के माध्यम,
1: जैसलपीएस के माध्यम, वहाँ से इसका ट्रेनिंग मिलता है और इसका
0: हाँ, अगर हम लोग जैसलपीएस के माध्यम से बीच बीच में कुछ कुछ ट्रेनिंग होता भी है, जैसे मशरूम का हो गया या फिर अचार ये मोमबत्ती का हो गया, अगरबत्ती का हो गया, उसमें सीसी भैया लोग रहते हैं, उन लोग डिमांड भी लगाते हैं कि किन को इनको प्रशिक्षण लेना है, वो जाता है, उसके बाद उन लोग प्रशिक्षण भी लेते हैं।
1: आपको किस क्षेत्र में आपको अवार्ड मिला है?
0: सर हम लोग को अच्छा समूह, मतलब कि समूह का लेन देन, अच्छा। समूह में बैठक, समूह में समझदारी, सारा चीज देखते हुए हम लोग को रघुवर दास जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है।
2: गरीब कामना भी है, हमारी नेक तमन्नाएं भी हैं कि आप और आपके साथ आपका ये जो गांव इस ओर अग्रसर है उसमें तरक्की करे और आपकी तरक्की की राहें हमवार होती रहें। आपने अपना कीमती समय और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था अचार पापड़, अचार पापड़ बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार अपनाती ग्रामीण महिलाएं। भेंट वार्ताकार थी गीतांजलि देवी और इनसे बातें कर रहे थे अली शब्बीर। तो बहनों, हम श्रमिक भाई बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि ये भेंट वार्ता आपके लिए जरूर मददगार साबित होगी और स्वरोजगार से संबंधित आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को इसमें सुन करके जरूर समझ पाए होंगे। और अब इसी के साथ ही कार्यक्रम मेहनत कश से विदा लेने का समय हो चला। दीजिए श्रोता को इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे श्रमिक भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम मेहनतकश। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

आशा भोसले मोहम्मद रफी और साथियों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म थी आई मिलन की बेला। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम दिल का क्या कसूर, आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। दीजिए पेशे कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम इंतकाम, आवाज लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर की आवाज में गाया फिल्म इंतकाम के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल आकाशवाणी के राज्य केंद्र से। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग

0: प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने की युवाओं से देश सेवा की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था के लिए जारी किए कड़े निर्देश। कहा कि किसी भी गांव, टोले या मोहल्ले में नहीं हो पानी की कमी। राज्यभर के मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। अगले 2 सप्ताह तक मतदाता देख सकेंगे नाम। लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के 5,00,000 रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर समेत 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कल तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशव्यापी 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। देशभर में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया था। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए कई अलग अलग क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं।
5: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: इसी कड़ी में रांची के सीसीएल सभागार में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां रेलवे, सेना और डाक विभाग सहित 6 विभागों के 132 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सांकेतिक रूप से 25 युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से किया हर वादा क्रमबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं।
6: हमारा स्टार्टअप अच्छा काम कर रहा है, हमारा एमएसएमई अच्छा काम कर रहा है, देश के युवा दुनिया के किसी भी युवा से कम नहीं। और इसी तरह रोजगार, सरकारी नौकरी और अब तक लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है। यह है प्रधानमंत्री का मंत्र, सबका साथ सबका विकास। देश विकसित भारत 2047 की ओर, उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: उधर धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 88 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के हर युवा को रोजगार से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि अब तक 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।
7: झारखंड की वर्तमान स्थिति, आए दिन घटनाएं घट रही है, आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म के बाद उनकी हत्याएं हो रही है, तो इस तरह की घटना के बाद भी राज्य सरकार जाग नहीं रही है। 7 साल से ज्यादा समय हो गया, महिला आयोग का गठन नहीं हो रहा है, राज्य सरकार गंभीर नहीं है महिला सुरक्षा को लेकर, तो राज्य की महिलाओं को उसका हक, उसका अधिकार मिले, उन्हें कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहां अपनी बात को रख सके।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के अधिकारियों और थानों को अपने दफ्तरों के बाहर और सार्वजनिक जगहों पर आम लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी गांव या टोले में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन को पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करने का निर्देश दिया है। राज्य में आज से सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रदर्शित कर दी गई है, जिसे देखने के लिए सुबह से ही बूथों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। एसआईआर के तहत जिन मतदाताओं का नाम इस सूची में नहीं मिल रहा है, वे संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ से संपर्क कर अपनी मैपिंग की प्रक्रिया पूरी करवा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि यह सूची आज से अगले दो सप्ताह तक सभी केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। लातेहार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर शिव नारायण भुइया सहित दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। SP कुमार गौरव ने बताया कि इस कार्रवाई में उग्रवादियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं।
8: टीम के द्वारा बड़ी ही कुशलता से शिवा सिंह की गिरफ्तारी की गई। शिवा सिंह खिलवाड़ है, इसके विरुद्ध कुल 24 कांड दर्ज हैं। ये सब जोनल कमांडर के रूप में कार्यरत था और इसके विरुद्ध सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और इसके साथ ही एक सकलदीप उरांव जो एरिया कमांडर के रूप में JJMP में कार्यरत था, उसकी भी गिरफ्तारी लातेहार थाना क्षेत्र

0: 17,800 फीट पर जाकर तिरंगा को फहराया है। ये उसके लिए भी गौरव की बात है, हमारे लिए भी गौरव की बात है, हमारे बटालियन और हमारे उसके लिए भी गौरव की बात है। ये बहुत दुर्गम इलाका होता है जहाँ सांस लेने में कठिनाई आती है, कोई राहगीर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, पानी की कमी रहती है, ठंड उतना ही रहता है, फिर भी ये बच्चा वहाँ पर जाके सर्वाइव किया।
1: और अब मौसम का हाल। राज्य के 8 जिलों में कल गर्जन के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गुड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 25 से 2 जून तक नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहेगा, जिससे पारा और ऊपर जा सकता है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज कई महत्वपूर्ण मुकाबले हो रहे हैं। पुरुषों की डेकैथलॉन स्पर्धा में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर ने शानदार शुरुआत की है। उन्होंने 100 मीटर रेस और लंबी कूद में अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया और कुल 2,575 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर चल रहे हैं। धनबाद में आगामी 5 से 7 जून तक 13वीं झारखंड राज्य सीनियर महिला एवं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड राज्य कबड्डी संघ के महासचिव संजय कुमार झा ने बताया कि बिरसा मुंडा पार्क के पास स्थित डॉ जेके सिन्हा मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल में इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस महाकुंभ में राज्य भर से करीब 40 से 45 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें से अब तक 19 टीमों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने की युवाओं से देश सेवा की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था के लिए जारी किए कड़े निर्देश। कहा कि किसी भी गांव, टोले या मोहल्ले में नहीं हो पानी की कमी। राज्य भर के मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। अगले 2 सप्ताह तक मतदाता देख सकेंगे नाम। लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के 5,00,000 रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर समेत 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। और मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कल तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: गृह मंत्रालय भारत सरकार 16वीं जनगणना का कार्य कर रही है। इसके तहत डिजिटल तरीके से जनगणना के आंकड़ों को सहेजा जाएगा। इस गणना में पहली बार स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसे लोग अपने से पूरा कर सकते हैं। 1 मई से 15 मई तक यह प्रक्रिया चली। तदुपरांत 16 मई से लेकर 14 जून 2026 तक साहिबगंज जिले में प्रगणक मकान गणना हेतु घर घर जाएंगे। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ही सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करती है।
2: 1 मई से 15 मई 2026 तक स्वगणना की सुविधा आप सभी को उपलब्ध होगी। यह सरल, सुरक्षित एवं संक्षिप्त प्रक्रिया है। मकान सूचीकरण कार्य हेतु 16 मई से 14 जून 2026 के बीच जब प्रगणक आपके घर आए तो यह आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं।
1: साहिबगंज जिले में गत दिनों आयोजित हुए वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में जिले के किसानों को आगामी फसलों के लिए अल्पवृष्टि अतिवृष्टि की स्थिति से बचने के कार्य पर चर्चा हुई। खरीफ में यहां के किसान धान के एमटीयू 70-29 स्वर्णा की खेती करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर मॉनसून की अनिश्चितता को देखते हुए कंटिंजेंट प्लान के तहत कार्य किया जाएगा ताकि फसलों

0: बचाकर किसानों को लाभ दिया जा सके। इसके अतिरिक्त कृषि में अन्य विकल्पों के माध्यम से भी किसानों को सशक्त करने पर कार्य किया जाएगा।
1: किसानों के बीच में हम लोग स्वर्णा धान के साथ और दूसरे धान के प्रभेदों को कैसे इंट्रोड्यूस करें ताकि किसान उसको अपना सके और जल्दी तैयार होने वाले बीजों को खेती करें ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपज प्राप्त कर सके और रबी का जो तैयारी है वो जल्दी रबी का तैयारी कर सके। खरीफ सीजन के लिए डिस्ट्रिक्ट का ड्रॉट कंटीजेंट प्लान तैयार किया है जिसको हम लोग राज्य सरकार को दे रहे हैं।
0: साहिबगंज जिले में धान गेहूं के अलावे मिलेट्स और सरसों की खेती भी अच्छी उपज दे रही है। विरसा भाभा मस्टर्ड वन किस्म की उपज से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावे मशरूम, पपीता, लहसुन, प्याज तथा परवल की खेती कर रहे किसानों के समग्र विकास को लेकर भी प्रयास किया जाएगा। जिले में खेती बाड़ी किसानी से जुड़े लोगों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में उच्च उत्पादन क्षमता, गुणवत्तापूर्ण खेती, कम लागत और ज्यादा मुनाफा अर्जित करने का साधन बनाने के लिए भी कार्य किया जाएगा।
2: 26-27 में हम लोग जो एक्शन प्लान कर रहे हैं किसान के लिए हमारे समग्र उनका विकास हो सके उसके ऊपर हमारा ये कार्यक्रम रहता है। तो हमने पिछले बार क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन सामूहिक अग्रिम पंक्ति कार्यक्रम उसमें पाया है कि विरसा भाभा मस्टर्ड और सरसों की जो वैरायटी है वो बहुत अच्छा कर रही है। और इसमें हमने ये भी किया है कि हम साथ में मशरूम हो, पपीते की खेती, प्याज और लहसुन की खेती पे बहुत ज्यादा हम लोग जोर दे रहे हैं।
0: आज विश्व कछुआ दिवस है। क्रमिक विकास की कड़ी जोड़ने वाले इस सरीसृप का धार्मिक और इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। साहिबगंज वन विभाग और रेलवे के प्रयासों से वर्ष 2025-26 में सैकड़ों कछुओं का रेस्क्यू कर सुरक्षित किया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
3: अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

उदित नारायण और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे इस गीत में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं मीका सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

मीका सिंह, श्रेया घोषाल और साथियों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म थी बेशरम। कार्यक्रम का ये आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। चिल्लर पार्टी से आवाजें हैं अमित त्रिवेदी, अरमान मलिक, तन्मय और साथियों की।

चिल्लर पार्टी का फिल्म, चिल्लर पार्टी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी अमित त्रिवेदी, अरविंद विश्वकर्मा, तन्मय चौधरी, अरमान मलिक और अमिताभ भट्टाचार्य की। और अभी इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। पेश है कार्यक्रम का पहला गीत

सोनू निगम और विनोद राठौर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म थी मोहब्बत। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम अफसर, आवाजें अलका याग्निक और नितिन मुकेश की।

आपने ट्यून किया है 102.1 MHz और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें हैं बपी लहरी और अनुपमा देशपांडे की। फिल्म है नफरत की आंधी।

आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाह सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत। फिल्म का नाम ब्रह्मचारी, आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी दोस्तों ने। पटेल नगर पंजाब से आप हैं रमेश कुमार जाजुरिया, गीता रानी जाजुरिया, गगनदीप जाजुरिया और आरजू जाजुरिया। इसी गीत के लिए फरमाइशी खत भेजा है आप सभी दोस्तों ने भी। आप हैं महेश राम, सरिता देवी, कुमारी वर्षा, फुलवासी देवी, कुमार पिंटू और परिवार के सभी सदस्य ग्राम पोचरा से, माली टोला खिरगांव से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, रितेश, रोहित, जितेंद्र, ऋषि और राहुल ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। रविन्द्र वर्मा, अमन वर्मा, आरती वर्मा, उर्वशी वर्मा, रिया परी, कोको, चारू और आर के वर्मा आप सभी हैं बरका काना से, आपने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास गुड़िया, रंजना गोलू, भोला और इनके मम्मी पापा आप सभी हैं बड़का गांव से। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गाना। फिल्म का नाम ब्रह्मचारी, आवाजें सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम शर्मिली, और पसंद आप सभी दोस्तों की। इचलकरण महाराष्ट्र से आप हैं, वसंत हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, मितांशु हजारे और आदित्य हजारे। हजारीबाग मालीटोला से आप हैं, कल्लू मालाकार, अरविंद मालाकार, अनिकेत, आदर्श, अमन, आशा और परिवार के सभी सदस्य। महादेव घाट अमलेश्वर से आप हैं, डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति, रियांश और परिवार के सभी सदस्य। भाटापारा दतरेंगी से इसी गीत को सुनना चाहा है द्वारिका प्रसाद वर्मा और किशोर कुमार वर्मा ने। हजारीबाग पतरातू से आप हैं, बेसिल खलखो, सेसिल खलखो, मधु, ऋतु, रचना, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, सचिन, नदीम, मनीषा और परिवार के सभी सदस्य। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म का नाम शर्मिली, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी दोस्तों की फरमाइश पर औरंगाबाद से आप हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। दुर्गाई सेलू से आप हैं चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभणी से आप हैं सीआर कुलकर्णी और चेपा कलाबड़का गांव से आप हैं बाबूलाल ठाकुर, सविया ठाकुर, तिलेश्वरी भरत ठाकुर, मंजू संतोष, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मणी, प्रियंका और दीपिका। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म का नाम दयावान, आवाज़ें हैं पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी फिल्म से, और इस गीत को गाया है बाबुल सुप्रियो, अलका याग्निक, अनु मलिक और देव कोहली ने, और इस गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लच्छनपुर से, विश्वनाथ साहू लेवई से, गुलाब दास माणिकपुरी, दतरेंगी से भागवत वर्मा, और दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। इसी गीत के लिए फरमाइशी खत आया सौदागर मोहल्ला से, आप हैं महबूब आलम, मकसूद आलम, मंजूर, पाकिजा, महमूद, महफूज, मंसूर और शमशाद बेगम का। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म का नाम खिलाड़ियों के खिलाड़ी, आवाजें बाबुल सुप्रियो, अलका याग्निक, अनु मलिक और देव कोहली की।

न्याय अन्याय इस फिल्म से हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गाना। आवाजें हैं अनुराधा पाडवाल और मंगल सिंह की। इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम बड़बुड़वा बगबुड़वा पथरिया से आप है नरेन नेताम कुसुम नेताम प्रोनिका उत्कर्ष नेताम और प्रोनामिका नेताम अफजल इब्राहिम में शाहिन सुल्ताना अफजल ताज और तस्नीम आप सभी हैं बरका काना ओल्ड लिस्टनर ग्रुप से। आदर्श नगर मलूट से आप है राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा और सौरव शर्मा शाइना शर्मा और निवान शर्मा। जीटी रोड बरही से इसी गीत को सुनना चाहा है आप सभी दोस्तों ने सीताराम मालाकार वासुदेव मालाकार इंदु देवी कैलाश भगत पूनम कुमारी नूतन कुमारी और कुसुम आर्यन। आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म का नाम न्याय अन्याय। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह की।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुना रहे हैं मिसाल फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है विजेता पंडित और जतिन पंडित ने, और इस गीत को सुना चाहा है आप सभी दोस्तों ने। नया टोला भीखनपुर भागलपुर से गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, नितिन पासवान और मनोज पासवान। मानगढ़ ग्राम मानगढ़ से आप हैं मिथिलेश पांडे, बबीता देवी, नीतू कुमारी, अंशु कुमार पांडे, सुधांशु कुमार पांडे, अभिषेक कुमार पांडे और परिवार के सभी सदस्य। ये खत आया है इंदिरा विहार रायगढ़ से, आप हैं अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम और वली उल्लाह नूरजहां। बुलंदशहर से इसी गीत को सुनना चाहा है बदरू अली अंसारी, फर्जू अली अंसारी और फर्जी अली वली अंसारी ने। लुधियाना पंजाब से हैं अमरजीत, सोनम कौर और परमजीत आबिदा कौर, आदिबा कौर। तो आइए आप सभी दोस्ती की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, फिल्म का नाम मिसाल।

0: और अब उसी के साथ
1: संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य

0: अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल किंयुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

0: भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेको से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमकाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. U.S. Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defense, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. He requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to U.S. President Donald Trump and said he looked forward to their continued exchanges. Secretary Rubio is on a 4-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.
2: Expanded commercial ties.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज OTT की क्वीन कहलाती है, वो है शेफाली।

बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थी। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। साल 2000 में उन्होंने निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की, जिनके साथ उनके दो बेटे आर्यमन और मौर्य हैं।

0: निभाना हो।
1: शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10 वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमेन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गुजराती रंगमंच में काम करके अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दे दिया था।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज वाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।

फिल्म सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माई फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्याले की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आईं। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घायवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कंवल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

शेफाली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, शेफाली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।

गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में शेफाली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत केवीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों सम डे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी

0: विकाओ में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

0: आप ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल सरों में, फिल्म का नाम लैला मजनू।
1: अब अगर

आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आशा भोसले और किशोर कुमार को आइए सुनते हैं फिल्म तीन देवियों के इस गीत में।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में गाए फिल्म सीआईडी के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी में रात्रि के 10:30:12 हो रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के फिल्मकार।

कार्यक्रम आज के फनकार सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज कार्यक्रम आज के फनकार में एक ऐसे फनकार के बारे में हम बातें करेंगे और उनके गाए कुछ खूबसूरत नगमों का सफर तय करेंगे, जिन्हें प्लेबैक गायन के क्षेत्र में स्तंभ माना जाता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं गायक पार्श्व गायक महेंद्र कपूर जी की। महेंद्र कपूर की बहुमुखी प्रतिभा और लोकप्रियता के कारण बहुत कम अनुभवी गायकों को प्लेबैक गायन के क्षेत्र में स्तंभ या किंवदंती कहा जाता है। उनमें से एक हैं महेंद्र कपूर, जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र में लगभग 5 दशक पूरे कर लिए। तो आज इन्हीं की बातें होंगी और इन्हीं के खूबसूरत गीतों को हम इस कार्यक्रम में सुनेंगे। और इस खूबसूरत सफर पर आइए पहला कदम बढ़ाते हैं और सुनाते हैं आपको महेंद्र कपूर की आवाज में ये खूबसूरत गीत। फिल्म है जब याद किसी की आती है।

महक अपनी लुटा देना। वाकई महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज से संगीत जगत में इस तरह गीतों की महक कायम की, इतने खूबसूरत गीतों को गाया, इतने लोकप्रिय गीतों को गाया कि आज भी बरबस उनके गाए गीतों को हम गुनगुना उठते हैं, गा उठते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, अमृतसर में जन्मे वह बहुत कम उम्र में अपने माता पिता के साथ बॉम्बे आ गए थे। उन्होंने 5 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था और अपने स्कूल के साथियों के साथ गाना गाया करते थे और उनके बीच काफी लोकप्रिय हो गए थे। इसके बाद उन्होंने पंडित हुसैनलाल जी पंडित जैसे कई प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों से शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। जगन्नाथ बुआ उस्ताद नियाज अहमद खान, उस्ताद अब्दुल रहमान खान, पंडित तुलसीदास शर्मा और फिर पंडित मुरली मनोहर शुक्ला जी से वे शास्त्रीय संगीत सीखते रहे, संगीत की शिक्षा लेते रहे। महेंद्र कपूर जी ने अपना पहला गाना फिल्म मैड मैस्ट में वर्ष 1952 में गाया था, जब वह स्कूल में पढ़ते थे। एक संपूर्ण जेवियराइट वह सेंट में था और जेवियर स्कूल से बीए पास किया उन्होंने और स्नातक की पढ़ाई के तुरंत बाद उन्होंने 1957 में अखिल भारतीय मेट्रो मर्फी गायन प्रतियोगिता जीती और 1958 में संगीत निर्देशन सी रामचंद्र के मार्गदर्शन में वी शांताराम के नवरंग में उन्हें पहला ब्रेक मिला और उसके बाद सेवा वहां से अपने गायन करियर की शुरुआत उन्होंने की। आइए हम आपको सुनाते हैं उनकी गाए एक और गीत, फिल्म है रोटी कपड़ा और मैं।

दोस्तों, महेंद्र कपूर जी ने फिल्म गुमराह, हमराज और रोटी कपड़ा मकान से चलो एक बार फिर से नीले गगन के तले और नहीं बस अब और नहीं जैसे कई सुपरहिट गीतों को गाया। पंजाब राज्य पुरस्कार 3 बार इन्हें प्राप्त हुआ और गुजरात राज्य पुरस्कार लगातार 6 बार इन्हें प्रदान किया गया। वहीं हम आपको बताएं कि प्रतिष्ठित पुरस्कारों की सूची में पद्मश्री पहला राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था वर्ष 1968 में। फिल्म उपकार से मेरे देश की धरती गीत के लिए महेंद्र कपूर साहब ने पार्श्व गायन में सिर्फ फिल्मों के गीत ही नहीं गाए हैं, इन्होंने देशभक्ति गीत, रोमांटिक गीत, भजन, कव्वाली, नात और महाभारत जैसे कालजयी धारावाहिक के जो गीत हैं वो इन्होंने गाए और उन गीतों को अमर कर दिया। महाभारत के शीर्षक गीत उनमें से 10वें स्थान पर है और उसकी पहले से ही ताजपोशी टोपी में पंख इन गोल्डन गानों के माध्यम से महेंद्र कपूर ने दुनिया भर में अपने लाखों प्रशंसकों का दिल जीता। लेकिन उन्होंने हमेशा एक विशेष कारण के लिए मनोरंजन का आनंद लिया और काफी बेहतरीन गीतों को इन्होंने आवाजें दी। पाकिस्तान युद्ध के दौरान सियालकोट और अखनूर सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए भी इन्होंने गीत गाए।

0: आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के फनकार। और आज के फनकार हैं हमारे पार्श्व गायक महेंद्र कपूर। श्रोताओं, हम आपको बता दें, प्लेबैक गायन के क्षेत्र में लगभग 5 दशक पूरे कर चुके महेंद्र कपूर को 14 दिसंबर 1999 को सहयोग फाउंडेशन द्वारा सहस्राब्दी के गायक का सम्मान दिया गया था। यह एक यादगार अवसर था जब श्री अमिताभ बच्चन, जिन्होंने श्री महेंद्र कपूर को अपने हाथों से प्रतिष्ठित ट्रॉफी प्रदान की थी और भारत की इस अमर जीवंत आवाज के साथ अपने लंबे जुड़ाव की बात कही थी। हाल ही में उन्हें दादा साहब अकादमी गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दुनिया भर में उनके लाखों प्रशंसक हैं, अपने देश भारत की आवाज के रूप में पूजते हैं उन्हें। और विशेष रूप से विदेशों में जब भी महेंद्र कपूर अपने अमर देशभक्ति गीत भारत का रहने वाला हूं या मेरे देश की धरती मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे भक्ति गीतों को गाते हैं, देशभक्ति गीतों को, और भावपूर्ण भावनाओं के साथ गाते हैं, तो दर्शक अपने खूबसूरत राष्ट्र भारत के लिए राष्ट्रीय भावनाओं से आनंदित हो उठते हैं। आज भी देश के छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों में अपने सशक्त एवं भावपूर्ण गीतों के जरिए देशभक्ति गीत को गाते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों में भी देशभक्ति की भावना भरती है। चलिए हम आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा।
1: अभी अलविदा मत कहो।

महेंद्र कपूर की आवाज में गाये फिल्म ने कहा कि इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम आज के फनकार यही समाप्त होता है। आज के हमारे फनकार थे पार्श्व गायक महेंद्र कपूर।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के फिल्मकार। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त।

की। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान कालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10:20 हो चुके हैं। यही संपन्न होती है हमारी आज की यह सभा। कल सुबह 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे कल के कार्यक्रमों को साथ लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शिवरात्रि, जय हिंद।